ये लखनऊ केंद्र है। आज दिन सोमवार, ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 8 जून सन 2026, सुबह के 5:55 और 37 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की सभा प्रारंभ हो रही है।

सृष्टि सृजन, नव हो उमंग, पवित्र हो मन। नित्य नव दिवस का शुभारंभ भक्ति भाव की पुष्पांजलि।

आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो। समय हो चला है कि हम भक्ति के माध्यम से अपने मन और आत्मा को पवित्र बनाएं, और इस कार्य में आपका साथ देने आ चुका है आपका अपना दोस्त रतन। स्वागत कर रहा हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम पुष्पांजलि में। तो आइए आज का प्रथम पुष्प अर्पित करते हैं प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता भगवान गणपति के चरणों में। ओम श्री गणेशाय नमः।

भगवान शिव को महादेव, भोलेनाथ, विश्वनाथ, महाकाल, त्रिलोचन, नीलकंठ जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। त्रिदेवों में संहार के देवता हैं भगवान शिव, लेकिन वे सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार तीनों के अधिपति माने जाते हैं। वे अनादि, अमर और स्वयंभू हैं। उनका न कोई जन्म है न कोई अंत। ऐसे परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन।

आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, जिस पर चल रहा है कार्यक्रम पुष्पांजलि, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन। भक्ति का अर्थ है हृदय से भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण। ये वो भावना है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है और हमारी आत्मा को शुद्ध करती है।

प्रातः के 6:18 का समय हो चुका है और आप सुन रहे हैं पुष्पांजलि 100.7 FM रेनबो पर। ओम सबसे पवित्र और मूल बीज मंत्र है, जिसे ब्रह्मांड की आदि ध्वनि माना जाता है। भगवान शिव के साथ ओम का गहरा आध्यात्मिक संबंध है। शिव को ओमकार भी कहा जाता है, यानी ओम स्वरूप, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली पंचाक्षर मंत्र है, जिसका अर्थ है मैं शिव को नमन करता हूं, या उस कल्याणकारी शिव को प्रणाम। ये मंत्र शिव की उपासना, ध्यान और साधना में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे रोज 108 बार जपने से आरोग्य, शांति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना भक्ति संगीत की साधना। कार्यक्रम पुष्पांजलि।

शाम पिया मोरी रगदे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं, एक नया अर्थ सामने आता है। तात्पर्य है शाम रंग से, अब रंग भी शाम है और पिया भी शाम है। तो शब्दों की सुंदरता देखें।

भगवान शिव सहज प्रसन्न होने वाले, दयालु और सभी को समान दृष्टि से देखने वाले देव हैं। भगवान शिव योग और तप के परम प्रतीक हैं। वे महायोगी और महातपस्वी हैं जो निरंतर ध्यान में रहते हैं। उनका स्वरूप निराकार लिंग रूप और साकार रूपवान दोनों हैं। वे काल यानी समय के भी स्वामी हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। जय महाकाल।

संसार की सारी वस्तुएं अस्थाई हैं, लेकिन भक्ति का सुख स्थाई और असीमित है। यह आत्मा को शांति, आनंद और मोक्ष की ओर ले जाता है।

सच्ची भक्ति वही है जो किसी फल की कामना के बिना की जाए, जो भक्ति केवल ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा के लिए होती है, वही सर्वोत्तम मानी जाती है।

भक्ति वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर जीवन में प्रकाश फैलाती है। ईश्वर को पाने का रास्ता केवल प्रेम, सेवा और विश्वास से होकर गुजरता है। इसलिए अपने जीवन में प्रेम, सेवा और विश्वास को और ज्यादा दृढ़ बनाएं और ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग को सरल बनाएं। इसी के साथ आज की पुष्पांजलि से अब अपने दोस्त रतन को दीजिए जाने की अनुमति। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर अगला कार्यक्रम सदाबहार गीत बिल्कुल तैयार है। न्यूज ब्रेक के बाद आप हमारे साथ यूं जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, प्रातः के साथ बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी, नागरिक और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा आज से 10 जून तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में लगभग 29 लाख अभ्यर्थियों के सम्मिलित होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों को लेकर बड़ी घोषणा की है। भर्ती परीक्षा के लिए यात्रा करने वाले उम्मीदवारों को बस किराए में 50% की छूट मिलेगी। सरकार की ओर से इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थियों

को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए भी सरकार की ओर से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं और अतिरिक्त बसों का संचालन भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच दो विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ट्रेन गोरखपुर से 8, 9 और 10 जून 2026 को दोपहर 12:45 पर रवाना होगी और लखनऊ जंक्शन पर शाम 5:45 पर पहुंचेगी। वापसी ट्रेन लखनऊ जंक्शन से दोपहर 12:45 पर रवाना होकर शाम 6:20 पर गोरखपुर पहुंचेगी। ये ट्रेनें पूरी तरह अनारक्षित होंगी, जिससे अभ्यर्थी बिना टिकट बुकिंग के आसानी से यात्रा कर सकें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केंद्र और प्रदेश सरकार इसे मजबूत बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने कल आगरा में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन में कहा कि देश की जनता के आशीर्वाद से 10 जून को सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 9 बजे अखबारों की सुर्खियों के साथ प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
4: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
5: धड़कता है जो हर दिल में
6: सुबह 6 से रात 12 बजे तक,
3: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
4: धड़कन लखनऊ की।

7:04 का समय, प्रोग्राम सदाबहार गीत। दोस्तों, कहा जाता है दिल अगर फूल है तो इश्क इसकी खुशबू। पहली नजर का असर अक्सर धड़कनों की रफ्तार बढ़ा देता है। बस एक नजर में दिल ने इकरार कर लिया, बस एक नजर में दिल ने इकरार कर लिया, तेरी मुस्कुराहट ने मुझे बेकरार कर लिया।

आपको हमारी कसम लौट आइए। जी हाँ दोस्तों, हम बस आपसे यही कहेंगे कि आपको हमारी कसम आप लौट आइए हमारे पास, और आप जब हमारे पास आ जाते हैं, आपका जब साथ हमें मिल जाता है, तो वाकई में ये जो दिन है ना, और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। इश्क की उम्र लम्हों से नहीं एहसास से मापी जाती है, इश्क की उम्र लम्हों से नहीं एहसास से मापी जाती है, कभी कभी दो पल की मुलाकात उम्र भर का साथ बुन देती है।

सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की। जी हाँ दोस्तों, 7:13 का समय, प्रोग्राम सदाबहार गीत। और इस प्रोग्राम में आज आपके साथ आपका अपना दोस्त रतन जुड़ा हुआ है, जो कहता है आपके दिल की बात। और बहुत सारी बातें आप भी अपने दिल की हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी मेल आईडी के माध्यम से, fmakashwani@gmail.com। इस मेल आईडी के माध्यम से आप हमारे साथ यानी कि FM रेनबो के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है जब आपसे मुलाकात होती है, बहुत सारी बातें करने का दिल करता है। पत्नी कहाँ कहाँ की बातें याद आती हैं जब आपसे मुलाकात होती है। दिल करता है ये भी आपसे कह दूँ, वो भी आपसे कह दूँ, न जाने क्या क्या कहने का दिल करता है। और आप हैं कि बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत के साथ, बिल्कुल इत्मीनान से हमारी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो ये तो एक बहुत ही प्यारा सा दोस्त ही कर सकता है, जो कि आप हैं, हमारे अपने, हमारे प्यारे, हमारे अच्छे से दोस्त। और आपका जो ये साथ है वो वाकई में हमारी लाइफ को तो ब्यूटीफुल बना ही देता है। बहुत अच्छा लगता है जब आपसे इतनी ढेर सारी बातें होती हैं। प्यार जब बोलता नहीं तब भी खामोशी उसकी गूंज बन जाती है। चुप रहा दिल मगर आंखों ने कहानी कह दी, चुप रहा दिल मगर आंखों ने कहानी कह दी, मेरी खामोश मोहब्बत ने जुबानी कह दी।

सात बजकर 21 मिनट का समय और प्रोग्राम सदाबहार गीत और आपका हमारा ये प्यारा सा साथ। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है जब आपसे इतनी प्यारी ढेर सारी बातें हो रही हैं। आज 8 जून का दिन है और 8 जून अपने आप में बहुत खास है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कई महान हस्तियां अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं, उनमें से ही एक हैं डिंपल कपाड़िया जिनका आज जन्मदिन है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन 1957 में इनका जन्म हुआ जिन्होंने अपने अभिनय से हिंदी सिनेमा में एक विशेष पहचान बनाई। दोस्तों डिंपल ने 16 वर्ष की उम्र में फिल्म बॉबी से अभिनय की शुरुआत की जो सुपरहिट रही और उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। शादी के कुछ समय बाद फिल्मों से उन्होंने दूरी बनाई, लेकिन सागर फिल्म जो कि 1985 में रिलीज हुई उसके साथ उन्होंने सफल वापसी की। उन्होंने रुदाली, दरार, दिल चाहता है और टेनेट जैसी फिल्मों में भी शानदार अभिनय किया। डिंपल को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कई अन्य सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। वे आज भी अपने अद्वितीय अभिनय से दर्शकों को प्रभावित करती हैं और बहुत सारे डिंपल कवाड़िया जी के फ्रेंड्स हैं, बहुत से ऐसे उनके फैंस हैं जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनके अभिनय को पसंद करते हैं और आज भी उनके अभिनय से बहुत सारी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आज डिंपल कपाड़िया को हम उनके जन्मदिन पर बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उन्हीं पर फिल्माया हुआ ये प्यारा सा गीत आइए हम और आप मिलकर सुनते हैं आपके अपने प्यारे से चैनल 100.7 FM रेनबो पर।

वैसे मैं कह जाने की किसी को जरूरत नहीं है, जो जहाँ पे है वहीं रहे, आराम से रहे और हमारे साथ यूं ही इसी प्यार के साथ जुड़ा रहे। तो दोस्तों ये तो हो गई एक छोटी सी, अगर हम कहें तो प्यार और इकरार के बीच में छोटी सी, अगर हम कहें तो नोकझोंक। और इस प्यार भरी नोकझोंक में बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है जब कोई प्यार करने वाला आपसे रूठता है, आपको उसे मनाना पड़ता है और मनाने में बहुत सारे जतन भी करने पड़ते हैं, है ना। तो ये चीज़ जब प्यार होता है किसी से, तो ज़रूर हर किसी के साथ ये ज़रूर घटित होता है, होता ज़रूर है। अगर आपने कभी प्यार किया होगा तो ज़रूर उठना मनाना तो एक आम सी बात है ना प्यार में। और जब तक प्यार में रूठना मनाना ना हो तो वो प्यार, उसका आनंद वो मिलता नहीं है। और हमारे पास बहुत सी मेल्स भी आ चुकी हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ चुके हैं और बहुत ढेर सारा प्यार हम पर बरसा रहे हैं अपनी मेल्स के माध्यम से। हमारे पास अशोक कुमार साहब की मेल आई है। अशोक राज साहब हैं, सुपरहिट सुप्रभात सर कैसे हैं, तो मैं बहुत अच्छा हूँ। और इन्होंने मेल हमें की है रायपुर उदारा मिठौली लखीमपुर खीरी से, हमारे बहुत अच्छे से प्यारे से ये लिसनर हैं और कहते हैं इनको हमारी आवाज़ बहुत पसंद आती है। थैंक यू सो मच अशोक कुमार साहब। और आज का पुष्पांजलि भी इन्हें बहुत पसंद आया और सदाबहार गीत के जो गाने बज रहे हैं वो भी इन्हें बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सुबह सुबह इतनी मेहनत करने के लिए। और गुलफ़्सा सिद्दीकी जी की भी मेल हम तक पहुंची है, कह रही हैं गुड मॉर्निंग रतन भाई, मैं गुलफ़्सा सिद्दीकी संडीला से, आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। और आपकी मेल लिखने का जो अंदाज़ है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं, मज़ा आ जाता है सुनकर। ये लीजिए क्या बहुत बड़ी सी इन्होंने केतली भेजी है पूरी चाय भरकर, जैसा कि ये कहती हैं कि मैं भी पूरा भर के जो है क्या नाम कप चाय पीती हूँ, तो उसी तरह इन्होंने मुझे पूरी भर के केतली भेजी है और कह रही हैं ये कटोरा पूरा आपके लिए है चाय भर के, इसे आप ले लीजिए और ये भी आपके लिए है। रतन सर आ जाएं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ बाग के आम टूटने लगे हैं, खा लीजिए आके। बिल्कुल हम ज़रूर आके खाएंगे। और अभी आपने हमें अपने बाग के आमों का जो दर्शन कराया है वो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ताज़े ताज़े ये आम हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, दिल कर रहा है आके तुरंत इन्हें खा लें। और वाकई में जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप इतने प्यार से हमें गिफ्ट भेजते हैं, इतनी अच्छी सी चाय भेजते हैं, हमारी मॉर्निंग तो अपने आप बहुत ज़्यादा मीठी सी हो जाती है। थैंक यू सो मच गुलफ़्सा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी प्यारी सी चाय और इतने मीठे मीठे आम हम तक पहुँचाने के लिए। 7:30 का समय हो चुका है। विजय गर्ग साहब का भी मेल हम तक पहुँचा है, कह रहे हैं सर बहुत दिनों बाद आपको सुन रहा हूँ आज। और ये मेल इन्होंने हमें लखनऊ से किया है, लेकिन विजय गर्ग साहब लखनऊ से कहाँ से मेल किया ये आपने नहीं बताया। कहना आज का पुष्पांजलि बिल्कुल शानदार और आपने मेरे मन को मोह लिया, पूरा भक्तिमय माहौल बना दिया, थैंक यू सो मच। और कह रहे हैं कि सदाबहार गीत हमेशा की तरह सुपरहिट आज भी बहुत बेहतरीन से सॉन्ग्स आप प्ले कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपको मेल कर। थैंक यू सो मच विजय गर्ग।

साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना हमारा हौसला अफजाई करने के लिए। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आज इस प्रोग्राम में हम आपके साथ कर रहे हैं, क्योंकि आज आपका हमारा ये प्यारा सा साथ बना है। ये मौका ऊपर वाले ने हमें दिया है कि हम आपसे जुड़ें, आपसे इतनी ढेर सारी बातें करें, और बातों के साथ साथ गीत भी पहुंचाने बहुत ज़रूरी हैं। तो अगला गीत भी बिल्कुल तैयार है आपके लिए, इस प्यारे से गीत को एंजॉय कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।

0: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
0: 8700001-4242।
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

साथ बजकर 42 मिनट समय प्रोग्राम सदाबहार गीत आपका हमारा ये प्यारा सा साथ और आपकी बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी प्यारी सी मेल्स हम तक लगातार पहुंच रही हैं। दोस्तों इतना समय आप निकाल लेते हैं हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है हमें, थैंक यू सो मच। सुधांशु साहब की मेल हम तक पहुंची है, राधे राधे। सुधांशु ग्राम भगवती पुर पोस्ट मोहना थाना टौंजा बख्शी का तालाब लखनऊ से ये हमें सुन रहे हैं। कार्यक्रम इन्हें अच्छा लग रहा है और कार्यक्रम सदाबहार गीत में अति सुंदर गाने बज रहे हैं ऐसा इनका कहना है। और हमसे कहना जल्दी जल्दी आया करिए, आप हमें बुलाते कहाँ हैं जल्दी जल्दी जितनी जल्दी जल्दी आप हमें बुलाएंगे हम उतनी ही जल्दी आएंगे। थैंक यू सो मच सुधांशु भाई। और वारिस अली साहब की मेल हम तक पहुँची है, आवाज़ की दुनिया के प्यारे से रतन को एडवोकेट वारिस अली का प्यार भरा सलाम। तो आपको भी हमारी तरफ से प्यार भरा सलाम। आपने कुछ पंक्तियाँ भी भेजी हैं कि नफ़रतों का कोई इलाका नहीं होता, ये हमेशा मोहब्बतों की सरजमी पर कब्जा कर लेती हैं। क्या बात पुष्पांजलि, आपने बहुत अच्छा किया। सदाबहार गीतों में गीत में आप ऐसे गीत बजा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मेरे अपने गीत हों और मेरे जीवन से जुड़े हों। वाकई में अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है और हम आपकी लाइफ से थोड़ा जुड़ सकें ये भी हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच वारिस अली जी। संजय नगर अशबाग लखनऊ से आपने हमें मेल किया है, थैंक यू सो मच। ब्रजेश सिंह जी भी मेल हम तक पहुंची है, गुड मॉर्निंग मेरे फेवरेट सर जी रतन सर जी। ओके सर जी, भजन सुनकर मन प्रसन्न हुआ, थैंक यू सो मच। हम इसीलिए तो ये भजन इतनी मेहनत कर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि जो भी भजन हम आपके लिए प्ले करें वो आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपको प्रसन्नता दें और आपके दिल को आपके मन को खुश करें। काफ़ी दिनों बाद सुबह के पुष्पांजलि में शुरुआत आपने की, अच्छा लग रहा है कार्यक्रम। ओके सर जी, आपकी मीठी सी आवाज़ सुनकर मन को बहुत सुकून मिलता है, थैंक यू सो मच कि आप इतना प्यार हमें देते हैं। मनीष यादव जी की भी मेल हम तक पहुंची है, राधे राधे लिख रहे हैं और कह रहे हैं, पहले तो बताते हैं ये मेल इन्होंने हमें कहाँ से किए, सदरापुर सिधौली सीतापुर से इन्होंने हमें मेल की है और प्यार भरा गुड मॉर्निंग तो भेजा ही है, साथ में राधे राधे भी भेजा है और कह रहे हैं झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है, बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है, इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए क्योंकि अनेकता में एकता होती है। क्या बात, बहुत अच्छा लगा आपकी इस विचारधारा को सुनकर। गणेश जी की वंदना मुझे बहुत अच्छी लगी, सभी सॉन्ग्स लाजवाब लग रहे हैं, गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे, थैंक यू सो मच। और प्रभु आप पर भी अपनी कृपा बनाए रखें और आप हमेशा इसी प्यार के साथ हमें मेल करते रहें, हम यही दुआ करते हैं। रामराज साहब की भी मेल हम तक पहुंची है, श्री गणेश शायद नमो नमः, सदाबहार गीत रायबरेली जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से ये हमें मेल कर रहे हैं। और रामराज, राजू भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु बजरंगी काका, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। और जो आप गाने सुना रहे हैं सुपरहिट, हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार, शुभ आशीर्वाद पहुँचे आप तक, धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि इतना हमारा ध्यान रखते हैं आप और इतना आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं, थैंक यू। पूनम गुप्ता जी की भी मेल हम तक पहुंची है, हेलो वेरी गुड मॉर्निंग सर। पूनम गुप्ता विलेज टिकौली पोस्ट अटरिया सिधौली डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से हमें मेल कर रही हैं, सदाबहार प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, आपके द्वारा प्ले किए गए सॉन्ग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी शानदार आवाज़ में शानदार प्रस्तुति अच्छी लग रही है, थैंक यू सो मच। देखिए आपके टू दी वर्ड्स जो आपने लिखे वो मैंने पूरे पढ़ दिए हैं, ठीक है, ताकि कोई शिकायत ना रहे कि सर आप पूरी मेल नहीं पढ़ते हैं, आधी मेल पढ़ते हैं, हमने जो लिखा वो आप नहीं पढ़ते हैं, अपनी तरफ से आप पढ़ देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, पूरा

कोई भी फिल्टर नहीं है, पूरी तरह से हमने आपकी मेल को जैसा का जैसे जैसे जिस तरह से आपने हमें भेजा वैसे ही हमने आप तक पहुंचा दिए। 7:46 का समय हो रहा है और आपका हमारा ये प्यारा सा इस मॉर्निंग में साथ बना हुआ है, तो इस साथ को और भी खूबसूरत बनाते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप हमारे साथ ये जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

जहाँ दोस्तों वाकई में बचपन का वो ज़माना कभी कभी जब याद आता है तो बहुत सारी बातें बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं और बहुत अच्छा लगता है बचपन की यादों को जीना उनको याद करना। 7:55 का समय हो चुका है और ये समय इशारा यही कर रहा है कि आज के इस प्रोग्राम से बस अब हम यहीं से आपसे अलविदा कहें और जब तक इस प्रोग्राम से हम आपसे अलविदा नहीं कहेंगे तब तक अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात कैसे करेंगे। ठीक 8 बजे आप तक पहुंचेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से और ठीक 8:15 पर होगी आपकी हमारी पुनः मुलाकात जिसमें मैं तो आपके साथ रहने ही वाला हूं, साथ में एक और बहुत प्यारी सी दोस्त आपको ज्वाइन करेंगी। बस आप हमारे साथ इसी प्यार के साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।

0: भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र के शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसुलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने

0: निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
2: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
1: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
3: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
1: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल सम्पन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इजराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
4: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS

0: के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पहुंचना। गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत। सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
1: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
0: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात।
1: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ।
0: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल, सांस्कृतिक गतिविधियां और सेहत का ख्याल, अखबारों की सुर्खियां और देश दुनिया के समाचार,
1: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान। द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो,
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM।

0: जी हाँ दोस्तों, 8:16 का समय और साथ में 47, 48 और 49 सेकंड्स प्रोग्राम शुरू हो चुका है. गुड मॉर्निंग लखनऊ. मैं रतन आप सभी का स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ आपके अपने प्यारे से शो गुड मॉर्निंग लखनऊ पर. और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त भी आपको ज्वाइन करेंगी मेरे साथ, तो चलिए करते हैं उनका वेलकम. गुड मॉर्निंग.
1: गुड मॉर्निंग. मैं हूँ आपके साथ आयुषी. और भाई जैसे कि बताया रतन ने कि आज कटे वाले गुड मॉर्निंग लखनऊ पर हम ढेर सारी बातें, लेकिन बहुत सारी बातें करें उसके पहले एक बहुत प्यारा सा ट्रैक होगा जिससे होगी धमाकेदार शुरुआत.
0: तो बस इस गीत के साथ करते हैं आज के गुड मॉर्निंग लखनऊ की शुरुआत. आप हमारे साथ ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो।
1: आज का मॉर्निंग मंत्र।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कंप्लीट नाश्ता शो गुड मॉर्निंग लखनऊ, जिस पर जुड़े हुए हैं आपके दो दोस्त रतन और आयुषी आपके साथ। और 8:22 का समय हो चुका है और ये समय इशारा कर रहा है कि आज के मॉर्निंग मंत्रा को अब आप तक पहुंचा दिया जाए। तो आज का मॉर्निंग मंत्रा क्या कह रहा है?
3: देखिए, मंत्रा है बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस वाला। यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर। यानी समय पर अगर सावधानी बरती जाए तो बाद की बड़ी बड़ी परेशानियों से हमें समय रहते बचा सकती है।
2: बिल्कुल सही बात। और वाकई में जब कोई बड़ा व्यक्ति या बड़ा व्यक्तित्व तो कुछ बातें बोलता है तो उसमें बहुत गहराई होती है, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वाकई में बहुत महत्वपूर्ण ये बात हम तक पहुंचाई। और आज भी ये बात पूरी तरह से सार्थक है कि अगर आप किसी भी चीज में कोई भी सावधानी बरतते हैं तो बड़ी परेशानियों से आप बच सकते हैं। 8:23 का समय, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ, एक और बहुत ही प्यारा सा गीत आप सबके लिए। आप हमारे साथ ही बने रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki. Good morning, Lucknow. Har subah ki khoobsurat shuruaat.
1: आठ बज के 29 मिनट और देखिए किसके साथ हैं आप? आप अपने बहुत ही वाइब्रेंट दोस्तों के साथ हैं, रतन और आयुष ही आपसे बात कर रहे हैं 100.7 FM पर. और सुबह की ना ये जो शुरुआत होती है, मुझे लगता है आज का दिन है जैसे वीकेंड के बाद एक समा बन जाता है, एक अलग सी रफ्तार आ जाती है सबकी जिंदगी में, इधर उधर भाग दौड़ रहे होते हैं
2: जी.
1: और भाई जब हम बात कर रहे हैं कि जब आप भाग दौड़ रहे होते हैं तो बस एक छोटी सी चीज याद दिला दो कि जैसे हम बात कर रहे थे मंत्रा बेबी की, थोड़ा सा समय निकाल कर अपने लिए अगर आप सहेज के रख लें तो बहुत सारी दिक्कतों से बच जाएंगे, बहुत सारी मुसीबतों से बच जाएंगे, और अक्सर थोड़ा ध्यान दे तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे.
2: जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात आयुषी आपने कही कि अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं. और 8 जून का यह दिन हमें बहुत सारी बातों की ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है. और चूंकि आज 8 जून है, 8 जून का दिन अपने आप में बहुत ज्यादा खास, बहुत ज्यादा इसका महत्व है. कारण है इसका कि आज हम सभी मना रहे हैं विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस. दोस्तों मस्तिष्क ट्यूमर किसी भी लिंग के लोगों को प्रभावित करने के लिए सबसे घातक विकारों में से एक है, चाहे वो वयस्क हों या बच्चे. मस्तिष्क में पाए जाने वाले सभी प्राथमिक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कैंसरों में से अधिकांश 85 से 90% मस्तिष्क ट्यूमर के कारण होते हैं.
1: देखिए जो ये ब्रेन ट्यूमर दिवस की बात हम कर रहे हैं, इसका जो ये मेजर उद्देश्य है ये है कि इसके प्रति जागरूकता यानी अवेयरनेस को बढ़ावा दें. अगर आपको जल्दी से जल्दी इसके

0: आंकड़ों के बारे में पता लगेगा और आप खुद पर ध्यान देंगे तो आप इससे जल्दी जूझ पाएंगे और जितने भी मरीज हैं और उनके परिवार हैं उनको सहयोग और समर्थन देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है।
1: बिल्कुल सही।
0: अब देखिए इस दिवस की जो शुरुआत है वो वर्ष 2000 में जर्मनी में स्थित जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन में की गई थी। और ब्रेन ट्यूमर जैसे कि आप जानते हैं मस्तिष्क की कोशिकाओं यानी ब्रेन सेल्स का असामान्य और अनियंत्रित रूप से बढ़ना है, तो इसीलिए जरूरी है कि इस दिवस में इससे बीमारी से जुड़ी जो भी बातें इनफैक्ट जो मिथ्स हैं मिथक हैं उनको भी दूर करने के लिए बनाया जाता है। और वही रतन ये भी बता देते हैं कि हमारे साथ
1: आज हम कोशिश भी यही करेंगे कि एक विशेषज्ञ को भी हम आपके साथ जोड़ें ताकि आपको इस विषय में इस गंभीर विषय में और भी ज़्यादा अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। दोस्तों आज हम सभी विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं मना रहे हैं और चूंकि एक बहुत गंभीर बीमारी है बहुत सारे लोग पूरे विश्व में इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और इसीलिए ये दिवस हर वर्ष यानी कि प्रत्येक साल एक नई थीम के साथ भी मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी कि 2026 की जो थीम रखी गई है आज की वो रखी गई है करीबी नज़रिया अ क्लोजर लुक। दोस्तों इस थीम को रखने का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा पेशेवरों से लेकर आम जनता तक सभी को मस्तिष्क के शुरुआती चेतावनी संकेतों पर अधिक ध्यान देने और समय पर निदान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो वाकई में एक बहुत महत्वपूर्ण ये दिन और हम सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए हम समय समय पर ये दिन इन दिनों को याद करते हैं इन दिनों को मनाया जाता है। और आज हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि एक विशेषज्ञ भी आपके साथ हम अपने चैनल पर जोड़ें ताकि आप इस विषय में और भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए और भी बातें इस विषय पर आज हम ज़रूर करेंगे लेकिन अभी एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सबके लिए है।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
2: बज के 40 मिनट हो रहे हैं और गुड मॉर्निंग लखनऊ सुन रहे हैं आप अपने दो दोस्तों के साथ। रतन और आयुषी हैं आपके साथ और आज जैसे कि हमने बताया आपको कि आज 8 जून को हम विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस ऑब्जर्व कर रहे हैं और जैसे कि रतन ने और हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि जब ये इस सेंसिटिव गंभीर मुद्दे की बात हो रही है तो हमने सोचा है कि आपको जितनी भी जानकारी मिलेगी वो आज एक्सपर्ट के द्वारा ही मिलेगी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अंकुर बजाज, प्रोफेसर न्यूरोसर्जरी एट किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका 100.7 FM पर।
3: थैंक यू आयुषी
4: जी, बहुत बहुत सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपका आपका स्वागत है गुड मॉर्निंग लखनऊ पर। और सर आज विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस है, ये एक बहुत गंभीर सर समस्या है और आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये ब्रेन ट्यूमर आखिर है क्या।
3: ब्रेन ट्यूमर, जैसे शरीर में सारी कोशिकाएं होती हैं
4: जी,
3: वैसे दिमाग में भी कोशिकाएं होती है, तो ये कोशिकाएं कभी कभी

0: बहुत ज्यादा नियंत्रण से दूर बढ़ने लगती है
1: जी।
0: जब ये बढ़ने लगती है तो ये एक मांस का गट्ठा बना लेती है जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा ग्रो करना हमारे सेल्स का, ब्रेन सेल्स का होता है, ये ब्रेन ट्यूमर होता है
1: जी।
2: ओके सर, तो इस मतलब कई तरह के भी होते हैं ब्रेन ट्यूमर के, कुछ प्रकार भी हैं, और कितना ये गंभीर है सर?
0: हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ब्रेन ट्यूमर डे मनाते हैं ताकि जागरूक कर सके
2: जी।
0: मरीज आते हैं कि सर ब्रेन ट्यूमर है, अब मैं मर जाऊंगा, ये सबसे बड़ा मिथ है। मैं ऐसे बताऊंगा कि ब्रेन ट्यूमर जो होता है ना, एक मास है, ये जनरली दो प्रकार का होता है। एक प्रकार होता है बिनाइन, जो बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है, जो अगल बगल के टिश्यू को खाली धक्का मारता है और ग्रो करता है। ऐसा ट्यूमर अक्सर पूरा निकाला जा सकता है और मरीज काफी हद तक काफी अच्छे से जी सकता है
1: जी।
0: दूसरा टाइप का होता है जो मैलिग्नेंट है, जो बहुत जल्दी ग्रो करेगा, अगल बगल के टिश्यूज में घुस जाएगा, वो उसको धक्का नहीं मारेगा, वो उनको इन्वेड कर लेगा। तो ऐसे ट्यूमर में, ऐसे ट्यूमर का भी ऑपरेशन करना होता है, पर ये थोड़ा मुश्किल

0: ग्रो करता है। ऐसा ट्यूमर अक्सर पूरा निकाला जा सकता है और मरीज काफी हद तक काफी अच्छे से जी सकता है।
1: जी।
0: दूसरा टाइप का होता है जो मैलिग्नेंट है, जो बहुत जल्दी ग्रो करेगा, अगल बगल के टिश्यूज में घुस जाएगा, वो उसको धक्का नहीं मारेगा, वो उनको इन्वेड कर लेगा। तो ऐसे ट्यूमर में, ऐसे ट्यूमर का भी ऑपरेशन करना होता है, पर ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये जो सेल्स है वो घुस जाते हैं अंदर।
1: जी सर, ट्यूमर का एक ये कहा जाता है कि जो ट्यूमर है किसी खास उम्र के लोगों में ज्यादा देखा जाता है या फिर ये किसी भी एज ग्रुप को प्रभावित कर सकता है?
0: अब ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो ये नवजात शिशु से लेके बुजुर्ग, 100 साल के बुजुर्ग किसी में भी हो सकता है।
1: जी।
0: तो युवा, बुजुर्ग, नवजात सब में ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो उम्र देख के हम ये कह नहीं सकते कि ऐसे ब्रेन ट्यूमर नहीं हो सकता, ये ऑल एज ग्रुप हो सकता है।
2: तो सर, अगर जानना चाहें कि सबसे पहली बात कि क्या इसकी कोई वजह है जो हमें पता हो, या फिर ये भी हम जानना चाहेंगे कि इसके शुरुआती लक्षण कौन से दिखे लोगों को, जिसे वो नजरअंदाज ना करें।
0: हाँ, लक्षण की बात करूंगा मैं, तो सबसे ज्यादा लक्षण लोग नजरअंदाज करते हैं सर दर्द। इसमें एक लक्षण है सर दर्द जो पहले से ज्यादा धीरे धीरे बढ़ता रहता है, अपनी पोजिशन चेंज करता है, इसके साथ साथ उल्टी आती है सुबह उठ के, उल्टी, काफी सारी उल्टी होती है, उल्टी आना। तीसरा, दौरा आना
2: जी।
0: अचानक कहीं भी दौरा, झटका आ जाए, हाथ पैर में एक तरफ से धीरे धीरे कमजोरी आ रही है जो बढ़ती जा रही है। कभी कभी पर्सनैलिटी चेंज भी देखा गया है कि मरीज का बर्ताव बदलने लगता है, मेमोरी लॉस होने लगता है। तो अगर ये सब लक्षण है आपने, तो कृपया करके किसी निकटतम डॉक्टर को, न्यूरोलॉजिस्ट, वीडियो सर्जन को तुरंत दिखा दिया।
1: जी,
0: इसमें बोलूंगा कि बहुत सारे कारण देखे गए हैं, ऐसा होता है कि जेनेटिक एक नियम है, इसमें जिसका जेनेटिक है दूसरा है, तो जेनेटिक कारण है। और कुछ अभी कहते हैं कि रेडिएशन के कारण हो रहा है, पर कोई वैज्ञानिक साइंटिफिक उसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ
1: प्रमाण नहीं
0: है हुआ है कि वो रेडिएशन के थ्रू
1: करा। जी जी जी जी सर, ये देखा गया है कि अक्सर कोई ऐसी बड़ी बीमारी होती है तो लोग अक्सर बहुत सारे, अगर कहा जाए तो पुराने लोग होते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसको बहुत सारे मिथकों से जोड़ देते हैं, और इसके साथ भी सर बहुत सारे मिथक ऐसे जुड़े हुए हैं, तो क्या सर कुछ गलत धारणाएं या मिथक भी इसमें इसके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा क्या हो सकता है सर, क्या बताया जा सकता है इसमें?
0: बिल्कुल बिल्कुल, मिथ इसके साथ भी जुड़े हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे पहला मिथ, मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं ब्रेन ट्यूमर हो गया अब मैं मरने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। इसका इलाज संभव है, लोग काफी काफी जीते हैं, ब्रेन ट्यूमर की पत्ते से जांच कराएं ताकि पता चल सके किस तरह का ब्रेन ट्यूमर है, तो इसका इलाज संभव है। दूसरा मिथ ऐसा है कि मुझे सर दर्द है तो ब्रेन ट्यूमर है, ऐसा नहीं है। सर दर्द बहुत तरीके के होते हैं, हर सर दर्द ब्रेन ट्यूमर नहीं है,
2: जी,
0: ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा मिथ मैं ये बोलूंगा कि अगर बार बार चक्कर आना और दौरा आना, इसका मतलब भी नहीं कि ब्रेन ट्यूमर, ठीक है, और हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं है
2: जी,
0: ये इम्पोर्टेंट है
2: सर। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ब्रेन ट्यूमर पूरी तरह इसका क्योर है, इलाज पॉसिबल है, और इलाज की जो सफलता है वो किन बातों पर निर्भर करती है?
0: तो अब साइंस बड़ा आगे बढ़ चुका है, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट आ गए हैं, माइक्रोस्कोप आ गए हैं, इमेजिंग टेक्निक आ गई है, जिससे हम लोग काफी डिफाइन करते हैं और ऑपरेट करते हैं। अभी ऑपरेशन में न्यू नेविगेशन टेक्निक आ गई है, जैसे हम नेविगेट करते हैं अपना रास्ता गूगल से, GPS से, वैसे दिमाग यदि नेविगेट करते हैं कि हम लोग किस रास्ते से जाए ब्रेन ट्यूमर के, ताकि दिमाग के सेल्स जो नॉर्मल है उनको बचा के पूरा ट्यूमर निकाला जा सके।
2: Okay.
0: तो अब इलाज पे बहुत सारी चीज संभव करके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उम्र क्या है आपकी, आपने क्या क्या अगर कोमोर्बिडिटीज है, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइड, आपकी ओबेसिटी का लेवल क्या है, ठीक है, और आपका ट्यूमर कितना बड़ा है, किस लोकेशन पे है। दिमाग में लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर छोटा सा ट्यूमर जो दिमाग में ब्रेन स्टेम पे लोकेटेड है, ब्रेन स्टेम एक ऐसा एरिया है जो हमारा पूरा स्टेम होता है दिमाग का, तो सारे कनेक्शन दिमाग के लेके पूरी बॉडी में जाता है, तो वो एक जटिल एरिया है, रेदर देन कोई पेरिफेरल ट्यूमर है, तो लोकेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट है ट्यूमर।
1: बिल्कुल सर, आज आप
0: परिभाषा इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग ट्यूमर निकालते हैं और काफी सफलतापूर्वक देखते हुए।
1: बिल्कुल सर,
0: बताऊं कि 2017 से गरीब अभी भी आ रहे हैं।

0: अपना काम काज कर रहे हैं और चलते जा रहे हैं ऐसे हर साल के उम्र का पर देख सकते हैं लॉन्गेविटी ऑफ इंक्रीज मोर देन 10 ईयर्स हो गए
1: वाकई में सर जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने पहुंचाई और जाते आते आपसे बस हम यही जानना चाहेंगे कि आज विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के अवसर पर आप जो हमारे श्रोतागण इस वक्त आपको सुन पा रहे हैं आप उनसे क्या संदेश के रूप में कहना चाहेंगे प्लीज बताइए
0: मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा एक ब्रेन की असली बीमारी कोई भी लक्षण को नजरअंदाज नहीं करे गूगल नहीं करे डॉक्टर से संपर्क करे डॉक्टर से बात करें डॉक्टर से काफी ज्यादा बात करें और डॉक्टर को सारे लक्षण बताओ कोई भी लक्षण छोटा बना दे कोई भी लक्षण आने से पहले ब्रेन विस्पर बिफोर हैविंग ब्रेन प्रॉब्लम कोई भी चीज विस्पर करती है छोटे छोटे लक्षण आते रहते हैं जिसते रहते हैं बड़ी चीजों के सब संकेत करते हैं तो उसको नजरअंदाज ना करें हेल्दी रहे खुश रहे अच्छा खाएं स्वस्थ जीवन जिए और पॉजिटिव माइंडसेट करें
1: बिल्कुल सर
2: थैंक यू सर
1: आप हमारे साथ जुड़े और इस दिवस पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास और हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद सर
2: थैंक यू सर
0: धन्यवाद गुड मॉर्निंग
1: दोस्तों आज विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के अवसर पर हमारे साथ जुड़े
2: जी हमारे साथ है डॉक्टर अंकुर बजाज प्रोफेसर न्यूरोसर्जरी एट किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ और देखिए भाई इतनी सारी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है क्योंकि जान है तो जहान है और जान सबसे पहले आपका ये बनता है फर्ज कि आप अपना ख्याल रखें तभी दूसरों का रख पाएंगे लेकिन भाई इसी से जुड़ा हुआ हमारे पास आपके लिए एक मुद्दा भी है
3: मुद्दा आज का पूरे समाज का
1: जी हाँ दोस्तों 8:49 का समय और साथ में आज का मुद्दा भी हम आपको जरूर बता देंगे क्या ताकि आज के मुद्दे पर भी आप अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं
2: तो देखिए मुद्दा इसी से जुड़ा हुआ है जो आज का दिवस है कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर लोग डॉक्टर के पास देर से क्यों जाते हैं क्या लगता है आपको आप हैं हम हैं हम देर से क्यों जाते हैं लापरवाही है डर है कोई व्यस्तता है या बस यूं ही क्यों करते हैं हम ऐसा यही हम जानना चाहते हैं आपसे और आप कहां लिखकर भेजेंगे हमें
1: हमारी मेल आईडी fmakashwanilakhnow@gmail.com के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आज के मुद्दे पर अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं फिलहाल ये प्यारा सा गीत आप सबके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
1: आठ बजकर 54 मिनट का समय, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपके दो दोस्त आयुष और रतन आपके साथ। और दोस्तों, आज 8 जून है और 8 जून का दिन अपने आप में बहुत खास है और इतिहास के पन्नों में भी ये दिन बहुत खास हो जाता है, उस पर भी ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमारे शहर लखनऊ में बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं, उनकी जानकारी भी आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आप उन क्षेत्रों के आसपास हों तो आप उनमें शिरकत कर सकें, उनमें शामिल हो सकें। दोस्तों, अंत लखनऊ विश्वविद्यालय के योग विभाग में AI और योग विषय पर सेमिनार का आयोजन हो रहा है, द्वितीय परिसर जानकीपुरम में सुबह 10 बजे से।
2: तो पूरा टाइम है आपके पास तैयार होकर जाने का अभी भी। और अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जगदम्बा योग वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जल योग का प्रदर्शन गोमती नगर में विनय खंड सुबह 11 बजे से आज।
1: जी हाँ दोस्तों, और वहीं अगर बात करें तो मौसम केंद्र लखनऊ को क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र के रूप में उन्नयन का उद्घोषणा समारोह मार्स प्रेक्षाग्रह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज सुबह दोपहर 12 बजे से इसका आयोजन हो रहा है। अगर आप इस क्षेत्र के आसपास कहीं भी हैं तो आप इस आयोजन में भाग ले सकते हैं। वहीं दोस्तों, 9 दिवसीय श्रीराम कथा सेवा अस्पताल की ओर से श्रीराम कथा का आयोजन हो रहा है सेवा अस्पताल की ओर से, सीतापुर रोड में शाम 5 बजे। और वहीं है जो अगर कोई आप में से गुरु का सिमरन भी सुनना चाहता है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, गुरुद्वारा आलमबाग में इसका आयोजन किया जा रहा है आज ही की शाम 6:30 बजे। तो आज इस आयोजन में आप शामिल हो सकते हैं और इनमें शिरकत कर सकते हैं। तो लखनऊ हमारा शहर बहुत ही प्यारा खूबसूरत है शहर, इसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसे आयोजन होते रहते हैं जो आपको बहुत कुछ देने की कोशिश करते हैं।
2: और बिल्कुल, मुझे क्या लगता है रतन, कि जैसे हम कई जगह कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम लोग का स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, और अगर वो स्क्रीन टाइम बचाना है, थोड़ी सेहत की भी खैर ख्याल हो जाएगा और आपकी आंखें भी बच जाएंगी और आप बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स भी अटेंड कर लेंगे।
1: जी हाँ दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर आप करते हैं तो वाकई में बहुत अच्छा है। कोशिश कीजिए स्वयं को और खुद के परिवार के लोगों को, बच्चों को जरूर अपने मोबाइल स्क्रीन से थोड़ा दूर ले जाएं। और हमारे साथ यूँ जुड़े रहें, सुनते रहें 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। 8:56 का ये समय इशारा यही कर रहा है कि गुड मॉर्निंग लखनऊ के पहले घंटे को हम यहीं पर विराम दें, मिलते हैं न्यूज़ ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ यूँ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। लखनऊ से प्रकाशित आज लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रही यूपी पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। साथ ही अखबार ने प्रदेश में नई स्टार्टअप नीति 2026 और डेटा सेंटर नीति की मुख्यमंत्री के द्वारा की गई समीक्षा से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी खबर को नवभारत टाइम्स ने शीर्षक दिया है, फिर इम्तिहान की घड़ी। उपशीर्षक है, यूपी पुलिस में सिपाहियों के 32,679 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आज से। नकल या अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क। अमर उजाला का शीर्षक है, सिपाही भर्ती, बस का किराया आधा, प्रवेश से पहले आधार का सत्यापन। उपशीर्षक है, 8, 9 व 10 जून को दो दो पालिया में लिखित परीक्षा, 28 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री के द्वारा की गई समीक्षा से जुड़ी खबर को हिंदुस्तान का शीर्षक है, महिला दिव्यांग उद्यमियों को स्टार्टअप में विशेष प्रोत्साहन। उपशीर्षक है, मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित नई स्टार्टअप नीति की समीक्षा के दौरान दिए निर्देश। दैनिक जागरण का शीर्षक है, वर्ष 2030 तक 2 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करे योगी। इसी के साथ ही अखबारों की अन्य सुर्खियां हैं। पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को 50% बस किराया देना होगा। नीट यूजी की दोबारा परीक्षा के लिए 551 शहरों की सूची जारी। परियोजना की लागत 25 करोड़ से अधिक होगी तो होगा थर्ड पार्टी ऑडिट। यूपी में मॉनसून लेट, अब 24 तक पहुंचेगा और भारत से टकराव नहीं, सहयोग चाहिए नेपाल। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, विपक्षी मोर्चे में खींचतान। पत्र लिखता है कि विपक्षी दलों के मोर्चे INDIA की बैठक एक ऐसे समय होने जा रही है जब कांग्रेस और उसके अन्य घटकों के बीच खींचातानी दिख रही है। हिंदुस्तान ने युद्ध के 100 दिन शीर्षक से

संपादकीय में लिखा है कि अमेरिका ईरान युद्ध ने दुनिया में आर्थिक विकास को प्रभावित किया है। जंग का इतना दुष्प्रभाव तो 1560 दिनों से जारी यूक्रेन रूस युद्ध का भी नहीं देखा गया था। इसी के साथ ही अखबारों की सुर्खियां समाप्त होती हैं। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTEC Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की.
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत.
3: बज के 4 मिनट और देखिए, हमने कहा था कि उस पार भी हम आएंगे आपसे मिलने, आपसे जुड़े, बहुत सारी बातें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने लेकर. तो आ गए ना आपके दोस्त रतन और आयुषी 100.7 FM पर.
4: जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हमने आपसे वादा किया था कि आपसे जरूर मुलाकात करेंगे गुड मॉर्निंग लखनऊ के सेकेंड हाफ पर. तो मैं रतन और हमारे साथ आयुषी, हम दोनों आपका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं आपके अपने प्यारे से शो गुड मॉर्निंग लखनऊ के सेकेंड हाफ पर. आप हमारे साथ इसी प्यार के साथ जैसे पिछले घंटे जुड़े रहे, इस घंटे में पूरा और भरपूर साथ हमें दीजिए. हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहेंगे. और चूंकि आज 8 जून है, बहुत बड़ा एक दिवस जो कि हम लोग मना रहे हैं, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस हम लोग मना रहे हैं. और वाकई में दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा विषय है और आज हमारा जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं इन्हीं बातों से जुड़ा हुआ है, इसी के अर्द गिर्द घूमता हुआ है. और आज का मुद्दा क्या है
3: तो हम आपको याद दिला दें कि हम भी आपके मेल्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आपके मेल्स आने शुरू हो गए हैं और हम पढ़ने की भी पूरी कोशिश करेंगे सारे मेल्स आराम से. लेकिन आपको याद दिला दें कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर हम डॉक्टर के पास देर से क्यों जाते हैं, आज का मुद्दा यही है. क्या वजहें लगती हैं आपको, लापरवाही है, डर है, व्यस्तता है, क्या बात है? आप लिखकर बताएं हमें, साझा करें हमसे अपनी दिल की बात. और हम भी ये जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा है.
4: जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल आपने अपने दिल की बात हम तक साझा कर सकते हैं. हमारी मेल आईडी है fmakashwanilakhnau@gmail.com. इस मेल आईडी के माध्यम से आप आज हमारे साथ जुड़ें, आज के मुद्दे पर अपने विचार हम तक पहुंचाएं. हमें आपकी मेल्स का इंतजार है. बस यूं ही मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ.

0: जी हाँ दोस्तों, आप हमें ज़रूर अच्छे लगते हैं और वाकई में जब आपका साथ हमारे साथ जुड़ता है तो आप और भी ज़्यादा हमें खूबसूरत और अच्छे लगने लगते हैं। 9:11 का समय हो चुका है, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग लखनऊ और आपके दो दोस्त आयुषी और रतन आपके साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद दानिश सर। चलिए जानते हैं आज के मौसम का क्या हाल रहने वाला है लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग लखनऊ पर।
1: गुड मॉर्निंग,
0: वेरी गुड मॉर्निंग सर।
2: तो सर कैसा है लखनऊ का मौसम का हाल आपसे जानना चाहेंगे।
1: देखिए मौसम का हाल करें तो ऐसा अच्छी धूप निकली हुई है लेकिन दोपहर में कुछ हल्के सी बादलों की आवाजाही होकर थोड़ा सा मौसम कुछ हल्का सा सुहाना हो सकता है दोपहर तक।
0: अच्छा
1: ये परिस्थितियां हैं।
0: क्या बात, तो मतलब रात में सर मतलब फिर से वही गर्मी का मौसम रहेगा या रात में भी मौसम
1: गर्मी का मौसम
0: थोड़ा सा
1: दो तीन दिन रहेगा उसके बाद फिर से एक मौसम का 12 तारीख से फिर से एक माहौल बन रहा है।
0: अच्छा।
1: तो कहीं ना कहीं आज भी एक दोपहर में हल्का सा बादलों की आवाजाही का स्पेल छींटाकशी टाइप का हो सकता है।
0: कुल मिलाकर अदरवाइज सर धूप रहेगी।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। और आज एक सर प्रोग्राम भी हो रहा है उसके विषय में।
1: आज हमारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 12 से 1 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक प्रोग्राम है जिसमें हमारा जो मौसम केंद्र लखनऊ है उसको क्षेत्रीय

0: मौसम केंद्र लखनऊ का शुभारंभ हो रहा है, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज किया जाएगा। और साथ में जैसे क्षेत्रीय बनने के बाद उत्तर प्रदेश का भी मौसम और उत्तराखंड का मौसम की देखरेख हमारे यहाँ लखनऊ से की जाएगी।
1: जी सर, आप आज इस प्रोग्राम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वाकई में सर बहुत अच्छा लगा सुनकर, और कोशिश हमारी रहेगी कि हम लोग भी ज़रूर पहुँचें इस प्रोग्राम में, और जितने लोग और भी सुन रहे हैं वो भी ज़रूर पहुँचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।
2: थैंक यू सर। देखिए हमारे साथ जुड़े मोहम्मद दानिश जी, जो कि हैं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक, और हमारे लिए लेकर आए हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। कह रहे हैं भाई छाता अपना अपने पास रख लीजिए, धूप है तो लगा लीजिए, बूंदे पड़ी तो लगा लीजिए, आपका बचना जरूरी है, न जुकाम होना चाहिए न हीट स्ट्रोक।
1: जी हाँ दोस्तों, जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप पूरी तरह से मौसम का आनंद ले सकेंगे, और ये बदलते हुए मौसम का आनंद लेने के लिए स्वस्थ रहना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
2: तो बस अब इतनी प्यारी प्यारी बातें हो गई हैं, क्यों वेट कराए हम प्यारा सा गाना सुनने के लिए भी रतन।
1: जी बिल्कुल, तो ये खूबसूरत ट्रैक आप सबके लिए, एंजॉय कीजिए, हम भी करेंगे एंजॉय, और आप हमारे साथ इसी प्यार के साथ जुड़े रहिए।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
2: नौ बजकर 20 मिनट का समय और साथ में प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ, जिस जो कि आपके साथ इस वक्त हम सभी एंजॉय कर रहे हैं और आपके दो दोस्त आपके साथ जुड़े हुए हैं, रतन और आयुषी। और दोस्तों, बहुत सारी मेल्स आपकी हैं हमारे पास, सुबह से ही मिल रही हैं, और बहुत सारी मेल्स हमने सदाबहार गीत में भी शामिल करी, उसमें भी आपने बहुत सारी मेल्स हमें भेजी, और इस प्रोग्राम में भी आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमें मेल्स भेज रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास जो अगली मेल आई है, यानी इस प्रोग्राम की जो पहली मेल अब हम लेने जा रहे हैं, वो पवन कुमार साहब की मेल है, और कह रहे हैं, नमस्ते मैम, मैं पवन कुमार सिंहपुर सिधौली सीतापुर से। मैम आप कैसी हैं, बताइए।
3: मैं अब आपका मेल पाकर बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ, और अगर आप मुद्दे पे लिखते तो और अच्छी हो जाती।
2: लेकिन आपने आगे जाकर पूरे जज्बात, पूरी बातें, सब कुछ बदल दिया और कहा एक सॉन्ग सुना दीजिए। तो हम तो सोच रहे थे कि आप वहाँ पे आगे जाके आपने मुद्दे पे कोई बात करेंगे, लेकिन आपने तो सीधे कहा सॉन्ग बजा दीजिए। तो हमारे जो आपकी फरमाइशी प्रोग्राम आते हैं बहुत सारे, आप उनमें आप अपनी मेल भेजिए, उसमें आपकी पसंद का ज़रूर सॉन्ग प्ले किया जाएगा। लेकिन ये जो कार्यक्रम है, इसमें हम आपसे आज के मुद्दे पर जानना चाहेंगे कि आप क्या अपने विचार रखते हैं, प्लीज़ हम तक पहुँचाइए अगर आपके पास समय हो। राम मोहन गुप्ता जी की अगली मेल हमारे पास पहुँची है, और ये हमें मेल कर रहे हैं लखीमपुर खीरी से। लिखते हैं, पावन सेठ घाट के तट पर विधायक जी के नेतृत्व में हम नदी की स्वच्छता हित पूजन अर्चन सब शुरू करेंगे, कार्यक्रम ऐसा इनका कुछ है, और छठ पूजा देव दीपावली पूर्णिमा पर आरती जैसे आयोजन होते रहते हैं, अनवरत संघ होती पर्यावरण संरक्षण कर वृक्षारोपण। ओके, प्राचीन शिव मंदिर एवं प्रभु राधा कृष्ण मंदिर से प्रभु के धाम हैं स्थापित इसी तट पर, संजोए एक नदी एक जनपद ललाम। बहुत ही अच्छी पंक्तियां आप बना के भेजते हैं, और कब किस विषय पर पंक्तियां बना दें ये भी पता नहीं चलता है। थैंक यू।

0: सो मच रामन गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपके इस मेल के लिए।
1: अब देखिए अगला मेल जो हम ले रहे हैं वो है गीता जी का। कहां से लिखा है ये नहीं मालूम, नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन लिखा है मुद्दे पर कि डॉक्टर के पास जाने में देरी करने से छोटी बीमारी गंभीर रूप ले सकती है जिससे इलाज लंबा और महंगा हो जाता है। बिल्कुल सही बात। कैंसर या दिल की बीमारी जैसी गंभीर समस्याओं का समय पर पता नहीं चल पाता, अंगों को नुकसान पहुंच सकता है और जान का जोखिम बढ़ सकता है। बहुत सही बात कह रही हैं आपकी, लंबा भी हो जाता है, महंगा भी हो जाता है और मुश्किल भी हो जाता है इलाज अगर आपने की देरी तो।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मोनू सेठ जी की भी मेल हम तक पहुंची है। उन्होंने कुछ घरेलू नुस्खे बताए हैं कि भारतीय संस्कृति में लोग पहले दादी नानी के नुस्खे या इंटरनेट से इलाज करने की कोशिश करते हैं जिससे सही समय पर डॉक्टर तक पहुंचने में देरी हो जाती है। झाड़ फूंक के चक्कर में भी कुछ लोग ज्ञान बांटने से थोड़ा बहुत डर जाते हैं। ओके, पैसा बचाने के चक्कर में अधिक समस्या को बढ़ावा दे देते हैं, अक्सर ऐसा होता है। और कुछ परिवारों में आर्थिक समस्या की वजह से, लेकिन ऐसे लोगों के लिए सरकार के द्वारा कई स्कीमें चलाई जा रही हैं, उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको कोई समस्या होती है तो आपको अपना इलाज स्वयं करने की ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, डरने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई समस्या है तो ज़रूर आप जाइए चिकित्सक से परामर्श लीजिए और उसके बाद अपना इलाज प्रारंभ कीजिए। अपनी तरफ से इलाज करना ये कोई समझदारी वाली बात नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मोनू सेठ जी अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए।
1: वैसे मोनू सेठ जी ने थोड़े इमेज की लड़ियां भी लगाई है। एक में लिखा है कि गाने बहुत पसंद आए, शुरुआती गाने से तो एकदम माहौल बन गया। तो थैंक यू, आप सुन रहे और अब हम अगला मेल ले रहे हैं सोनू परवाना जी का, खालिसपुर ऊंच गांव अमेठी से, और कह रहे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने, स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम और पता लगाने, लक्षणों का प्रबंधन करने और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के साथ भरोसेमंद संबंध विकसित करने के लिए नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाना आवश्यक है। देखिए भाई, लब्बो लुआब यह है कि आप अपने डॉक्टर मत बनिए, सेल्फ डॉक्टर मत बनिए। आपको नहीं मालूम कि ऊपर से दिखने वाली मामूली सी बीमारी अंदर कितना नुकसान कर सकती है, तो आप डॉक्टर के पास जरूर
0: जाएं। सही बात है ये, क्योंकि आप कभी कभी कुछ इलाज छोटा मोटा अपने स्तर पर कर लेते हैं और उससे आपको थोड़े समय के लिए राहत भी मिल जाती है, लेकिन जो आपकी मेन समस्या है, जो आपकी जड़ में जो आपकी मुख्य रूप से समस्या, उसका इलाज नहीं हो पाता और वो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती जाती है और जब वो गंभीर रूप ले लेती है तब आपको पता चलता है कि ये समस्या ऐसी हो गई और अब इसका इलाज कैसे कराया जाए, वो एक गंभीर विषय हो जाता है। तो ऐसा ना हो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि समय पर ही चिकित्सक के साथ परामर्श कर लिया जाए। अरुण कुमार साहब का भी मेल हम तक पहुँचा है, घमैया हरदोई से हमें मेल कर रहे। रतन जी आपको और आयुषी जी आपको प्यार भरा नमस्कार।
1: अरे बहुत नमस्कार,
0: तो आपको भी नमस्कार हम दोनों की तरफ से। आज का मॉर्निंग मंत्रा बहुत प्रेरक था, थैंक यू सो मच। और आज का मुद्दे पर ये कहना चाहते थे, मेरा कहना यह है कि मेरी छोटी मोटी परेशानी होने पर समय के अभाव के कारण, या फिर एक कारण ये भी हो सकता है कि जानकारी का अभाव हो सकता है, इसलिए मैं उनका इलाज स्वयं करता हूँ। ऐसा मत किया करिए। और इन्हें गीत अच्छे लग रहे हैं, जानकारी भी जो दी जा रही प्रोग्राम्स में वो इन्हें पसंद आ रही है। थैंक यू सो मच अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली मेल किन की है?
1: देखिए अगली मेल हम ले रहे हैं आंचल सेठ, आंचल अंकित सेठ रायबरेली से, और कह रही है डॉक्टर से सलाह लेना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भी बीमारी का सही समय पर सटीक निदान और सुरक्षित इलाज सुनिश्चित करता है। विशेषज्ञ की देखरेख में स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम किया जा सकता है जिससे गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है।
0: बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। निधि चौरसिया ने हमें गुड मॉर्निंग भेजा है, तो निधि जी गुड मॉर्निंग के साथ साथ आज के विषय पर भी आप कुछ लिख सकती हैं तो ज़रूर लिख के भेजिए, अभी बहुत ढेर सारा समय है हमारे पास। सुधांशु जी ने बहुत सारा लिखकर भेजा है, बहुत सारा ज्ञान भेज दिया हमारे पास, और ये इटौंजा बख्शी का तालाब ज़िला लखनऊ से हमें मेल कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। टॉपिक पर इन्होंने लिखा है कि स्वास्थ्य समस्या होने पर अक्सर लोग डॉक्टर के पास देरी से जाते हैं, इसके पीछे कई सामाजिक, मानसिक और अंधविश्वास के जुड़े कारण होते हैं। तो बहुत सारा इन्होंने पूरा डिटेल में मेंशन कर दिया उस बात को, तो समय होगा जरूर हम उसको भी पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपकी मेल हम तक पहुंची। तो 9:26 का समय हो चुका है, लगातार हमारे पास मेल्स आ रहे हैं और अभी भी बहुत सारा आपके पास समय है कि आप अपने मेल्स हम तक पहुंचाएं। फिलहाल एक और बहुत ही प्यारा सा गीत आप सबके लिए गुड मॉर्निंग लखनऊ पर आपके दो प्यारे दोस्तों के द्वारा, इसे एंजॉय कीजिए। हमारे साथ ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो
1: लखनऊ की।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
4: भाई 9:31 हो रहे हैं और गुड मॉर्निंग लखनऊ पे रतन और आयुषी आपके साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं और आपसे प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं और आपकी सुन भी रहे हैं।
5: जी हाँ दोस्तों, आपकी सुन भी रहे हैं और आपकी भेजी गई मेल्स को पढ़ भी रहे हैं और अभी आप जो मेल्स और भेजेंगे उनको भी जरूर हम पढ़ेंगे, लेकिन आज के मुद्दे पर अपने विचार तो हम तक पहुंचाइए। हमें आपकी मेल्स का पूरी तरह से इंतजार है और आज का जो मुद्दा हमारा है वो भी कुछ, क्योंकि आज हम सभी मना रहे हैं विश्व मस्तिष्क कैंसर दिवस और इसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा मुद्दा ये है कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर हम लोग या आप लोग अक्सर डॉक्टर के पास देर से क्यों जाते हैं।

0: करते हैं इसमें हमारी लापरवाही होती है या फिर हमारा डर होता है या फिर हमारी व्यस्तता होती है इनमें से क्या आपको लगता है आप हमें बताइए हमें आपके मेल्स का इंतजार है fmakashwanilakhnow@gmail.com इस मेल आईडी के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ें और आज के मुद्दे पर अपने विचार भी हम तक पहुंचाएं 9:32 का समय है और
1: देखिए मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था
0: जी मन में ख्याल आता है आपके
1: बिल्कुल ऐसे बहुत सारे आते हैं कुछ कुछ बोल देती हूँ
0: कुछ ख्याल ऐसे हैं जो बाहर आ जाते हैं
1: अच्छा आप जैसे कि मान लीजिए बहुत सर्दी है और गलत समय पर हमने आइसक्रीम खा ली तो जुकाम पकड़ लेता है
0: बिल्कुल
1: गलत समय पे बारिश में भीग गए तो जुकाम पकड़ लेता है जोर से हमने गाड़ी चलाई ओवर स्पीडिंग की गिर गए तो चोट लग गई पर कई चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हमें समझ भी नहीं आता कि हमारी हेल्थ पे कितना नुकसान पड़ रहा है हमें लगता है कि ये तो हमसे डायरेक्टली रिलेटेड है ही नहीं ऐसे ही एक दिन पे हम बात करने वाले हैं जिसका हर इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है
0: जी हाँ।
1: हम बात कर रहे हैं विश्व महासागर दिवस की यानी वर्ल्ड ओशन डे की
0: जी
1: अब सोचिए भाई हम तो यहाँ लखनऊ में बैठे हैं हमसे कितना दूर है समंदर अब समंदर जाना आसान नहीं है लेकिन वहां जो कुछ भी हो रहा है उसका सारा इम्पैक्ट उसका सारा प्रभाव आप पर पड़ रहा है आप जो खा रहे हैं आप जो पी रहे हैं यहां तक कि जो सांस ले रहे हैं उसमें भी कितना योगदान है हमारे महासागर का यही बात जानने के लिए विश्व महासागर दिवस मनाया जा रहा है
0: जी हाँ दोस्तों विश्व महासागर दिवस आज यानी 8 जून को हम सभी और पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है
1: देखिए ये जो इस दिन का जो उद्देश्य है ना वो हमारे जीवन में महासागरों के महत्व को समझाना ही है और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक करना है इस दिवस को मनाने का विचार सबसे पहले साल 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए अर्थ समिट यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो था उसके दौरान रखा गया था और इसके बाद यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2008 में एक आधिकारिक प्रस्ताव पास किया और 8 जून यानी आज के दिन पूरी दुनिया के लिए विश्व महासागर दिवस घोषित कर दिया जिसके बाद साल 2009 से हर साल मनाया जा रहा है
0: तो दोस्तों हमारे देश में महासागर बहुत हैं और पूरे विश्व में महासागरों की जो संख्या है वो भी अच्छी खासी है तो आप वाकई में इनकी जो महत्ता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है कि डायरेक्टली जीवन से जुड़े हुए हैं और हम सबका जीवन जल पर पूरी तरह से निर्भर भी है ये हम सभी जानते हैं लेकिन पानी पीने योग्य जो पानी है उसकी जब बात की जाती है तो वो बहुत थोड़ा सा है ना और अगर वैज्ञानिक तथ्यों की बात करें यहाँ पर हम तो हमारी पृथ्वी का लगभग 71% जो हिस्सा है वो महासागरों से घिरा हुआ है ना ये न सिर्फ करोड़ों समुद्री जीवों का घर है बल्कि पूरी दुनिया के पर्यावरण और मौसम के संतुलन को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं दोस्तों वैज्ञानिक जो आंकड़े हैं उनके अनुसार अगर हम बात करें तो हमारे वायुमंडल की कुल ऑक्सीजन का लगभग 50% से अधिक हिस्सा महासागरों में होने वाले मरीन प्लांट्स द्वारा तैयार किया जाता है यानी कि समुद्री जो पौधे होते हैं उनके द्वारा जो ऑक्सीजन बनती है वो तैयार होती है
1: बिल्कुल और देखिए महासागर वातावरण में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 30% हिस्सा जो है वो महासागर खुद में सोख लेते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के जो खतरनाक असर होते हैं उसको कम करने में मदद मिलती है अब आज प्लास्टिक प्रदूषण अत्यधिक मछली पकड़ना जलवायु परिवर्तन जैसी जो चुनौतियां हैं समुद्री जीवन के लिए बड़ा खतरा बन चुकी हैं और अगर हम सब ने एक एक करके अपना कर्तव्य नहीं निभाया इन्हें नहीं संजोया इन्हें नहीं सहेजा तो सोचिए ऐसा नहीं है कि जो तटीय देश है उन्हीं की जिम्मेदारी है दूर बैठे हम सब की जिम्मेदारी है कि संरक्षित करें वरना पानी नहीं होगा ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम कैसे जीवित रहेंगे
0: जी हाँ दोस्तों बहुत आवश्यक है कि हम सभी पानी को बचाएं और पीने योग्य पानी की जो हम लोग वेस्टेज करते हैं उसको रोकना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि 71% तो महासागरों से हम घिरे ही हुए हैं लेकिन वो जो महासागर उनमें जो वाटर है वो पीने योग्य नहीं है लेकिन जो हमारा पीने योग्य पानी है वो उसकी मात्रा बहुत ज्यादा कम है और उसके लिए ज़रूरी है कि हम सब मेहनत करें उसको संरक्षित करें और इसीलिए ये जो विश्व महासागर दिवस है हर साल एक थीम के साथ मनाया जाता है और इस साल की जो थीम है वो है रीइमेजिन यानी कि पुनर्कल्पना जो महासागर को दूरस्थ वस्तु के रूप में देखने के बजाय इसे दैनिक जीवन के स्रोत के रूप में पहचानने और केवल लाभार्थी होने के बजाय सक्रिय संरक्षक बनने की दिशा में बदलाव पर जोर देता है तो वाकई में हमें एक सक्रिय संरक्षक के रूप में अपने आप को बदलना होगा ताकि हम इन महासागरों का संरक्षण कर सकें पीने योग्य जल का संरक्षण कर सकें
1: तो बस आज मुझे लगता है हम सब वादा कर रहे हैं कि हम किसी भी जल स्रोत पर जाएंगे चाहे महासागर हो छोटा सा लेक ही क्यों ना हो कोई प्लास्टिक नहीं गिराएंगे कोई कचरा नहीं गिराएंगे और उसे संजो कर रखेंगे
0: जी हाँ दोस्तों बहुत सारे लोग इस वक्त छुट्टी मनाने के लिए बाहर जा रहे होंगे और बहुत सारी चीजें पैक करके लेके जा रहे होंगे है ना और

0: कोशिश ये रहती है कि जो है हम ये भी लेके जाएं वो भी लेके जाएं पानी की बॉटल्स लेके जाएं और बहुत सारी चीज़ें तो लोग दिखाने के लिए लेके जाते हैं देखो हम ये भी लेके जा रहे हैं ये भी खाएंगे वो भी खाएंगे और होता क्या है इस चक्कर में आप वहाँ पर बहुत सारा कचरा डाल के चले आते हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करिए जाइए यहाँ से आप पूरी तैयारी से और जिस तैयारी से जा रहे हैं उसी तैयारी से वापस भी आइए जो अपना आप कचरा लेके जा रहे हैं वो साथ में वापस भी लेकर आइए है ना ये बहुत ज़रूरी है तो जिम्मेदारी अपनी मत भूलिए कि आपको क्या करना है बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं हम उन्हें कुछ अच्छा दें और अच्छा देने के लिए कोशिश हमें अभी से करनी होगी
1: ये जिम्मेदारी तो हम निभा ही रहे हैं लेकिन अब एक और जिम्मेदारी निभा देते हैं कि भाई प्यारा सा गाना ट्रैक लगा देते हैं और
0: आयुषी
1: सुना देते
0: हैं। हमें लगता है कभी कभी हम लोग ज्ञान ज्यादा देते हैं
1: कोई बात नहीं इसी तरह भरपाई होगी

0: जहाँ दोस्तों, अगर आज आपका जन्मदिन है तो आज आपके जन्मदिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी
1: बहुत सारी बधाइयां।
0: जी हाँ दोस्तों, आपको हम कैसे भूल सकते हैं। और ये बात जरूर है कि घर जाइएगा तो गिफ्ट जरूर लेकर जाइएगा, चाहे आप एज अ वाइफ जा रहे हों, चाहे एज अ हस्बैंड आप जा रहे हों, तो गिफ्ट ले जाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप किसी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाते हैं, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, तो आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, अपने हस्बैंड या वाइफ के चेहरे पर एक मुस्कान ला के देखिए, आपको पूरे साल अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। बहुत कुछ आपके साथ अच्छा अच्छा होगा, और जिनका जन्मदिन है वो भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और अपने इस दिन को और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं।
1: बिल्कुल, और देखिए, और हम कैसे आपका दिन खूबसूरत बना सकते हैं, मुझे लगता है कि ये बताकर कि आज आप अपना बर्थडे किन किन पर्सनालिटीज के साथ शेयर

0: कर रहे हो, और ये भी देखिएगा जब हम बताएंगे कि क्या आपको कभी महसूस हुआ कि हाँ यार ट्रेट सेम है, ऐसा तो मैं भी करता हूँ या करती हूँ, थोड़ा बहुत तो हम सब इंटरव्यूज पढ़ा करते हैं ना सेलिब्रिटीज के।
1: जी बिल्कुल सही बात है।
0: तो पहला नाम जो मैं लेने जा रही हूँ वो हम तुम आप समझ गए होंगे, डिंपल कपाड़िया जी का बर्थडे आज, और 8 जून 1957 को मुंबई के गुजराती परिवार में इनका जन्म हुआ था। और मैं 16 साल की उम्र में 1973 की सुपरहिट फिल्म बॉबी से बॉलीवुड में कदम रखा उन्होंने, और उस साल की सबसे

0: इंडिया जैसा हो। और 1985 में उन्होंने सागर से जोरदार वापसी की और फिर रुदाली, रामलखन, क्रांतिवीर जैसी फिल्मों से अपनी अलग पहचान बनाई। और भाई रुदाली के लिए तो उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और भाई ये चीज सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल तक गई और एक हॉलीवुड फिल्म है टेनेट, उसमें भी उन्होंने बहुत पहचान बनाई।
1: तो आज डिंपल कपाड़िया जी को हम उनके जन्मदिन पर बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और बधाइयां देते हैं और उनके उत्तम स्वास्थ्य की भी हम कामना करते हैं। वहीं दोस्तों आज ही के दिन एक और बहुत बड़े व्यक्तित्व का जन्म हुआ। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र नाथ जी की। जी हां, 8 जून 1931 को टीकमगढ़, तत्कालीन में इसे ओरछा राज्य वर्तमान मध्य प्रदेश में आता है, इसे कहा जाता है। और वे हिंदी और पंजाबी फिल्मों के एक बेहद लोकप्रिय कॉमेडियन और एक्टर थे। फिल्म जब प्यार किसी से होता है में इन्होंने इनका जो निभाया गया पोपट लाल का किरदार बेहद लोकप्रिय हुआ। और इन्होंने एन इवनिंग इन पेरिस, प्यार का मौसम, प्रिंस, फिर वही दिल लाया हूँ जैसी लगभग 180 फिल्मों में काम किया। तो आज इनकी जन्म जयंती पर हम इन्हें नमन करते हैं और वाकई में आप इस महान एक्टर के साथ, इस महान कॉमेडियन के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: अब इसके साथ मैं एक और इम्पोर्टेंट जन्मदिन की बात बताती हूँ, वो है सर टिम बर्नर्स-ली का, जिनका जन्म 8 जून 1955 के को हुआ और इंग्लैंड में हुआ। भाई क्यों बता रहे हैं हम इनके बारे में, क्योंकि इन्होंने जो इन्वेंट किया उसे आप, मैं, हम सब रोजमर्रा यूज करते हैं और हम जानते नहीं किसने इन्वेंट किया। तो इन्होंने ये दुनिया के सबसे महान कंप्यूटर वैज्ञानिकों में से एक है जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब WWW HTML लैंग्वेज URL सिस्टम HTTP का मुख्य इन्वेंटर इन्हें माना जाता है। और इनकी इस ऐतिहासिक खोज के लिए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी, जिसके बाद उनके नाम के आगे सर लगा। और उन्हें साल 2016 में कंप्यूटर साइंस का जो नोबेल माने जाने वाला प्रतिष्ठित अवार्ड है, ट्यूरिंग अवार्ड, वो भी दिया गया।
1: तो दोस्तों आज आप सभी इस तरह के महान व्यक्तित्व के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और शिल्पा शेट्टी की जब यहाँ पे बात हुई है तो उन्हीं पर फिल्माया हुआ एक बहुत ही प्यारा सा गीत।
0: भाई शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं कि भाई आज 8 जून 1975 को उनका भी जन्मदिन है और मंगलुरु कर्नाटक में हुआ। और ये हम सब जानते हैं कि 1993 की सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से उनकी करियर की शुरुआत ही हम सब ने देखी है, बाजीगर ओ बाजीगर।
1: और वाकई में बाजीगर में जो लुक था उनका और आज जो लुक है, बहुत चेंजेस उन्होंने अपने आप में किए हैं। और हमको तो लगता है जितनी खूबसूरत वो पहले थी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत आज की डेट में वो नजर आने लगी हैं। बहुत ही स्लिम एंड ट्रिम और एक तरह से वो रोल मॉडल की तरह अपने आप को प्रस्तुत करती हैं और बहुत सारे जो गर्ल्स हैं उनको फॉलो भी करती हैं, क्योंकि उनकी जो स्लिम एंड ट्रिम, उनकी जो फिगर है वो वाकई में बहुत प्रेरणादायक है।
0: हाँ बिल्कुल, फिटनेस में वो काफी आगे हैं। और भाई मैं बताऊँ एक बात एकदम छुप छुप के, इनकी ना कुछ 2-3 फिल्में हैं जो मैं कितनी बार देख चुकी हूँ मुझे काउंटिंग भूल गई है। धड़कन की बात करें या लाइफ इन अ मेट्रो की, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ भाई उनके फिल्म्स की। और नाना करते हुए भी मैं बहुत कुछ देख जाती हूँ।
1: तो चलिए इस ट्रैक को एंजॉय करते हैं जो कि शिल्पा शेट्टी पर ही फिल्माया गया है, आपके अपने प्यारे से शो गुड मॉर्निंग लखनऊ पर।

0: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत। इतिहास के पन्नों में आज का दिन

0: 9:00 के 51 मिनट। देखिए भाई, मैं और रतन सिंक पे रहते हैं, हमें पता है आपको एक ही सांस में कितनी सारी चीजें दे देनी
1: है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और वाकई में दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट ये समय, और इतिहास की जब बात आती है तो हर दिन अपने आप में खास होता है, और उस इतिहास उस दिन को और भी ज्यादा खूबसूरत और खास बना देता है। बात करते हैं 1936 की। इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर आज ही के दिन ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR रखा गया। आगे चलकर आकाशवाणी भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक प्रसारण नेटवर्क के रूप में स्थापित हुआ।
0: देखिए भाई, आकाशवाणी का अर्थ है आकाश से आने वाली वाणी या संदेश, और हमारी भारतीय संस्कृति के और भाषाई पहचान के सबसे अधिक निकटतम नाम है ये।
1: जी,
0: और ये जो नाम है आकाशवाणी, इसका आधिकारिक रूप से व्यापक उपयोग शुरू हुआ 1957 के बाद, और ये लोकप्रिय नाम है एकदम, सब जानते हैं, और ऑल इंडिया रेडियो भी लोकप्रिय है आप सबके बीच, ये सब तो हम जानते ही हैं।
1: जी, और दोस्तों वाकई में ऑल इंडिया रेडियो का अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब यहाँ पे हम बात करते हैं सटीकता की और ऑथेंटिसिटी की। और इसका जो एक लोगो है वो भी इसके हित में हम लगातार, चूँकि इसका लोगो ही इसकी पहचान है, आकाशवाणी के प्रतीक चिन्ह के रूप में बहुत ज़्यादा ये महत्व रखता है, और वो कहता है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये संदेश इस आकाशवाणी के प्रतीक चिन्ह के रूप में मिलता है, और ये संस्कृत

0: वाक्यांश यह हमें बताता है कि प्रसारण का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों के हित और सुख के लिए कार्य करना है। बस वही हमारा भी उद्देश्य है कि हम आपके हित में और आपके सुख के लिए कार्य करते रहें और आपको जो भी आप तक पहुंचाएं वो आपके लिए अच्छा हो, आपके लिए सुलभ हो और आपके हित में हो।
1: वैसे रतन, ये सौभाग्य की बात है कि हम आकाशवाणी केंद्र में बैठकर हम आकाशवाणी के इतिहास के बारे में बता रहे हैं। खैर, इसी के साथ आगे बढ़े अगर
0: जी तो... हाँ आगे बढ़े तो अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं 1912 की बात करते हैं, थोड़ा और पीछे जाते हैं। कार्ल लेमन ने यूनिवर्सल पिक्चर्स की स्थापना आज के दिन की थी। और 1918 की बात करें तो सबसे चमकीले नेबुला नोवा एक्विला की भी खोज आज ही के दिन की गई थी।
1: बिल्कुल, और देखिए 1948 में एयर इंडिया की पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान मालाबार प्रिंसेस मुंबई से लंदन के लिए आज ही के दिन रवाना हुई थी। और अगर बात करें 1783 की, यानी और पीछे पहुंच गए, तो आइसलैंड के लाकी ज्वालामुखी का विशाल विस्फोट शुरू हुआ था जो कई महीने चला था और बहुत ही विनाशकारी विस्फोट था ये।
0: और दोस्तों आते हैं वापस 1949 पे, तो जॉर्ज ऑरवेल का प्रसिद्ध उपन्यास 1984 का प्रकाशन आज ही के दिन हुआ था। तो ये इतिहास की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आज के दिन को और भी ज्यादा महत्व देती हैं, इसके महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। 9:54 का समय हो चुका है आयुषी, और ये समय इशारा भी दे रहा है कि हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले लें और उसके बाद जब लौटेंगे तो मेल्स के साथ, अपने दोस्तों की मेल्स के साथ हाजिर होंगे। आप हमारे साथ ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
4: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
0: जी हाँ दोस्तों, 9:55 का समय और ये समय हमें पूरी तरह से इशारा कर रहा है कि गुड मॉर्निंग लखनऊ को हम जल्द से जल्द वाइंड अप कर दें, क्योंकि जब तक इस प्रोग्राम को वाइंड अप नहीं करेंगे तब तक अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात कैसे करेंगे। और हम तो अभी यहीं से पूरी तरह से आपसे टाटा बाय बाय भी कर लेंगे, लेकिन अगले कुछ घंटे आपके साथ आयुषी रहेंगी आपके अपने प्यारे से चैनल 100.7 FM रेनबो पर। लेकिन आपकी मेल्स भी लगातार हम तक पहुँच रही हैं। पवन कुमार जी की मेल हमारे पास पहुँची है और ये कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैम सर, मैं पवन कुमार सर, कल का मैसेज होगा सर, आज का नहीं, सभी लोग जानकारियां मुझे अच्छी लग रही हैं। अच्छा, इनका एक कहना है कि वो कल का मैसेज होगा जो आप तक पहुंच गया, कोई बात नहीं, हो जाता है अक्सर। अगली मेल किन की है?
1: देखिए मैं ले रही हूँ गुलफ्सा सिद्दीकी की मेल, संडीला से लिख रही है, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और वहाँ मौसम अच्छा है, मैंने शॉर्ट में आपका मेल पढ़ दिया ताकि मिस ना हो। इसके अलावा भाई मूसा शेख ने सनावत से लिखा है हमें, अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना और शेख मूसा मोहसिन का नाम लिखा है।
0: जी शैलेश कुमार साहब की मेल से टाइगर शर्मा हमें नमस्ते गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं और कह रहे हैं कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, मेरा कहना यही कि समय रहते डॉक्टर को दिखाना ज्यादा अनिवार्य है, भागदौड़ की जिंदगी में लोगों के पास समय की व्यस्तताएं ज्यादा हो गई हैं। जिंदगी बढ़कर लाइफ में कोई चीज नहीं, जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा आने वाला कल भी अच्छा रहेगा।
1: देखिए इसी के साथ ब्रजेश सिंह दीपू टहुआ कैसरगंज बहराइच हम दोनों को बहुत प्यारा सा गुड मॉर्निंग कह रहे हैं और गाने अच्छे लग रहे हैं, बहुत सॉन्ग सिलेक्शन लाजवाब, और कह रहे मुद्दा है खुद MBBS डॉक्टर ना बने, सलाह ले और यूं ही कोई दवा ना ले वरना लेने के देने पड़ सकते हैं।
0: जी हां दोस्तों, विनीत कुमार की भी मेल हम तक पहुंची, अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल सीतापुर से हमें भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि गर्मी तो बहुत हो रही है लेकिन हमारे यहाँ बूंदाबांदी हो रही है, सीतापुर अर्थापुर रामगढ़ चीनी मिल के आसपास लोग बातें करते हुए अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। गुड मॉर्निंग लखनऊ में बहुत सारी जानकारी आप हमें देते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच विनीत जी हम तक जुड़ने के लिए।
1: बस इसी के साथ अब नमस्कार करने से पहले राजेश यदुवंशी जी का एक मेल और ले लेते हैं कि हथरोना अमेठी से लिखा, सबको महासागर दिवस की शुभकामनाएं थी और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे साथ जुड़ते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, सुनते हैं और अपनी भी कहते हैं, थैंक यू सो मच।
0: तो दोस्तों 9:57 का समय हो चुका है और ये समय पूरी तरह से अब इशारा कर चुका है कि आज की गुड मॉर्निंग लखनऊ को हम यहीं पर वाइंड अप करें। तो बस आपसे जाते जाते इतना ही कहेंगे कि डॉक्टर स्वयं बनने की कोशिश ना करें,

0: आपको कोई समस्या है तो ना ही डरने की जरूरत है ना ही आपको समय बिताने की जरूरत है, बस तुरंत के तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्श लीजिए और अपना सटीक और अच्छा इलाज करवाइए, स्वयं करने की कोशिश मत कीजिए और ऐसा ही सलाह दूसरों को भी दीजिए। हमारे साथ यूं जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन
1: लखनऊ की।

नमस्कार, प्रातः के 10 बज चुके हैं। आप सुनिए मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र के मंडल एक में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ निरंतर विकास की राह पर अग्रसर है। उप मुख्यमंत्री और कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक ब्रजेश पाठक ने कहा कि जन समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों को गति देने के लिए ऐसे संवाद बेहद महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 मई को होने वाली NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। सूचना के अनुसार पुनर्परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में पेन और पेपर मोड पर आयोजित की जाएगी। NTA ने स्पष्ट किया कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। एजेंसी उम्मीदवारों से परीक्षा और एडमिट कार्ड जारी होने से संबंधित नवीनतम घोषणाओं के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट रहने का आग्रह किया है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। ऐसे में ओपेक प्लस का यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की उपलब्धता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने मौसम केंद्र लखनऊ को क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र RMC के रूप में उन्नत करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही लखनऊ केंद्र को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा। इसकी घोषणा आज लखनऊ में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ करेंगे। विभाग का कहना है कि RMC का दर्जा मिलने से गंगा के घनी आबादी वाले मैदानी क्षेत्रों और उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में मौसम की निगरानी, सटीक पूर्वानुमान और समयबद्ध पूर्व चेतावनी से सेवाओं को और मजबूती मिलेगी। इससे भारी बारिश, आंधी, बिजली गिरने और अन्य मौसम संबंधी घटनाओं के प्रति बेहतर तैयारी संभव हो सकेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरक्षी, नागरिक और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा आज से 10 जून तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि परीक्षाएं 2 पालियों में

पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। भर्ती परीक्षा के लिए यात्रा करने वाले उम्मीदवारों को परिवहन निगम की बसों में 50% की छूट मिलेगी। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच 2 विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए रेनबो।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
4: भाई अब मैच का क्या होगा?
3: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
5: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
6: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
5: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
6: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
7: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

10:05 और आयुषी के साथ सुन रहे हैं आप सुपर हिट सॉन्ग्स और 100.7 FM पर ये जो घंटा होगा ना इतना म्यूजिकल आर होगा कि आपको पुराने भूले बिसरे गीत जिस पर आप यूं ही थिरक उठते हैं और गुनगुना लेते हैं और चाहे सिलेबस याद हो ना हो ये गाने आपके दिल में ऐसे बसे हैं जैसे कहीं गए ही ना हो और बस ये कल की बात है ना तो बस फॉरएवर प्यारे प्यारे गानों को सुनने के लिए हमारे साथ ट्यून्ड इन रहे।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक।

100.7 FM सुन रहे हैं आप आयुष के साथ 10:21 हो रहे हैं और सुपर हिट सॉन्ग्स का ये जो सिलसिला चल रहा है, याद है कुछ ऐसे गाने होते थे अगर हमें अपनी बात कहनी होती थी अपने दोस्तों से या किसी खास से तो इन्हीं गानों का तो सहारा लिया जाता था और ऐसा लगता था कि किसी लिखने वाले ने दिल के सारे जज्बात अपनी स्याही में बटोर कर कागज़ पर बिखेर दिए हों।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर

0: मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

10:33 हो रहे हैं और सुपर हिट सॉन्ग्स का सिलसिला जारी है आयुषी के साथ 100.7 एफएम रेनबो पर. और हम बजा रहे हैं वो थोड़े से प्यारे प्यारे एवरग्रीन गाने जिनका एक्सेस हमें इतना इजी नहीं होता था तब जब ये गाने सुनने के लिए हम होते थे बेकरार और ऐसी छाप छोड़ जाते हैं ये गाने. या फिर नोटबुक के पिछले पिछले कॉपी के वो पीछे वाले हिस्सों पर अक्सर हम गाने के लिरिक्स नोट कर लिया करते थे. बस यही वो गाने हैं, कुछ पल कुछ लम्हे.

सुपर हिट सॉन्ग सुन रहे हैं आप आयुषी के साथ 100.7 एफएम पर। लेकिन देखिए घड़ी कह रही है, एक इशारा कर रही है कि बस आप चुप चुप के धीरे धीरे से आपसे ले रही है विदा इस कार्यक्रम से, क्योंकि अगले वाले में भी आप ही से मुखातिब होने के लिए मैं ही तो रहूंगी और बातें करेंगे, संदेश आपके गीत हमारे में ढेर सारी। फिलहाल इस प्यारे से गाने के साथ मैं कहूंगी कि सुपर हिट सॉन्ग से दीजिए आयुषी को इजाजत, सुनते रहिए।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सनातन संस्कृति में प्रकृति के प्रत्येक जीव को सृष्टि का अभिन्न अंग माना गया है। उन्होंने कहा कि जैव विविधता के संरक्षण का प्रयास तभी सफल होगा जब जन भागीदारी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर प्रदेशवासियों को संबोधित एक पाती के माध्यम से अनुरोध किया कि जब भी प्रकृति के बीच जाने का अवसर मिले तो केवल पर्यटक बनकर नहीं बल्कि जिज्ञासु विद्यार्थी की भांति उस स्थल को परखें तथा अपने अनुभवों को व्लॉग और आलेखों के माध्यम से साझा करें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 मई को होने वाली नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। सूचना के अनुसार पुनर्परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। NTA ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और एडमिट कार्ड जारी होने से संबंधित नवीनतम घोषणाओं के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर अपडेटेड रहने का आग्रह किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा आज से विभिन्न जनपदों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई। आज से 10 जून तक चलने वाली इस परीक्षा के विषय में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भर्ती परीक्षा के लिए यात्रा करने वाले उम्मीदवारों को परिवहन निगम की बसों में 50% की छूट मिलेगी। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच 2 विशेष अनारक्षित ट्रेनें चला रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदेश में व्यापक तैयारियां की गई हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पुलिस प्रशासन द्वारा परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरों से नजर रखी जा रही है। साथ ही सघन जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। वाराणसी के अपर पुलिस आयुक्त शिवहरि मीणा ने बताया कि सभी 50 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्नाव में अपर जिलाधिकारी सुशील कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश सिंह ने परीक्षा केंद्रों और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्रावस्ती में जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग और SP राहुल भाटी परीक्षा केंद्र पहुंचकर निरीक्षण किया। जौनपुर में 56,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जिसे

प्रशासन ने खासी तैयारी की है। इसी प्रकार शामली में पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने परीक्षा केंद्रों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को व्यापक दिशा निर्देश दिए। इसी के साथ ही ये बुलेटिन समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल एफएम रेनबो।
1: I am संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
2: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ एफएम रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। That's why I love एफएम रेनबो।
3: ये तो सुन रहे हैं एफएम रेनबो और आप
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: संदेश आपके, गीत हमारे, लेकर आपकी दोस्त आपके साथ है आयुषी। और हम 100.7 FM पर लेने वाले हैं आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे संदेश। और देखिए ना, ये कार्यक्रम शुरू बाद में होता है और फ़ोन की जो लाइटें हैं वो पहले टिमटिमाने लगती हैं और ईमेल्स पर से ऐसा लगता है दस्तकों की आवाज़ आने लगती है। बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आप हमारे साथ हैं और हमें सुन रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, और आप हैं तो हम हैं। और वो आपकी जो एनर्जी, आपकी वाइब हम तक पहुँचती है ना, वो पूरी एक्साइटमेंट एकदम जगा देती है। वैसे तो 11:11 हो रहे हैं, मैं आपसे कहूँगी कुछ प्यारी सी विश मांगिए, आँखें बंद करिए, देखिए कैसे आपकी हर मनोकामना पूरी जाती है। और इसी के साथ फिलहाल आपकी दिल की जितनी प्यारी प्यारी मनोकामनाएं वो हम अच्छे अच्छे गाने सुनाकर पूरे कर देते हैं, है ना। ओके, तो देखते हैं हमारे साथ फोन लाइन पर कोई जुड़ चुके हैं क्या। हेलो।
2: हेलो
1: जी, किससे बात हो रही है
2: जी? सबसे पहले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार और प्यार भरा सलाम, और दीदी आपको भी प्यार भरा गुड मॉर्निंग और प्यार भरा नमस्ते।
1: थैंक यू सो मच, अब इतना एक्साइटेड कर दिया आपने। ये बताइए तब प्यारा सा मैसेज कहलाए आप हमारे लिए।
2: जी जी, मेरा नाम तो बता दे पहले।
1: अरे हाँ प्लीज, बिल्कुल
2: जी। मेरा नाम है मोहम्मद फैज, रामपुर कटरा, जिला बाराबंकी से बात कर रहे हैं।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, और इतने उत्साह से बात कर रहे हो, इतने उत्साह से एक प्यारा सा मैसेज दे दीजिए।
2: जी जी। हेलो दीदी, आपने जो पिछला प्रोग्राम सुपरहिट किया तो काफी लाजवाब किया, सुपरहिट एक नंबर किया आपने।
1: अरे थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगा, बस दिन बन गया हमारा।
2: सही बात है दीदी
1: जी।
2: तो संदेश बताएं?
1: जी बिल्कुल
2: जी, मेरा संदेश आज का ये रहेगा कि जैसे जो ये बैटरी वाली जो स्कूटी निकली है, तो जैसे सामान, जैसे एक छोटा बच्चा आगे जैसे बैठा लेते हैं और पीछे आप चलाते हैं, तो जैसे दुकान पे कोई सामान लेने गए तो स्विच काटना भूल जाते हैं, स्विच मतलब खुला ही रहता है, उसके बाद में जब आप उतर के सामान लेने लगते हैं तो बच्चा जो है एस्केलेटर पे हाथ रखता है तो एकदम से भाग लेती है, तो इससे दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, तो सभी लोग सावधान हो जाएं।
1: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और छोटी
2: दीदी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ दीदी, कभी आइए हमारे गांव भी टहल जाइए, बड़ा खुशनुमा मौसम है।
1: अरे बिल्कुल, अब तो इतने आप अच्छे से इनविटेशन देंगे तो जरूर आएंगे हम सब, पूरी टीम आएगी।
2: दीदी
1: हाँ जी,
2: कुछ लोगों का नाम लेना भी चाहता हूँ जो आपका प्रोग्राम इस वक्त सुन रहे हैं। सबसे पहले मोहम्मद सद्दाम भाई हैं, और मोहम्मद तेज भाई हैं, फकीर अली भाई हैं, और मेरी

0: दो बहनें रंगी पिंकी हैं और समा परवीना पा हैं और गुलाब साफी हैं और उसके बाद यासिर हमीद भाई हैं और बाबू अंसारी भाई हैं और मोहम्मद सईद भाई हैं चप्पल वाले।
1: अरे वाह।
0: और साहबू, हेलो दीदी, मेरे मेरे बड़े भाई रह गए साहबुद्दीन भाई।
1: चलिए अब और कोई तो नहीं रह गया।
0: जी, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू। भाई देखिए, इतने प्यारे प्यारे हमारे कॉलर्स हमें कॉल करके प्यारे प्यारे मैसेजेस देते हैं जो हम सब के लिए होते हैं बहुत ज़रूरी, है कि नहीं। अच्छा तो ये बताइए कि आप जो हमारे लिए इतने सारे मेल्स आपने देने शुरू कर दिए हैं, हमें भी आपके मेल्स का इतना इंतज़ार है। आपको दोबारा वैसे ईमेल आईडी बताने की ज़रूरत तो नहीं लगती, पर हमें ऐसा लगता है कि हमारे कई सारे दोस्त हमें रोज़ाना ज्वाइन करते हैं। जिस तरह के हमारे पास मेल्स आते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि कई कई दोस्त कई कई प्रांतों से, यहाँ तक कि देश के बाहर से भी हमारे साथ नए नए जुड़ते रहते हैं। और उनके लिए मैं बता दूं कि आपको fmakashwanilakhnow@gmail.com पर हमें मेल भेज सकते हैं। आप अपने प्यारे प्यारे संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं और फ़ोन लाइनें तो टिमटिमा रही ही हैं और हमें रहता है आपका इंतज़ार। फिलहाल एक प्यारा सा गाना आपके लिए क्यों कर रखा है मैंने।

0: ग्यारह बज के 18 मिनट संदेश आपके गीत हमारे सुन रहे हैं आप आयुषी के साथ और देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कोई जुड़ चुके हैं क्या। हेलो
1: हेलो
0: जी किससे बात हो रही है।
1: हाँ नमस्ते मम्मी।
0: नमस्ते कहाँ से बात कर रहे हैं कौन बात कर रहे हैं।
1: हम बलिया बुजुर्ग से बोल रहे हैं मैम जी रामदयाल वाल्मीकि।

0: राम दयाल जी, बलिया से बात कर रहे हैं आप?
1: गोला गोकर्णनाथ के पड़ोस में, उसे छोटी काशी कहते हैं हमारे यहाँ।
0: अच्छा
1: जी जी जी।
0: तो मौसम कैसा है छोटी काशी में?
1: मौसम हमारे यहाँ धूप निकली हुई है बहुत तेज।
0: अरे अच्छा।
1: हाँ धूप हमारे यहाँ बहुत तेज है। हम तो खेत पे हैं इस समय मैम जी, वहीं सुन रहे हैं।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और आप मौसम के साथ और 100.7 FM के साथ बने हुए, और ये बताइए संदेश क्या लाए?
1: संदेश मैम जी ये कहना चाहेंगे कि माँ बाप जो है अपने लड़कों को, जैसे नए लड़के हैं और गाड़ी उन्हें दे दी और वो तो लगाया चाबी फुर से उड़ गए बिल्कुल, कि ये है उनको एक मरतबा देखोगी यही मालूम कि वो पहुंच गए गोला
0: जी।
1: और रास्ते में दुर्घटना भी, परसों दुर्घटना हमारे यहाँ पे हुई है जीप से
0: जी,
1: और बेचारे कई लोग जो उसमें दुर्घटना के शिकार बन जाते हैं कई लोग। ये गलत बात है, माँ बाप अगर जो अपने बच्चे को गाड़ी दे तो थोड़ा एक लाइन ये जरूर से समझा दे कि बेटे जरा आप तो इसे दुर्घटना के शिकार हो गए, मगर जो बाकी लोग जो जा रहे हैं वो जो है दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो हमारा यही निवेदन है आपसे कि थोड़ा आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा
0: जी। बिल्कुल
1: जो है,
0: नहीं नहीं बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सड़क सुरक्षा नियम जितने भी होते हैं, यातायात नियम होते हैं, उनको हर किसी को ही पालन करना चाहिए, ना बच्चे ना बूढ़े, हर किसी को जी, क्योंकि जान तो सबकी इम्पोर्टेंट है, सबकी सुरक्षित रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप
1: कहना चाहूंगा मैम जी।
0: जी बिल्कुल ले लीजिए बिल्कुल।
1: आज का प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा लगा।
0: अच्छा
1: हाँ, वो जो डम्पल कवाड़िया का गाना है वो हमारे जवानी का गाना है।
0: हाँ
1: शेर से मैं कहूँगी तुम मुझको छोड़ दे, तुम्हें छोड़ दे मुझे खा जाए, हम तुझे कमरे में बंद हो।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आज उनका जन्मदिन है, आपको उनके गाने अच्छे लगे।
1: आपका जी बराबर कंटिन्यू सुनते मैम जी, वो हेलो फरमाइश में आपका नंबर नहीं लगता, लगता है तो उठता नहीं।
0: देखिए अब आज लग गया, अब आप की शिकायतें खत्म हो गई हैं। देखिए ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी आपके जो सितारे हैं वो बुलंद है। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।
1: नमस्कार
0: जी। भाई देखिए इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं, कभी कभी मीठी सी शिकायत भी हो जाती है तो उसमें भी बहुत प्यार होता है, क्योंकि जो हमें निरंतर सुनते रहते हैं, हमारे साथ बने रहते हैं, उनका इस तरह से फ़ोन लग जाता है तो वो खुश भी हो जाते हैं। और कभी बहुत प्रयासों के बाद इतने सारे लोग कॉल कर रहे होते हैं, नहीं लग पाता तो थोड़ा निराश जाते हैं, पर यही तो खेल है ना, हर दिन के बाद रात होती है पर रात के बाद झट से सुबह हो जाती है ना। तो प्यारा सा एक गाना मैंने क्यों कर रखा है आपके लिए, बिना देरी के सुना दो क्या?

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: बज के 26 मिनट हो रहे हैं और संदेश आपके गीत हमारे सुन रहे हैं आप आयुष के साथ 100.7 FM पर। और भाई जिस तरह से हमारी फोन लाइनें टिमटिमा रही हैं, देखना ही पड़ेगा, मुझे लगता है कोई तो जुड़ चुका है। हेलो।
6: हेलो
5: जी, किससे बात हो रही है?
6: मेरा नाम पीयूष है, मैं सीतापुर से बोल रहा
5: हूँ। आपका नाम पीयूष है और आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
6: मैं सीतापुर से।
5: सीतापुर से बात कर रहे हैं पीयूष। थोड़ी सी आवाज आपको अगर हो सके तो तेज करिएगा, अपना वॉल्यूम बढ़ाइएगा। हाँ जी, तो क्या करते हैं आप पीयूष?
6: मैं पढ़ाई करता हूँ।
5: पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप?
6: मैं अभी 9th में हूँ।
5: अरे वाह, 9th में हैं आप, क्या बात है। तो आज स्कूल नहीं गए आप?
6: हाँ।
5: छुट्टियां चल रही है?
6: अभी छुट्टियां नहीं है।
5: अच्छा, चलिए, क्या संदेश लाए हैं आप?
6: मैं ये संदेश देना चाहता, लोग कार से चले, बाइक से चले, रोड पे नहीं थूकें।
5: रोड पे ना थूकें।
6: 3 से 4 लीटर दूध पिएं।
5: अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने ये संदेश दिया, थैंक यू। भाई देखिए, पीयूष क्लास 9th में पढ़ते हैं और कह रहे हैं कि रोड पे ना थूके, यानी सिविक सेंस पर बात कर रहे हैं। सिविक सेंस यानी एक ऐसा सेंस जो हमें प्रेरित करता है कि किस तरह हम अपने इर्द गिर्द के इलाकों को इस तरह रखें और खुद भी इस तरह से हम पब्लिक स्पेसेस में बिहेव करें जिससे हमारा शहर भी स्वच्छ रहे और लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे आप कहीं बैठे हो, मान लीजिए आप 4 लोग के बीच में बैठे हो और आप जोर जोर से अपने फ़ोन पे कोई वीडियो सुन रहे हो, ये भी सिविक सेंस में आता है क्योंकि इससे बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब आप जाकर अगर गलती से भी कोई कूड़ा फेंक देते हैं कहीं पर तो शहर भी गंदा हो रहा है और ये भी सिविक सेंस में आता है। आप किसी के घर के सामने गाड़ी पार्क कर देते हैं या रोड ब्लॉक कर लेते हैं किसी वजह से, तो वो भी सिविक सेंस में आता है। तो आज पीयूष ने याद दिला दी सिविक सेंस की, तो मुझे लगा कि ये 2-4 चीज़ें मैं भी याद दिला दूँ, है ना। अच्छा ठीक है, इसी के साथ मुझे लगता है एक दो मेल्स

0: पढ़ लेते क्योंकि बहुत सारे मेल्स और मैं नहीं चाहती कुछ भी छूटे। देखिए, झग्गर राम साहू जी नागर कोहरा जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से इन्होंने कुछ नाम दिए हैं, बबलू साहू, जामुनदेवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांचल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू। संदेश कोई नहीं दिया पर कोई बात नहीं। प्रवीण श्रीमाली जी का भी पढ़ लेते हैं, मीना श्रीमाली जी का भी नाम लिखा है। और खरगोन मध्य प्रदेश से कवर कॉलोनी बड़वाह से बात कर रहे हैं ये, और प्यार भरा नमस्कार दिया है। जय न्यू दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन, दीपांशु, इन सब का नाम दिया, थैंक यू। और रामराज जी जिला रायबरेली गांव पहाड़ी पर से रामराज, राजू भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका सबसे अच्छा हमें प्यार भरा आशीर्वाद दे रहे हैं, नमस्कार दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई हल्की बारिश हुई, गर्मी ज्यादा हो रही है। चलिए ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ मैं एक और मेल ले लेती हूँ। मोहम्मद सद्दाम जी का कह रहे, मेरी क्यूट सी प्यारी वाली आरजे आयुष दीदी, आपको प्यार भरा नमस्कार, आपको भी। मोहम्मद सद्दाम रामपुर कटरा फुलवारी बाजार जिला बाराबंकी से ईमेल कर रहे हैं। और सुपर हिट सॉन्ग्स अच्छे लगे इनको, सारे सॉन्ग सिलेक्शन अच्छे लगे। और संदेश है कि सभी लोग अपना ख्याल रखें, खास करके पानी पीते रहें। और दोस्त का नाम लिखा है मोहम्मद फैज, मैंने ले दिया है ना सद्दाम जी, अब तो कोई शिकायत नहीं। थैंक यू सो मच, आपने संदेश भी दिया इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे हमने मेल्स ले लिए, अब आप कहेंगे आयुषी प्यारा सा गाना तो सुना दो, तो हम वो भी सुना देते हैं, ऐसी क्या बात है।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी, देश के विकास में सहभागी बने।
0: अब आप कहेंगे आयुषी गाना कह के कमर्शियल सुना दिया, लेकिन अब आपके लिए वाकई में आपका प्यारा सा गाना।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: ग्यारह बज के 34 मिनट और आपके साथ हूँ मैं आयुषी। संदेश आपके गीत हमारे सुन रहे हैं आप और ये सिलसिले बड़े प्यारे से हैं। और मैं तो हमेशा कहती हूँ भाई, इतने प्यारे प्यारे संदेश मिलते हैं और हर कोई हर एंगल से सोच रहा होता है और देश के इतने प्रांतों से हमारे पास फ़ोन आते हैं, मेल आते हैं और सबके अलग अलग नज़रिए। तो मुझे लगता है कि अगर वाकई में डायरी में ये नोट करते रहे ना तो हम सबकी ज़िंदगी सुरक्षित हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन जुड़ चुके हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, किससे बात हो रही है?
2: जी मैं रजनी जी बोल रही हूँ।
1: रजनी, बड़ा प्यारा नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
2: जी मैं भिंड जिले से बोल रही हूँ और आपका कार्यक्रम भी सुनती हूँ जो रजनीगंधा आता है रात को 10 बजे से, मेरे नाम से ही आता है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।
2: 10 बजे से 12 बजे तक पूरा।
1: अरे वाह, क्या बात है। तो पुराने गाने आपको बहुत अच्छे लगते हैं?
2: मुझे तो पुराने गाने अच्छे लगते हैं और मैं आपके लिए गुजारिश करना चाहती हूँ, कभी कभी थोड़ा बहुत पुराने गाने।

0: मच आपने कॉल किया, ये मैसेज दिया।
1: मैं तो अभी आपके फोन करे उसमें लगता नहीं है, हेलो एफएम में वो फोन लगाती तो फोन लगता नहीं है, संदेश वाले में तो लग गया है।
0: पर देखिए अब लग गया तो फिर तो शिकायतें खत्म ना, बस यही तो बात है। चलिए थैंक यू रजनी, आपने कॉल किया
1: आपसे बात करके।
0: बिल्कुल मुझे भी थैंक यू सो मच। तो देखिए हमारे प्यारे प्यारे श्रोता, हमें मध्य प्रदेश से ज्वाइन कर लिया इन्होंने और इतना प्यारा संदेश दिया, तो आपसे मैं करूंगी दोबारा से गुजारिश कि नॉइस पॉल्यूशन ना बढ़ाएं, और कहीं भी बैठे हों आप, एक बंद कमरे में, खुली जगह पर, कहीं भी आप कोशिश करें कि अपने वॉल्यूम को अपने तक सीमित रखें और दूसरे को बिल्कुल परेशान नहीं करें। और मुझे मालूम है कि आप ये सब जानबूझकर नहीं करते, पर जब हम किसी से, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखते हैं ना, तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स में वो पहुंच जाता है और लौट कर हमारे पास डबल क्वांटिटी में वो प्यार और वो ख्याल रखने वाले लोग आते हैं हमारे पास। देखते हैं मोहम्मद आसिफ ने क्या लिखा है। मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं और कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। मालूम है कि आप ये सब जानबूझकर नहीं करते, पर जब हम किसी से, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखते हैं ना, तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स में वो पहुंच जाता है और लौट कर हमारे पास डबल क्वांटिटी में वो प्यार और वो ख्याल रखने वाले लोग आते हैं हमारे पास। देखते हैं मोहम्मद आसिफ ने क्या लिखा है। मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं और कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, और कह रहे हैं कि संदेश कोई नहीं है आज, हम संदेश सुनेंगे देंगे नहीं। चलिए ठीक है, आज आपने संदेश देने से छुट्टी ले ली, ठीक है कोई बात नहीं। और अब देखते हैं वकील अहमद जी ने क्या लिखा है। कह रहे हैं आवाज अच्छी लग रही है और संदेश है कि गर्मी बहुत हो रही है, कहीं जाना हो तो सुबह जल्दी जाएं, धूप बहुत तेज हो रही है। वकील अहमद बंसूरी कटका हथौरी जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, पिंकी, रिंकी, महक अंसारी, गुल्लफ शाह सिद्दीकी, एमन नवाब इस समय आम के बाग में है। अरे ये कह के तो आपने ललचा दिया वकील अहमद जी, अब तो आम जाकर खाना पड़ेगा मुझे भी आज, नहीं तो मैंगो शेक पीना पड़ेगा। चलिए आप लोग इन्जॉय करिए, मुझे लगता है कहीं कहीं मौसम भी अच्छा हो रहा है, तो अगर आपके एरिया में भी मौसम अच्छा हो रहा है, और मेरी तरह मत करिएगा कि ज़रा सी गर्मी देखी, ठंडा पानी पी लिया तो मेरी तरह आपका गला बैठेगा, तो थोड़ी सी सावधानी बरतिए और मौसम का मज़ा लेते रहिए। भाई राज यदुवंशी हथरौना अमेठी से क्या लिख रहे हैं कि पानी की बचत करें, बेवजह पानी फेंके नहीं, और पक्षियों के लिए छत पे पानी जरूर रखें, हम रखे हैं जैसे, और यहाँ पानी हम, और ये पानी हम भी यूज करते हैं। उन्होंने अपनी छत की फोटो भेजी है जहां पर इन्होंने एक टब में पानी भर के रखा है, बहुत प्यारी बात है। थैंक यू सो मच, आपने ये मैसेज दिया हमें, और जितने भी बेजुबान जानवर हैं हमारे इर्द गिर्द, जो पक्षी हैं, जो पशु हैं, उनको अगर आप पानी पिलाते हैं तो इससे अच्छी इस गर्मी में कोई बात नहीं हो सकती। अब मैंने बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें कर ली, तो भाई प्यारा सा सॉन्ग सुनाने में मैं बिल्कुल कंजूसी नहीं करूँगी आपके रेडियो सेट्स पर। फटाफट

0: संदेश आपके गीत हमारे सुन रहे हैं आप आयुषी के साथ 100.7 FM पर। और देखते हैं भाई, जब हम गीत सुना रहे हैं तो संदेश की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, और ये जिम्मेदारी निभाने के लिए हमारे साथ देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग, किससे बात हो रही है?
1: मेरा नाम है रोशनी।
0: रोशनी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हेलो,
1: बात कर रही।
0: हाँ, आपकी आवाज कट गई थी, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैम, मैं उन्नाव की रहने वाली हूँ, चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, कैसा है चंडीगढ़ का मौसम?
1: वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, धूप खिली हुई है।
0: चलिए बढ़िया है। ये बताइए, क्या संदेश लेकर आई हैं आप हमारे श्रोताओं के लिए?
1: मैं संदेश ये लेके आई हूँ, जो लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट होते हैं, तो वो लोग कूड़ा कचरा इधर उधर खा पी के डाल देते हैं, तो उनके लिए ये है कि इधर उधर न डाल के वो अपने साथ अपने पास रख ले, और जहाँ डस्टबिन दिखे वहीं पर रख दिया जाए कूड़ा।
0: नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मैं आपके इस बात से पूरा इत्तेफाक रखती हूँ।
1: और मैम, दूसरा संदेश भी मेरा एक ये है, जिन लोगों को जाना होता है ट्रेन से, तो वो समय से पहले ही पहुंच जाए, क्योंकि लेट होने पर ट्रेन नहीं रुकेगी, और आप ही रुक जाएंगे, फिर आपकी ही परेशानी होगी आपसे।
0: तो मुझे लगता है कि ये जो लेट लतीफी है, ये तो हर जगह काम आती है, सिर्फ ट्रेन में नहीं। आप ऑफिस लेट पहुंचते हैं, अपनी क्लास में लेट।

0: आप ही ही परेशानी होती रहती है।
1: तो मुझे लगता है कि ये जो लेट लतीफी है ये तो हर जगह काम आती है, सिर्फ ट्रेन में नहीं, आप ऑफिस लेट पहुंचते हैं, अपनी क्लास में लेट पहुंचते हैं, अपनी बर्थडे पार्टी में भी लेट पहुंचते हैं और केक खत्म हो जाता है। चलिए थैंक यू रोशनी, आपने कॉल किया।
0: मैम मैं सुबह से सुन रही हूँ, मॉर्निंग लखनऊ से ही, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, गाने सुपर हिट बजाया आपने और कई दिनों बाद आए हैं और कल मेरी बबीता जी से बात हो रही थी और आपका जिक्र हो रहा था कि मैम काफी दिनों से आई नहीं है, वैसे याद सुना तो हम लोग बहुत खुश हो गए।
1: थैंक यू, सब गर्मी की छुट्टी मना रहे थे ना, मैंने भी 2 दिन मना ली। चलिए थैंक यू,
0: नाम ले लूँ
1: बिल्कुल,
0: बबीता राव जी सुन रहे हैं आपको टाइगर लखनऊ से, और हमारे गुलाब सिद्दीकी दीदी सुन रहे हैं आपको चंदेला से, और नीलू शर्मा दीदी रूपुर चंदेला से उन्नाव से, और समा अंसारी, मोहक अंसारी, साजिया अंसारी, ये लोग जब कॉल करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और समा जी जब जब भी कॉल करते हैं और अपने शायरी के अंदाज में आते हैं तो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू रोशनी, बाय।
0: प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, गाने सुपर हिट बजाए आपने और कई दिनों बाद आए हैं और कल मेरी बबीता जी से बात हो रही थी और आपका जिक्र हो रहा था कि मैम काफी दिनों से आई नहीं है, वैसे याद सुना तो हम लोग बहुत खुश हो गए।
1: थैंक यू, सब गर्मी की छुट्टी मना रहे थे ना, मैंने भी 2 दिन मना ली। चलिए थैंक यू,
0: मैं नाम ले लूँ
1: बिल्कुल,
0: बबीता राव जी सुन रहे हैं आपको घसाओ टाइगंज लखनऊ से, और हमारी गुलाब सिद्दीकी दीदी सुन रहे हैं आपको चंदेला से, और नीलू शर्मा दीदी रूपुर चंदेला से उन्नाव से, और समा अंसारी, मोहक अंसारी, साजिया अंसारी, ये लोग जब कॉल करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और समा जी जब जब भी कॉल करते हैं और अपने शायरी के अंदाज में आते हैं तो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू रोशनी, ओके बाय। तो 11:45 का समय है और मुझे लगता है कि एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले ले और मैं कुछ आपके मेल्स पढ़ दूं, फिर सुनेंगे प्यारा सा गाना।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

समय की नजाकत को ध्यान रखते हुए मुझे लगा कि थोड़े से मेल्स अगर मैंने नहीं पढ़े तो कहीं ऐसा ना हो कि ये गाड़ी छूट जाए, आपके मेल्स रह जाए, तो मुझे भी अच्छी नींद नहीं आएगी आज रात। चलिए देखें कि किसका मेल पढ़ रहे हैं हम। राजकोट गुजरात से, देखिए कितना हम जगह जगह घूम रहे, अगर ये ट्रेन होती ना तो हम कितने सारा पूरा भारत भ्रमण कर लिया होता हमने। तो राजकोट गुजरात से कौशिक अस्मिता वढ़वाड़ा परिवार, और बहुत प्यारा सा नमस्ते किया है और हमेशा ये लिखते हैं सुप्रभात केम छो और मैं कहती हूँ मजमा। आज का संदेश इन्होंने दिया है कि प्रशंसा और आलोचना दोनों स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल को उगने के लिए धूप और बारिश दोनों की जरूरत होती है। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात है, इससे बैलेंस बना रहता है, इसी को तो प्रकृति का संतुलन भी कहते हैं। और कह रहे हैं मोहब्बतों के शहर बाराबंकी से, और नाम लिए हैं श्यामू चौहान, राजकरण, हरिओम, सुनील, आकाश, संदीप और सभी दोस्त, बहुत सारे दोस्त, क्या बात है। ओके, तो एक और मेल ले लेती हूँ, रहा नहीं जा रहा। भैया मोनू सेठ जी का, डिजिटल पेमेंट और साइबर ठगों के बीच एक निरंतर युद्ध जारी है, जहां

समय की नज़ाकत को ध्यान रखते हुए मुझे लगा कि थोड़े से मेल्स अगर मैंने नहीं पढ़े तो कहीं ऐसा ना हो कि ये गाड़ी छूट जाए, आपके मेल्स रह जाए, तो मुझे भी अच्छी नींद नहीं आएगी आज रात। चलिए देखें कि किसका मेल पढ़ रहे हैं हम। राजकोट गुजरात से, देखिए कितना हम जगह जगह घूम रहे। अगर ये ट्रेन होती ना तो हम कितने सारा पूरा भारत भ्रमण कर लिया होता हमने। तो राजकोट गुजरात से कौशिक अस्मिता वढ़वाड़ा परिवार, और बहुत प्यारा सा नमस्ते किया है, और हमेशा ये लिखते हैं सुप्रभात केम छो, और मैं कहती हूँ मजमा। आज का संदेश इन्होंने दिया है कि प्रशंसा और आलोचना दोनों स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल को उगने के लिए धूप और बारिश दोनों की जरूरत होती है। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात है, इससे बैलेंस बना रहता है, इसी को तो प्रकृति का संतुलन भी कहते हैं। और कह रहे हैं

कर ऐशबाग लखनऊ से हमें इतना प्यारा सा मेल लिखा, थैंक यू सो मच। और भी मेल्स पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम अपने हाथ में है, पर एक प्यारा सा गाना तो सुन ले, वरना आप कहेंगे आयुषी क्या किया, गाने ही नहीं सुनाए।

0: 11:52 और आप सुन रहे संदेश आपके गीत हमारे आयुषी के साथ, और देखते हैं गुलफ़ा सिद्दीकी जी ने क्या लिखा है। कह रही हैं, संडीला से प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, सुन रही हैं। संदेश ये है कि किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए और हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम कैसे हैं, क्योंकि जलता वही है जो खुद कुछ कर नहीं सकता, तो वो दूसरों को देखकर जलता रहता है। प्लीज़ ऐसा मत करो भाई, प्लीज़ ऐसा मत करो। गुलफ़ा का दिल नहीं दुखाना है किसी को, और किसी का भी दिल नहीं दुखाना है। देखिए राजेश यदुवंशी हथरौना अमेठी से हमने आपका मेल पढ़ लिया, तो आप भी निश्चिंत हो जाइए। आचल सेठ क्या कह रही हैं, ध्वनि प्रदूषण का बोलबाला चल रहा है, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से भी इत्तेफाक रखती हूँ। और चलिए, गुलफ़ा सिद्दीकी ने मुझे ढेर सारे आम की फोटो भेजी और लिखा है आप भी खाओ आम, थैंक यू सो मच। सैफ अंसारी क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं मैम हाउ आर यू, मेरा हम सिस्टर्स हसबा अंसारी उमरा अंसारी श्रीनगर लखीमपुर से मेल कर रहे हैं। आप तो बड़े ही मस्त, मेरा मतलब झका सॉन्ग प्ले कर रही है, क्या बात है। हम सब कढ़ाई कर रहे हैं और FM सुन रहे हैं, और हमारी फूफी गोला गोकरनाथ से साजिदा अंसारी आपका प्रोग्राम सुन रही है, थैंक यू सो मच। सुनते रहिए, अच्छा लगता है आप सुनते हैं और हमें बताते हैं तो। और प्रमोद यादव जी को भी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, संदेश कुछ नहीं दिया, ये भी नहीं बताया कहाँ से लिखा, पर चलिए आपकी भावना हम तक पहुँच गई। संदीप मक्कर जी ने कहाँ से लिखा है, ज्योति मक्कर जी का भी नाम लिया है, मन्नत मक्कर का भी नाम लिया है, भरत मक्कर, कमल साहनी पिंगावाला चौक गोराया जलंधर से, और फरमाइश किए, लेकिन इस बार तो हमें आपसे संदेश चाहिए थे, फरमाइश कार्यक्रम में फरमाइश कहिएगा, लेकिन अगली बार इस कार्यक्रम में अगर आप अपने संदेश देकर हमें बताएंगे तो हमें आपका मन पढ़ना अच्छा लगेगा। भैया मोनू सेठ ने क्या लिखा है, कह रहे दूसरों के हित के लिए हमेशा काम करना चाहिए, क्योंकि सेवा ही परम कल्याणकारी धर्म है और ज़रूरतमंदों की मदद करना ही सफल बनाता है जीवन को, थैंक यू। और संदीप पाकर जी ने बहुत सारे मेल कर रहे हैं, पर संदीप पाकर जी हमने तो आपके मेल्स पढ़ लिए ना। खैर अब इसी के साथ 11:55 हो गया है और अब घड़ी कह रही है आयुषी दिल पे पत्थर रख के अब आपको करना पड़ेगा टाटा बाय बाय संदेश आपके गीत हमारे से, क्योंकि म्यूजिकल सफर जो होता है ना वो रुकना नहीं चाहिए। इन्फॉर्मेशन एंटरटेनमेंट वाला ये जो हमारा सफर है, इन्फोटेनमेंट जिसे कहते हैं, ये चलता रहता है। हर इसके अलग अलग रंग है, अलग अलग रूप है, अलग अलग फ्लेवर्स है, और पर मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगी, बस एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक सुनेंगे और उसके बाद एक प्यारा सा गाना सुनेंगे और फिर आप मुझे इजाजत दे दीजिएगा, थैंक यू सो मच।
1: गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण,
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गण...

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। आप सुनिए मुख्य समाचार। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। यह ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करती है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 100

46 बोलियों में किया जाता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के महान आदर्शों पर खरा उतरते हुए आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण में उच्चतम पेशेवर नैतिकता और मानकों का पालन करते हुए इस देश के विभिन्न भूभागों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचार सुनाता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। श्री रिजिजू ने वीडियो संदेश में कहा कि आज पूरा राष्ट्र आकाशवाणी से जुड़ा है। आकाशवाणी के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना सशक्त हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा आज से विभिन्न जनपदों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है। आज से 10 जून तक चलने वाली इस परीक्षा के विषय में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थी अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भर्ती परीक्षा के लिए यात्रा करने वाले उम्मीदवारों को परिवहन निगम की बसों में 50% की छूट मिलेगी। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच 2 विशेष अनारक्षित ट्रेनें चला रहा है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कब्रिस्तान, कुवैत और ओमान में अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,80,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ने पर सहमति व्यक्त की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। ऐसे में ओपेक प्लस का यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: किया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

12:04 और 55 सेकंड का वक्त शालिनी आपके साथ प्रोग्राम शत्रुपा में। और आपको पता है आज बड़े ही गर्व का विषय है। क्या? आज हमारा आकाशवाणी अपने पूरे 9 वर्ष पूरे कर रहा है। जी हाँ, चाहे सूचना की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे मनोरंजन की बात हो, हर चीज़ में हम आपके साथ रहे हैं। और ये 90 साल का जो सफ़र है यूं ही नहीं बीता है ना। तो आज शालिनी आपके साथ रहेगी, तरह तरह गाने भी के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ, मनोरंजन के साथ, लेकिन आपसे भी हम इस सफ़र की बातें ज़रूर जानेंगे। उसके लिए आप रेडी रहिएगा, मेल करते रहिएगा fmakashwani@gmail.com पे। और बात करते हैं आज के प्रोग्राम की शत्रुपा। आज है मंडे यानी कि सोमवार, जिसमें हम करते हैं हेल्थ की बात।

तो आज है 8 जून, और 8 जून आपने अगर सुबह हमारा जीएमएल भी सुना होगा तो भी आपको पता चला होगा, और वैसे अगर आप जानकारी रखते हैं तो भी पता होगा, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। जी हाँ, ये जो शब्द है ब्रेन ट्यूमर का, सभी के सुनते कहते हैं ना कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम डर जाते हैं कि अब क्या होगा। ये ऐसी बीमारी, शायद ही कोई समझता है कि इसका इलाज है या इससे बच पाना संभव है। बहुत तरह तरह के होते हैं सवाल हमारे मन के अंदर, तो बस इन्हीं सवालों के उत्तर लेकर शालिनी आज हाजिर है आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर, और हमारे साथ एक्सपर्ट रहेंगे, कौन क्या कैसे ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन इस प्यारे से गाने के बाद।

0: 12:12 का वक्त, शालिनी आपके साथ है लेकर आज हेल्थ की बात वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के साथ। जी हाँ, हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अंकुर बजाज, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और इतने खास विषय पर आप हमारे साथ हैं, इसके लिए थैंक यू।
1: सबसे पहले धन्यवाद शालिनी जी और पूरा एफएम रेनबो का, जिसने आज मुझे यहाँ बुलाया और ये अवसर दिया कि मैं वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, जो कि 8 जून को हर साल मनाया जाता है, इसके बारे में बता सकूं। मैं डॉक्टर अंकुर बजाज, प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पे कार्यरत हूँ।
0: सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये जो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है, ये क्यों मनाया जाता है और इसको मनाने के पीछे का एम क्या है, उद्देश्य क्या है?
1: मैं बोलूंगा आपको कि हर साल वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में जागरूकता बढ़ाया, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर के बारे में आज बहुत सी गलत फहमियां हैं। बहुत से लोग लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं और देर से डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। हर दिन हम लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं, ब्रेन ट्यूबर को जल्दी पता लगाना ही सबसे बड़ा उसका निवारण कर सकता है, ट्रीटमेंट कर सकता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, अवेयरनेस इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट, जागरूकता ही बचाव का पहला कदम है।
0: और इसीलिए दोस्तों, जो खास चीजें होती हैं उससे हम आपको मिलाते हैं और जागरूक कराते हैं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और सर, ये ब्रेन ट्यूमर होता क्या है, सबसे पहले तो ये बताएं। और जैसे कि आम नागरिक हो या हम अपनी ही अगर बात करें, तो ऐसा लगता है कि हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर होता है, क्या ये सही है, इसके बारे में भी जरा बताएं।
1: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने शालिनी जी, क्योंकि ये एक मिथ है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जो लोगों के बीच में है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया, हाय अब तो मैं मर गया, ये तो कैंसर हो गया है मुझे।
0: जी, जी,
1: नहीं
0: जी।
1: हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं होता। मतलब बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूं कि हर चलता हुआ वाहन कार नहीं होती, तो ऐसे ही हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं होता, पर हर कैंसर ब्रेन ट्यूमर होता है। मतलब अगर हर वाहन की बात की, हर कार एक वाहन है पर हर वाहन कार नहीं होती। तो ये बात है कि ब्रेन ट्यूमर जो है वो दो तरीके से होता है, अगर मैं मोटा मोटा बोलूं। एक होता है बिनाइंग, ऐसा जो धीरे धीरे करके बढ़ता है और बढ़ने के साथ साथ अगल बगल के एरिया को दबाता है, उनमें इन्वॉल्व नहीं होता है, उनके टिश्यू को इन्वॉल्व नहीं करता है, वो बिनाइंग होता है जो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसे ट्यूमर का पूरा निकालना जाना संभव है, इलाज संभव है और ये क्योरेबल हो सकता है। दूसरी तरीके का होता है जो मेलिग्नेंट है। मेलिग्नेंट का मतलब बहुत तेजी से बढ़ता है, अगल बगल के टिश्यू जो कि अगल बगल के एरिया है उसे इन्वॉल्व कर देता है। ऐसे ट्यूमर ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जल्दी से बढ़ जाते हैं, अगल बगल के एरिया को इन्वॉल्व कर लेते हैं।
0: सर, ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती जो लक्षण है वो कौन कौन से होते हैं, जिन्हें देखकर हम पहचान सके कि हाँ ये बीमारी हो रही है?

0: हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोगों को लक्षण के बारे में पता हो शालिनी जी। तो ऐसा है कि ब्रेन ट्यूमर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सर का दर्द। ऐसा दर्द जो बढ़ता जा रहा हो, जो पहले एक जगह अलग जगह होता था, अब दूसरी जगह अलग जगह हो रहा हो, तो लगातार बढ़ता हुआ सर का दर्द ये एक लक्षण है। कोई भी दौरा आना किसी को भी, ये एक लक्षण है। हाथ या पैर में कमजोरी आना और ये कमजोरी बढ़ते जाना, ये एक लक्षण है। साथ में पर्सनैलिटी चेंज, व्यवहार में परिवर्तन आना, ये भी एक लक्षण है
1: जी।
0: तो कृपया करके मैं बोलूंगा कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा हो जिसको लगातार सर में दर्द हो रहा हो, और साथ में उल्टी आना जो खास करके सुबह के टाइम ज्यादा होती है, और उस उल्टी के आने से थोड़ा सर का दर्द कम हो जाता है, वैसी उल्टियां भी एक ब्रेन ट्यूमर का लक्षण है। तो कृपया करके इसको नजरअंदाज ना करें और डॉक्टर की परामर्श जरूर लें ऐसे में।
1: और सर की बात से थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, आप डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन स्पेशलिस्ट के पास कुशल चिकित्सक की सलाह लेना बहुत जरूरी है। सर, क्या ब्रेन ट्यूमर किसी भी उम्र में हो सकता है?
0: बिल्कुल, ये एक नवजात छोटा पैदा हुए बच्चे में भी हो सकता है और 100 साल के बुजुर्ग में भी हो सकता है। तो बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, सब में ब्रेन ट्यूमर हो सकता है।
1: और इसका उपचार सबसे पहले तो ये कि सावधानी रखनी है। अगर जो लक्षण सर ने बताए हैं कि सर में अगर आपके तेज दर्द हो रहा है सुबह के समय और उल्टी हो रही है, या आप एकदम आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और कुशल चिकित्सक के पास जाना है। सर, अब हम एक प्यारा सा गाना प्ले करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद आपसे और भी प्रश्नों के उत्तर चाहेंगे, जैसे कि समय पर जांच कौन सी कराएं, इलाज क्या जरूरी है, और क्या ब्रेन ट्यूमर का इलाज संभव है, और अगर संभव है तो हमारे पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। इस तरह की होंगी बातें अभी डॉक्टर अंकुर बजाज सर के साथ, जो कि प्रोफेसर है न्यूरोसर्जरी KGMU से। और अब प्यारा सा ट्रैक आप सबके लिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: दोस्तों 12:21 और 55 सेकंड का वक्त, प्रोग्राम शत्रुपा में शालिनी आपके साथ। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पर स्पेशल बात हो रही है। डॉक्टर अंकुर बजाज हैं हमारे साथ, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से। और अभी हमने सर से जाना कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं और किस उम्र में हो सकता है, और अब जानने जा रहे हैं कि समय पर जांच और इलाज क्यों जरूरी है।
7: शालिनी जी, किसी भी चीज, कोई भी बीमारी हो, उसका समय से अगर जांच हो जाए, पता चल जाए, तो आप उसका इलाज सटीकता से कर सकते हैं। ऐसे ही ब्रेन ट्यूमर में भी है, कोई भी दिक्कत है और अगर इनिशियल स्टेज में पकड़ी जा सकती है तो इट कैन बी क्योरेबल, वो ठीक हो सकती है। ब्रेन का ट्यूमर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगल बगल के एरिया को अगर इन्वॉल्व कर लेता है तो अगल बगल का जो हमारा पावर है या उस एरिया की जो क्षमता है दिमाग में, दिमाग एक बहुत जबरदस्त ऑर्गन है। अगर मैं बोलूं कि मेरे हाथ हिलना है तो दिमाग का ये वाला पार्ट एक्टिव होता है और मेरा हाथ हिलता है। ओके, तो अगर ब्रेन ट्यूमर उस वाले पार्ट में है तो मैं चाह के भी अपना हाथ नहीं हिला पाऊंगा या हाथ हिलाने में कमजोरी आ जाएगी। तो अगर ये चीज पहले से ही पता चल जाए तो इसका सटीकता से इलाज हो सकता है और ये कमजोरी नहीं आ पाए ये किया जा सकता है। तो इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा, कृपया किसी भी लक्षण को, किसी भी चीज को छोटा बड़ा नहीं समझे, तुरंत डॉक्टर परामर्श लें और डॉक्टर की सलाह से ही ट्रीटमेंट लें, क्योंकि कोई भी दिमाग का पार्ट वंस गॉन इज ऑलवेज गॉन। दिमाग की नसें एक बार चली जाती है तो हमेशा के लिए चली जाती है, सिवाय बच्चों में जिसमें प्लास्टिसिटी बहुत बढ़िया होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। जैसे आपने देखा था, एक बच्चे को मैंने ऑपरेट किया था, उसका आधा हिस्सा चला गया था, उसका हाथ पैर नहीं चल रहा था, एक बच्चे के सर में गोली लगी थी तब। पर क्योंकि बच्चों में न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत बढ़िया होती है, उसका निकाला गया, अब वो चलती हुई आती है। पर जैसे बड़े हो जाते हैं उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी का रोल बहुत कम हो जाता है। तो कृपया करके किसी भी छोटे लक्षण या किसी भी छोटे सिम्टम को नजरअंदाज नहीं करें और तुरंत दिखाएं।
6: लेकिन हाँ, एक बात जरूरी है, घबराना नहीं है कि अगर छोटा सा लक्षण आपको है, माना कि अक्सर सर में दर्द रहता है तो आप मान लें कि ये ब्रेन ट्यूमर है, ऐसा नहीं है। जहां आपने चिंता शुरू की, परेशानियां और बढ़ती जाएंगी, तो चिंता नहीं करना है, समय रहते डॉक्टर से मिलना है। सर, अब आप जिससे जानना चाहेंगे कि क्या ब्रेन ट्यूमर का इलाज संभव है, और है तो कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, ये हमारे लिसनर्स को बताइए।
7: बिल्कुल, ब्रेन ट्यूमर का इलाज संभव है और सटीकता से संभव है। आप जैसे आप यहाँ से कहीं भी जाते हो, आप नेविगेशन का उपयोग करते हो आजकल, जैसे आप देखो जीपीएस सिस्टम है, या पहले जमाने में रास्ते लोग याद करते थे, अब दिमाग में भी नेविगेशन आ गया है जिसे हम नीरो नेविगेशन कहते हैं। हम नीरो नेविगेशन से ब्रेन ट्यूमर पता लगाते हैं किस एरिया में इन्वॉल्व है। हम MRI की अलग अलग प्रक्रिया कराते हैं जिससे हम पता लगाते हैं फंक्शनल MRI, इसके ट्रैक्स कहाँ पे हैं, कौन से एरिया की चीज कहाँ पे जा रही है, किस रास्ते से हमें नेविगेट करना है, मतलब किस रास्ते से हम ब्रेन ट्यूमर तक पहुंचे कि कम से कम क्षति दिमाग को पहुंचाते हुए हम पूरा का पूरा ब्रेन ट्यूमर निकालें। ये न्यूरो नेविगेशन, एडवांस MRI फीचर्स, ये सब उपलब्ध है। इवन एंडोस्कोपी, न्यूरो एंडोस्कोपी उपलब्ध है। इवन जो बहुत ज्यादा ट्यूमर ब्लीड करते हैं उसमें हम लोग पहले ही एम्बुलाइज कर सकते हैं। तो अब काफी एडवांसमेंट हो गया है साइंस में, और वैसे ही साइंस का एडवांसमेंट न्यूरोसर्जी की फील्ड में भी हुआ है, जिससे हम ऐसे ट्यूमर को जल्दी से, अच्छे से, बढ़िया से निकाल सकते हैं ताकि मरीज को कम से कम क्षति हो।
6: बहुत अच्छी जानकारी दी सर, और बाकी का तो क्या ही बता सकते हैं, लेकिन जो मेरे दिल में डर था ब्रेन ट्यूमर को

0: लेकर वो अब कहीं हद तक कम हो चुका है। लेकिन सर, जैसे ही ब्रेन ट्यूमर का पता चलता है, चाहे वो पेशेंट हो चाहे वो फैमिली पर्सन हो, सभी की जो मेंटल जो स्टेटस है ना, मानसिक मानसिक जो स्थिति है ना, वो बहुत डगमगा जाती है। और कैसे आप तैयार करते हैं और किया जा सकता है कैसे तैयार इस स्थिति में कि उनके मानसिक और भावात्मक जो इमोशनली टच है ना, उसको भी हम सुधारें, और कैसे तैयार करें कि हाँ ब्रेन ट्यूमर हो गया है तो इसका इलाज कैसे क्या किया जाए, इसके बारे में भी ज़रा बताएं।
1: हाँ शालिनी जी, परिवार को तैयार करना और मरीज को तैयार करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी मरीज ऐसा सुनता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया है तो उसे लगता है अब वो मरने वाला है, परिवार को लगता है कि अब उनका एक सदस्य जाने वाला है। तो कृपया करके ऐसे समय पे गूगल पे मत जाएं, डॉक्टर की बातें सुने, डॉक्टर से परामर्श लें, डॉक्टर से सलाह लें कि क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। घबराना स्वाभाविक है, किसी भी बीमारी का पता लगना स्वाभाविक है, पर ब्रेन स्ट्रेंथ मेंटल स्ट्रेंथ तभी आती है जब विपरीत परिस्थितियों में हम अच्छे डिसीजन लें। तो कृपया करके अपने दिमाग को संतुलित बनाए रखें, क्योंकि घबराने से ट्रीटमेंट नहीं होगा, ट्रीटमेंट तभी होगा जब अच्छे कदम उठाएंगे। तो अच्छे ट्रीटमेंट के लिए अच्छे कदम उठाना जरूरी है। तो विपरीत परिस्थितियां जैसे इसमें घबराहट है, उसमें संयम बनाए रखें, डॉक्टर से परामर्श लें और जल्दी जल्दी डॉक्टर की सलाह लें ताकि इसमें सटीकता से इलाज हो सके।
0: बिल्कुल, देखा कहा था ना, घबराना नहीं है। जैसे ही आप घबरा जाते हैं ना, तो घबराहट में बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, पता नहीं चलता है कि स्टेप टू स्टेप कैसे हमें क्या करना है। अच्छा सर, ये जो हमारे समुदाय में भी इस बीमारी को लेकर बहुत सारी गलत फहमियाँ फैली हुई हैं, और आप तो इससे अनजान नहीं होंगे क्योंकि आप तो बहुत सारे पेशेंट देखते हैं, लोग आते हैं, अटेंडेंट आते होंगे आपके पास में, और तरह तरह की बातें आपसे करते होंगे, तो क्या वो कौन सी सबसे ज्यादा गलत फहमियां हैं जो हमारे समुदाय में फैली हुई हैं ब्रेन ट्यूमर को लेके?
1: ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी चीज है जो मैंने आपको पहले बताया शालिनी जी,
0: जी
1: के अब मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है, अब तो मैं मरने वाला हूँ।
0: हाँ बिल्कुल,
1: ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
0: हाँ।
1: नहीं, ब्रेन ट्यूमर का इलाज संभव है। अब जरूरी नहीं है कि ब्रेन ट्यूमर में आप मरेंगे या मरने वाले हैं, पर जितना आप ऐसे नकारात्मक सोच रखेंगे उतना हानि पहुंचेगी आपको, जितना पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे उतना आपका इलाज बढ़िया होगा, उतनी आप जल्दी स्वस्थ होंगे। तो एक तो ये मिथ है कि भैया ब्रेन ट्यूमर है तो मर जाएंगे। दूसरा मिथ है, मुझे सर दर्द हो रहा है अब मुझे ब्रेन ट्यूमर है। नहीं, हर सर दर्द ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। तो खास करके सर दर्द जो बहुत ज्यादा तीव्रता से बढ़ रहा हो, जो बार बार हो रहा हो, वह एक ब्रेन ट्यूमर का लक्षण है। तीसरी चीज, क्या मैं बहुत ज्यादा फोन यूज करती हूँ, क्या मुझे ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा? कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जिसमें बोला गया है कि कुछ मेनिंजियोमा है जो वाईफाई ब्रेन ट्यूमर से हो सकते हैं, पर इसका कोई बहुत सटीकता से वैज्ञानिक परिणाम नहीं है कि वाईफाई या मोबाइल से ब्रेन ट्यूमर है, कोई मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है अभी भी। तो ये इम्पोर्टेंट है मेरे हाथ से, ये मिथ है जो दूर होने चाहिए आज।
0: बहुत सारे मिथ आपने हमारे दिमाग से निकाल दिए हैं, और कहीं हद तक तो हम समझ भी गए हैं कि ब्रेन ट्यूमर कोई बहुत डरावनी या भयानक बीमारी नहीं है। बस समय रहते और आपको अगर इसकी जानकारी है तो आप इस पर इससे जीत सकते हैं, और वही बात है ना, दिल की सुननी है। तो ये प्यारा सा ट्रैक आप सभी के लिए आ रहा है, लेकिन अभी भी कई सारी चीज़ें हैं जो अभी डॉक्टर अंकुर बजाज जी से जाननी है, जैसे कि क्या मानसिक स्वास्थ्य जो कि हम रोज़मर्रा में क्या सावधानी रखें इसके लिए, और महिलाओं की अगर हम बात करें तो उस पर भी अभी हम आएंगे, कई सारे प्रश्न हैं खासकर महिलाओं के लिए। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहें और सुनते रहें 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की शालिनी के साथ प्रोग्राम शत्रुपा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: दोस्तों 12:34 और 8 सेकंड हो चले हैं प्रोग्राम शत्रुपा में। है आज हमारे साथ डॉक्टर अंकुर बजाज, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से, और वो बात कर रहे हैं ब्रेन ट्यूमर की। तो सर, अब जानना चाहेंगे कि लोग अपने मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए रोजमर्रा में क्या सावधानी अपनाएं, कुछ खास चीजें जो आप हमारे लिसनर को बताना चाहेंगे।
6: ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हमारे शरीर को खाना है, वैसे दिमाग को पॉजिटिव थॉट्स है। हमारा दिमाग जो है वो थॉट पे जीता है शाले
5: जी।
6: तो थॉट्स अच्छे होने चाहिए। अच्छे थॉट्स के लिए आपका वातावरण अच्छा होना चाहिए। आप सुबह हंसी करके उठें, खुशी मन से उठें, तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। उस तरीके का प्रॉपर नींद, व्यायाम, एक्सरसाइज करें जरूर, प्रॉपर नींद लें, और जो भी आपको चीज लगती है कि घबराहट पैदा करती है उसे दूर रखने की कोशिश करें। इसमें मैं कहता हूँ 10 breathing effort, जिसमें मैं कहता हूँ कि 10 सांसें, जब भी आपको परेशानी हो 10 गहरी सांसें लें और छोड़े, आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य और आपका पॉजिटिव सोच आ जाएगी दिमाग में। आप नेगेटिव सोच को दूर रख पाएंगे ऐसे से। तो मैं फिर से इस FM रेनबो के कारण आपको बताना चाहूंगा, इस FM के कारण लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि 10 breaths, 10 गहरी सांस लेंगे जब भी आप दिक्कत में हो तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो कृपया करके इसको डेली हैबिट बनाएं, अच्छी सांस लें, पॉजिटिव थॉट्स लें।
5: बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं लगनी है। अच्छा सर, अब हम खास महिलाओं की बात करते हैं, क्या महिलाओं में ब्रेन

0: ट्यूमर के लक्षण अलग तरह से दिखाई दे सकते हैं?
1: महिलाओं की बात करूं तो मैं इसी बात बोलूंगा कि या महिलाओं में जो लक्षण है वो सामान्य है, पर वैसे ही होते सेम है सामान्य के लिए, पर हाँ। कुछ ट्यूमर है जो महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं। इसमें ऐसा एक मेनिनजियोमा ट्यूमर है जो सर में होता है या स्पाइन में होता है, जो महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा काफी ज्यादा होता है, यंग लेडीज में होता है। इसका भी ट्रीटमेंट संभव है क्योंकि ये हार्मोनल फीचर से होता है।
0: जी अच्छा, कौन से शुरुआती लक्षण होते हैं जिसे अक्सर हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं?
1: जो महिलाएं हैं, खास करके इतने दिन भर के कार्यक्रम में व्यस्त रहती हैं हमारी महिलाएं, परिवार देखती हैं, सब कुछ देखती हैं, पर अपने लिए थोड़ा सा उनके लिए ध्यान कम रखता है अपनी हेल्थ के लिए।
0: जी।
1: जो नजरअंदाज करने का बोले महिलाओं में, तो वह मेरे अनुभव से यह है कि लगातार सरदर्द होना, बार बार चक्कर आना, नजर धुंधली होना, बहुत ज्यादा अपने हैबिट में चेंज लाना, पर्सनैलिटी चेंज लाना अगर आ जाए तो ये महिलाएं काफी अपने आप को नजरअंदाज करती हैं। तो कृपया करके महिलाओं को इन सब संकेतों के बारे में पता होना चाहिए, ऐसा कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।
0: बिल्कुल सही सर, जो ये बार बार सरदर्द की बात बता रहे हैं और जो ये ब्रेन ट्यूमर है, इन दोनों के बीच में हम अंतर कैसे समझेंगे, क्या चीज ऐसा दिखता है इसमें?
1: हर सरदर्द ब्रेन ट्यूमर का लक्षण नहीं है, सरदर्द बहुत सारे कारणों की वजह से होता है, पर अगर सरदर्द बहुत तेज हो रहा है और ये तेजी लगातार बढ़ती जा रही है, persistent headache that is increasing is a sign of some abnormalities in the brain leading to brain tumor mainly. दूसरी चीज है उल्टी आना, खास करके सुबह उठ के उल्टी आना, बार बार उल्टी आना, पर्सनैलिटी का चेंज होना, आप जैसा बिहेव करते थे उसमें परिवर्तन आना, ये भी एक ब्रेन ट्यूमर का लक्षण है। भूलना, भूलने की शक्ति, ये भी एक ब्रेन ट्यूमर का लक्षण है। बार बार चक्कर आना, हाथ पैर में कमजोरी आना, ये सब ब्रेन ट्यूमर के लक्षण है।
0: तो दोस्तों, आप आसानी से अंतर समझ सकते हैं कि जो आपका सिर दर्द हो रहा है या बार बार सिर में दर्द हो रहा है, वो कब ब्रेन ट्यूमर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो बिल्कुल सही चीजें बताई सर ने कि कैसे आपकी ऐसा सर दर्द जो बिल्कुल अब सहा नहीं जा रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको कुशल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसा सर दर्द होने के बाद आपको उल्टी भी हो रही है तो भी आपको इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना है। दोस्तों, 12:38 और 30 सेकंड हो चले हैं और अब वक्त हो चला है प्यारे से गाने का, और अभी और भी प्रश्नों के उत्तर जानना बाकी हैं, जो कि डॉक्टर अंकुर बजाज है हमारे साथ, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से। लेकिन अभी एक प्यारा सा गाना।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
3: बजकर 43 मिनट और 27 सेकंड हो चले हैं दोस्तों, और आप सभी लोग सुन रहे हैं कार्यक्रम शत्रुपा, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं ब्रेन ट्यूमर की। और इसके लिए एक्सपर्ट हैं हमारे साथ डॉक्टर अंकुर बजाज, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से। बहुत सारी चीज़ें हम जान चुके हैं, ट्यूमर क्या है, कैसे होता है, क्या नज़रअंदाज करें, क्या ना करें, समय पर कैसे जाँच करें, इलाज कैसे संभव है, कैसे हम मानसिक और भावात्मक रूप से पेशेंट और परिवार को तैयार करें, समुदाय में क्या क्या गलत फहमियाँ फैली हुई हैं, और कैसे हम अपने मेंटल हेल्थ को रोज़मर्रा में भी सही रखें। बहुत सारे सवालों के जवाब आ चुके हैं। और अब सर आपसे जानना चाहेंगे कि परिवार और काम की जिम्मेदारियों के बीच में महिला अपनी हेल्थ की जांच की को प्राथमिकता कैसे दे। मतलब आप ही ने कहा ना कि हमारी महिलाएं दिन भर के काम में लगी रहती हैं, तो उनके लिए भी जरा सा बताएं।
4: मैं महिलाओं से कहना चाहूंगा कि वुमेन्स केयर फॉर एवरीवन एंड दे मस्ट लर्न टू केयर फॉर देमसेल्स टू। कि हमारी महिलाएं पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं और उन्हें अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है कि परिवार के साथ साथ अपना भी स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपनी जांच ऐसा ना हो कि ना कराएं, अपनी जांच को भी प्राथमिकता दें और उसे भी कराएं। सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश, इट इज असेंशियल।

0: पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं और उन्हें अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है कि परिवार के साथ साथ अपना भी स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपनी जांच ऐसा ना हो कि ना कराएं, अपनी जांच को भी प्राथमिकता दें और उसे भी कराएं। सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश, इट इज असेंशियल।
1: दोस्तों इस बात को तो समझना ही पड़ेगा हमारी घर की महिलाओं को। सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं लेकिन खुद का स्किप हो जाता है क्योंकि काम के चक्कर में ना, कि टिफिन बनाया, सब ऑफिस गए, स्कूल गए बच्चे, और उसके बाद हम लंच की भी प्रिपरेशन करने लगते हैं, फिर नहाना धोना, कपड़े धोना, पूजा करना, तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या आप इसी बीच में अपने लिए 15 से 20 मिनट का समय, हम कहते हैं उसको और भी कम कर दीजिए, कुछ ऐसा हल्का ब्रेकफास्ट ले लीजिए जो जल्दी से आप ले सकें, 10 मिनट का तो समय अपने लिए दे सकते हैं। अगर ये हम नहीं देते हैं, और कभी ऐसा होता है कि हम जब बीमार पड़ जाते हैं तब हमारा काम कौन करता है, अगर इस बात को ध्यान में रखेंगे तो सारे काम हम फटाफट करेंगे और अपना ध्यान रखते हुए। अच्छा सर, अगर किसी महिला को लंबे समय से सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं या नज़र में बदलाव आ रहा है तो उसे कब डॉक्टर से मिलना चाहिए?
0: मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूंगा, मुझे एक महिला याद आती है, एक महिला थी जो अभी लगभग 1 साल पहले आई थी, जो बहुत लगभग 2 साल से उसे सर में दर्द हो रहा था और वो नजरअंदाज एक कैल्पोल, पैरासिटामोल, इस सब की दवाई लेके ठीक हो जाता था और वैसे ही चल रहा था। वो यंग 36 साल की फीमेल थी, परिवार में व्यस्त बिल्कुल। जब MRI हुआ तो उसमें ब्रेन ट्यूमर निकला। जब वो भागते हुए बिल्कुल पैनिक में आई, अब मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैंने कहा नहीं, इलाज संभव है। तो अभी 1 हफ्ता पहले OPD में आई थी, हमने उसका ट्रीटमेंट किया, इलाज किया, ऑपरेट किया, अब वो बिल्कुल स्वस्थ है, पहले से बढ़िया जिंदगी जी रही है। तो मैं यही कहूंगा महिलाओं को, कृपया करके आपका स्वास्थ्य आपकी प्राथमिकता है, परिवार के साथ साथ अपना स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। महिलाएं अब इतना देश में हर जगह आगे बढ़ रही हैं, तो हेल्थ के लिए भी जागरूकता उन्हें भी रहनी चाहिए और उन्हें हर चीज की जांच कराने के लिए कभी सोचना नहीं चाहिए, जस्ट जाके जांच करानी चाहिए। कहीं भी महिलाएं का स्वास्थ्य बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छा सा संदेश और बहुत अच्छी सी जानकारी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए हमारे स्टूडियो में।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: सुनो ना।
4: हाँ।
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
3: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

0: कहिए कहिए ना
1: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
2: मैं हूं गीतकार योगेश और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

12:54 और 4 सेकंड हो चले हैं और ये वक्त कह रहा है कि शालिनी प्रोग्राम शत्रुपा को करना होगा यहीं पर वाइंड अप। लेकिन चलते चलते इस प्रोग्राम से अपनी महिलाओं से खासकर एक निवेदन कह लीजिए, विनती कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए कि भाई अपनी हेल्थ का ध्यान आप ज़रूर रखें। जब भी आपको समय मिले अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें। हाँ, आप बहुत ज़रूरी हैं अपने परिवार के लिए। क्या करें, कैसे करें, अपने लिए समय नहीं है, इन शब्दों को चेंज करें। जी हाँ।

24 आवर्स आप लगे रहते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, हम सोने वाले टाइम को भी इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि सोते समय भी आपका दिमाग अपने लिए नहीं चलता, क्या बाकी है, क्या कर डालें, कहाँ क्या रह गया, आप ना जाने कहाँ तक सैर कराते हैं। तो बस आप अपने लिए समय निकालेंगे, क्योंकि आप सही हैं तो आपका परिवार सही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हमेशा प्रोग्राम शत्रुपा ज़रूर सुनना है, क्योंकि वो आपके लिए लेकर आता है ढेर सारी इन्फॉर्मेशन। तो अब इसका ये मतलब नहीं कि नेक्स्ट प्रोग्राम नहीं सुनेंगे आप। ऊंचों पे तेरी बात में शालिनी रहेगी आपके साथ, क्या है उसमें खास ये आपको उसी प्रोग्राम में पता चलेगा।

नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार के 12 वर्ष के विकास यात्रा को रेखांकित किया। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहे। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है और यही कोशिश रही है कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूटे गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और डिजिटल माध्यमों से लोगों तक सीधे और पारदर्शी ढंग से सहायता पहुंच रही है। इससे लक्षित वर्ग तक अधिकतम लाभ पहुँचाना सुनिश्चित हुआ है, कार्यक्षमता बढ़ी है और शासन में भरोसा बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक संस्कृति शुभा स्तंभ साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। उन्होंने कहा कि 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे हैं। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज अपने साप्ताहिक संकल्प को आगे बढ़ाते हुए विधानसभा स्थित अपने कार्यालय आने जाने के लिए ई रिक्शा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों तथा खाड़ी देशों में जारी अस्थिरता के बीच ऊर्जा संरक्षण और पेट्रोलियम ईंधनों की बचत की आवश्यकता पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। श्री खन्ना ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सभी नागरिक यथासंभव न्यूनतम ईंधन खपत साधनों का प्रयोग करें। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। यह ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करती है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के महान आदर्शों पर खरा उतरते हुए आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण में उच्चतम पेशेवर नैतिकता और मानकों का पालन करते हुए इस देश के विभिन्न भूभागों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचार सुनाता है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी

दोस्तों 1:04 और ये देखिए 5 मिनट हो चले हैं, सेकंड पड़ जाते हैं और मिनट बदल जाते हैं। तो बस शालिनी है आपके साथ दोस्तों, और प्रोग्राम उठो पे तेरी बात में आज हम सोमवार को लोगों की बातों को कैद करके लेके आते हैं। हाँ, और आज हम पहुंचाएंगे आप तक, देखिए लोगों की खुशी किस बात में है, और साथ ही साथ आपसे कहेंगे कि आप हमें अपना एक्सपीरियंस लिख कर भेजिए। ये जो 90 साल का सफ़र है ना, ये जो हमारे आकाशवाणी ने तय किया है, उसकी कुछ सुनहरी यादें, यादगार पल जो आपके खास हों, वो हमें मेल करिए fmakashwani@gmail.com पे। शालिनी है आपके साथ, तो बस सुनते रहिए।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। मरकजी हुकूमत ने लखनऊ मेट्रोलॉजिकल सेंटर को रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर RMC तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इससे लखनऊ मरकज को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अख्तियार मिल जाएगा। लखनऊ में मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। प्रोग्राम को खिताब करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि गुज़िश्ता 12 बरसों में जितनी तरक्की वजीर आज़म के दौरे इक्तदार में हुई है कभी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि 2014 तक सिर्फ 17 मौसम राडार थे, अब 50 हो गए हैं। आइंदा 2 बरसों में 2 और जुड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि RMC का दर्जा गंगा के मैदानी इलाकों तक ज्यादा रसाई फराहम करेगा। RMC का ओहदा उत्तराखंड के मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों में मौसम की निगरानी, दुरुस्त पेशनगोई और बरवक्त कबल अज वक्त वार्निंग खिदमात को मजीद मजबूत करेगा। इससे भारी बारिश, गरज चमक, बिजली गिरने और मौसम से मुतालिक दीगर वाकयात के लिए बेहतर तैयारी मुमकिन होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बराह रास्त भर्ती 2025 का तहरीरी इम्तिहान आज सख्त सिक्योरिटी के दरमियान शुरू हुआ। इम्तिहान 8, 9 और 10 जून 2026 को रियासत के तमाम 75 अजला में मुनक़िद होगा। भर्ती के अमल के तहत 72,679 असामियों के लिए 28 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने दरखास्तें दी हैं। इम्तिहान के शफाफ और मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए रियासत भर में 1,183 इम्तिहान मराकज़ कायम किए गए हैं। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में सफर के दौरान किरायों में 50% रियायत फराहम की जा रही है। इम्तिहान रोजाना 2 मरहलों में लिया जाएगा। पहला मरहला सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरा मरहला दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। रिक्रूटमेंट बोर्ड डायरेक्टर जनरल SB शिरोडकर ने कहा कि दरखास्त दहिंदगान की बड़ी तादाद को देखते हुए हर शिफ्ट में तकरीबन 4,81,000 उम्मीदवार इम्तिहान में शिरकत करेंगे। इम्तिहान के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया महकमे पुलिस और जिला हुकाम की जानिब से वसी पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तमाम इम्तिहान मराकिज की कड़ी निगरानी की जा रही है। CCTV निगरानी के निजाम नस्ब किया गया और मराकिज पर मुस्तकिल मजिस्ट्रेट, सुपरवाइजर्स और पुलिस अहलकार तैनात किए गए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में उम्मीदवारों को नेक ख्वाहिशात दी हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के अवाम के नाम पाती में लिखा कि सनातन सकाफत में फितरत में मौजूद हर जानदार चीज़ को तख्लीक का अटूट हिस्सा समझा जाता है। उन्होंने कहा कि हयातियाती तनु के तहफ़ की कोशिशें उसी वक्त कामयाब होगी जब अवामी शराकत बढ़ेगी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रियासत के बाशिंदों से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने उन पर जोर दिया कि वो फितरत को न सिर्फ सयाहों के तौर पर बल्कि तालिब इल्मों के तौर पर दरियाफ्त करें, अपने तजुर्बात को व्लॉग्स और मजामीन के जरिए शेयर करें। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक दीगर सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि वज़ीर आज़म की क़यादत में बेमिसाल 12 साल जिसमें हिंदुस्तान में लाखों महरूम ख़ानदानों की जिंदगियों में इज्जत, सलामती और एतमाद की शानदार दास्तान है। उन्होंने लिखा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की बुनियाद को मजबूत करने वाला ये 12 साल का सफ़र सिर्फ स्कीमों का सफ़र नहीं है बल्कि घरों का सफ़र है जहाँ पहली बार सहूलियात पहुँची। इन ख़ानदानों का सफ़र है जिन्होंने पहली बार महसूस किया कि हुकूमत उनकी दहलीज पर पहुँच गई है। उन्होंने इन तारीखी 12 बरसों के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2026 की मुख्तलिफ निकात का जायजा लिया और जरूरी हिदायत जारी की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने प्रदेश को देश का अग्रणी स्टार्टअप गंतव्य बनाने के लिए नई स्टार्टअप नीति 2026 तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रारंभिक चरण से लेकर विस्तार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा तक हर स्तर पर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। नई नीति में भरण पोषण भत्ता, प्रोटोटाइप अनुदान, सीड कैपिटल सहायता तथा पेटेंट एवं गुणवत्ता प्रमाणन से जुड़े प्रोत्साहनों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उद्यमियों

0: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर उद्यमियों तथा पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भी उपयुक्त प्राविधान शामिल किए जाएं। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: मुल्क का काबिले एतमाद अवामी नशियाती इदारा ऑल इंडिया रेडियो आज अपना 90वीं सालगिरह मना रहा है। आज के दिन 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशन चलाता है। नशियात 23 जबानों और 146 बोलियों में नशर की जाती है। आकाशवाणी का नारा है अवाम की फलाह बहबूद के लिए, अवाम की खुशी के लिए, यानी बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

1:19:52 का वक्त हो चला है और हमारे बीच में बहुत ही प्यारा सा ईमेल आ चुका है। ये रवि राहु कुमार जी का है, रवि कुमार राहुल रवि ऐसा नाम इनका लिखा हुआ है और इन्होंने हमें अम्बाला हरियाणा से मेल किया है और ढेर सारे नाम हैं इनके साथ में, रंजीत, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह हैं और इन्होंने बहुत ही प्यारी बातें लिखी हैं, हम पूरी पढ़ते हैं आपसे। रेडियो यानी आकाशवाणी जो हर पल एक नई किरण के साथ आता है, जो 90 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है और हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो पहले के ज़माने में केवल सुनते थे पर आज के दौर में सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं और सचमुच आकाशवाणी रेडियो गागर में सागर है। मनोरंजन, शिक्षा, ज्ञान सभी प्रकार क्या भंडार से भरा है, बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक के सफ़र लेकर आता है। मुझे रेडियो ने अपने साथ जोड़ा है, इसके लिए मैं भाग्यशाली हूँ जो एक दूसरे से मिलने व दिखाने का मौका दिया। सच्चा मित्र है और अपने जीवन के अंत तक जुड़े रहने का प्रयास करूँगा, जितना भी लिखूँ उतना ही कम है। बहुत बहुत थैंक यू रवि कुमार जी आपका। और इतनी सारी बातें, ये जितने नाम लिखे हैं आपने नीचे उनके सबके दिल की है ना, और आपने कुछ लाइनें भी लिखी हैं वो ज़रूर सब तक पहुंचाऊंगी। रेडियो के साथ उठता हूं, इसी के साथ सोता हूं, जब सुनता हूं नाम अपना तो बहुत खुश होता हूं, कभी फरमाइश पूरी ना हो तो मायूस में आपा खोता हूं, मेरा नाता ही कुछ ऐसा है रेडियो से। जी हाँ जनाब, मैं रेडियो श्रोता हूं। क्या बात है भाई, क्या बात है। कहते हैं ना कि कुछ इस तरह की खुशी होती है ना जो दिखाई नहीं जा सकती, तो बस उसी तरह की खुशी हो रही है। रवि जी आप हमारे साथ ऐसे ही हमेशा बने रहें, बस यही दुआ है हमारी। और सुल्तान रज़ा का भी मेल आया है और इन्होंने हमें सब्ज़ी मंडी बरेली से लिखा है। इकबाल रज़ा, सादिक, मोनिश और जिशान अफजाल, मम्मी पापा सभी लोग हैं और ये लिख रहे हैं कि मैं बहुत पुराना श्रोता तो नहीं हूँ आकाशवाणी का, मैं आकाशवाणी से जुड़ा हूँ 2012 से और 12 से 26 चल रहा है अब तक का सफ़र। मुझे तो वाकई में बहुत ही एक अच्छा दोस्त मिला जिसे बोलते हैं आकाशवाणी और आपका चैनल। एक बार मैं घर पर था तो सुबह को ईद थी, छुट्टी का दिन था और सुबह मैं रेडियो स्टेशन ढूंढ रहा था लेकिन उस वक्त 7 बजे आपका प्रोग्राम चल रहा था, गुड मॉर्निंग लखनऊ, और रतन सर थे और उनके साथ ही कोई और था और आपके चैनल को तब से मैं सुन रहा हूँ और आकाशवाणी लखनऊ से जिसे बोलते हैं FM रेनबो, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, तब से मैंने आपका दामन पकड़ा और इंशाल्लाह अभी तक पकड़े हुए हूँ और ये उम्मीद है कि आप आगे भी पकड़े रहें। थैंक यू सुल्तान रज़ा जी, आपका दिल से शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि आज ओठों पे तेरी बात में आप अपनी बातें हमसे जुड़े हुई, जो भी आपके सुनहरे पल हैं, कोई ख़ास बात जो यादगार जो आपके दिल को छू गई है, बस वो हमसे कह डालिए, क्योंकि आज आकाशवाणी अपना गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण कर रहा है। और आप सुनिए ये प्यारा सा ट्रैक।

आज हम सभी अपनी जो आकाशवाणी का 90 वर्ष गौरवशाली पूर्ण हो रहा है उसकी बातें कर रहे हैं, अपनी यादें हम तक आप सभी लोग पहुंचा रहे हैं। और ये बाबू अंसारी का देवकली अहमदपुर बाज़ार बाराबंकी से मेल आया हुआ है और ये लिख रहे हैं कि ये आकाशवाणी को मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ और आकाशवाणी के जो 90 साल गौरवशाली यात्रा के पूरे हो रहे हैं उसकी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ आकाशवाणी की पूरी टीम को और जितने सभी लिसनर्स हैं उन सभी को। और भी ईमेल्स आ चुके हैं और ये मोहम्मद आसिफ हैं और ये लिख रहे हैं कि हैदराबाद तेलंगाना से मैं सुन रहा हूँ, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, आकाशवाणी मेरा प्रदेश में सबसे अच्छा साथी है। अच्छा, आकाशवाणी इनका बहुत अच्छा साथी है। और ये कौन लिख रहा है, अच्छा अहमद नवाब जी का मेल संडीला से आ चुका है और इन्होंने लिखा है, भाई पूरा ही शामिल करेंगे, इन्होंने लिखा है कि मैं छोटी सी थी 2008 में मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त मिला, छोटा सा लाल रंग का रेडियो मुझे मेरे दादाजी ने दिया और बोला, मेरे दादाजी ने मुझे ला कर दिया, हाँ, और मैं दिन भर अपना रेडियो सुनती थी, तब खत वाला प्रोग्राम आता था, मैंने रेनबो के लिए अपने हाथ से खत भी लिखा था बच्चों वाली राइटिंग में, फिर एक बार मेरी कॉल भी लगी, पहली बार अनवारुल सर से हुई थी बात। और एक वाक्य जो मुझे आज भी याद है, मैंने रात के प्रोग्राम में फ़ोन लगाया था और उस समय जो आरजे सर ने फ़ोन उठाया था, मैंने उनसे बोला मुझे गाना सुनना है, उस मोड़ से जाते हैं और सुस्त कदम करके, तो उन्होंने कहा कि उस मोड़ से मत जाया करो अहमद, मुझे आज भी याद है। और इन्होंने लास्ट में आई लव यू एफएम रेनबो लखनऊ माय बेस्ट फ्रेंड, बचपन का साथी। जी हाँ, इस तरह की जो बातें हैं, यादगार पल है ना अहमद, मन करता है कि इनको हम रिकॉर्ड करके रख लें, संजो कर रख लें, जो यादगार पल हैं। ये जो 90 वर्षों का सफ़र है यूँ ही नहीं हुआ, कई सारी रुकावटें आई होंगी, कई बार हम फिर से उठकर चले होंगे, कई बार खुशियां ही खुशियां रही होंगी आप।

के साथ तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक साथ लेकिन अडिग रहे और हम चलते रहे, और आज हमने 90 साल पूरे कर लिए हैं, है ना। और आपसे दोस्ती यूं ही नहीं हो गई। और अच्छा, अभी आपने आसिफ अंसारी जी ने पूरा बड़ा सा मेल लिखकर भेजा है, हम ज़रूर पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले ये प्यारा सा ट्रैक आप सबके लिए है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों, 1:39 और 12 सेकंड का वक्त और आज प्रोग्राम उठो पे तेरी बात में हम अपने आकाशवाणी के सफ़र की बात कर रहे हैं। कब कैसे जुड़े, क्या यादगार पल हैं, क्योंकि आज आकाशवाणी अपने गौरवशाली यात्रा के 90 वर्ष पूरे कर रहा है। और मोहम्मद आसिफ जी ने लिखा है कि इन्हें प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं और ये

आकाशवाणी से पिछले 18 वर्षों से जुड़े हुए हैं। मैं अपने दादाजी के रेडियो से सुनता था बचपन में और आज मोबाइल ऐप के माध्यम से सुन रहा हूँ हैदराबाद तेलंगाना में। तेलंगाना से चलना अकेले मेरा गांव राजा कटरा पोस्ट अहमदपुर ज़िला बाराबंकी में है और इनके घर वाले सभी रेडियो सुनते हैं, एफएम सुनते हैं और साथ ही साथ मेल भी करते हैं और फ़ोन भी करते हैं और उनको सुकून मिलता है, आनंद आता है। थैंक यू। और ये रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू, भानु, शंकर भैया, पप्पू, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी, काका, इनका भी मेल आ गया है और इन्होंने लिखा है कि आपका कार्यक्रम 1985 से आकाशवाणी लखनऊ सुन रहा हूँ। पहले पोस्ट कार्ड में फरमाइश भेजता था, अब तो पोस्ट कार्ड मिलते नहीं हैं, आपने ईमेल चालू कर दिया है तो हम आपसे जुड़ नहीं पाते हैं, हम सिर्फ मोबाइल रिचार्ज मोबाइल के जरिए रेडियो सुनने के लिए मोबाइल रिचार्ज कराते हैं केवल रेडियो सुनने के लिए और कुछ नहीं। और आप हमसे जुड़ तो पाते हैं ना। देखिए, पहले आप पोस्ट कार्ड भेजते थे, लिखना पड़ता था, जाना पड़ता था पोस्ट ऑफिस डालने, फिर हमें मिलता था तब हम लेते थे, लेकिन अब तो आपने उधर से अपने दिल की बात कही और कुछ सेकेंड ही नहीं लगे और आपका पोस्ट कार्ड हमारे माध्यम से आ गया। बस समय थोड़ा सा बदला है, लेटर तो पत्र तो वही है ना आपका। और शुक्रिया, आप इतने वर्षों से हमारे साथ हैं। और साथ ही साथ मेल आ चुका है, कहाँ से आया है, अच्छा ये रामेश्वर जी का है और पूरी बात इन्होंने नहीं लिखी है और इन्होंने लिखा है कि हम आकाशवाणी को सन 1980 से सुन रहे हैं, रेडियो से जुड़े हैं। रामेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं और हमें साथ लेकर चल रहे हैं। और संजीव सिंह का मेल आया है, ये लखनऊ के ही रहने वाले हैं, ऑफिस के पास ही आकाशवाणी के पास ही इनका घर है और इन्हें अच्छा लगता है सुनकर और ये कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे गाने, अच्छे अच्छे प्रोग्राम आप सुनाते हैं और आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और 90 साल पूर्ण होने की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं इन्होंने आपको, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और गुलफ्सा सिद्दीकी जी का भी मेल आ चुका है, इन्होंने लिखा है कि मेरी ज़िंदगी में FM का बहुत महत्व है, मैं बचपन से FM सुनती हूँ और मेरी जब शादी भी हो गई उसके बाद भी मैंने इसे सुनना नहीं छोड़ा और अब तो कॉल और मेल दोनों करती हूँ, सुबह से शुरू करती हूँ सुनना और रात तक सुनती रहती हूँ और ये 2008 से FM सुन रही हैं। दोस्तों, ढेर सारी ईमेल्स और भी हैं लेकिन पहले ये गाना सुन लेते हैं, उसके बाद और भी मेल शामिल करते हैं।

दोस्तों 1:46 और 26 सेकंड का वक्त हो चला है और अभी भी आप चाहते हैं हमसे जुड़ना, अपनी यादगार लम्हों को शेयर करना, तो हमें ईमेल करिए fmakashwani@gmail.com पे, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं अपनी गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने की गाथा पर। जी हाँ, आकाशवाणी के आज 90 वर्ष पूरे हुए हैं और पवन कुमार सिंह ने सिधौली सीतापुर से लिखा है कि हम रेडियो से 2008 से सुन रहे हैं और आज भी अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है जो कंपटीशन की तैयारी में बहुत काम आती है और आप अच्छे अच्छे गाने भी सुनाते हैं। माय बेस्ट फ्रेंड रेडियो। थैंक यू पवन। आलोक साहू का भी मेल आया हुआ है, रायबरेली से इन्होंने लिखा है, ऑल इंडिया रेडियो और एफएम रेनबो को 90 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और रामेश्वर जी का मेल आया है कि अच्छा, अब इन्होंने पूरा एड्रेस लिख के भेजा है और इन्हें रेनबो बहुत अच्छा लगता है और इनका दिल खुश हो जाता है कार्यक्रम को सुनकर। और इन्होंने मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठारिया, उमा कांति, कमलेश, निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा, वेद बाबू ने साथ में सभी ने मिलकर भेजा है। अहमन, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका नया रेडियो आ रहा है जो कि आपके चाचू गिफ्ट कर रहे हैं, लखनऊ से ले जाएंगे। और मेल आ चुका है सतीश अनेजा जी का चंडीगढ़ सिटी से और इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी के सफल 90 वर्षों के लिए बधाई। और 1978 से ये, यानी कि 1978 से आकाशवाणी से जुड़े हैं और आकाशवाणी ने बहुत कुछ सिखाया है। मैं तो इसे किसी गुरुद्वारा, मंदिर या मस्जिद से कम नहीं समझता। आकाशवाणी ने बहुत से रिश्ते भी बनाए हैं जो बहुत मजबूत हैं। चलिए, खुशी हुई इस तरह की जब बातें पता चलती हैं ना कि हमारा साथ आपके लिए कितना अहम है और जो यादगार बातें हैं आपकी वो बहुत अच्छी लगती हैं हमें। और आप सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक और भी उम्मीद करते हैं कि और भी हमारे पास ईमेल सभी आएंगे जो हम आपसे साझा करेंगे। एक बार फिर से हमारा मेल आईडी नोट कर लीजिए, fmakashwani@gmail.com। आकाशवाणी में वी है, डब्ल्यू नहीं, इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो आप क्या कहेंगे पता है, मैंने तो ईमेल किया था लेकिन पढ़ा ही नहीं गया। अब जब पहुँचेगा हम तक तभी तो हम पढ़ पाएंगे, है ना। तो चलिए सुनिए ये प्यारा सा ट्रैक।

1:52 और 10 सेकंड हो चले हैं प्रोग्राम उठो पे तेरी बात में, शालिनी आपके साथ है। और हाँ, ये वक्त इस प्रोग्राम को फाइंड अप करने का तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ कई सारे ईमेल्स अभी भी हैं, फटाफट पढ़ देते हैं। और ये मेल आया है आशियाना से, ये दीपा का है, और इन्होंने लिखा है कि ये FM जब से शुरू हुआ है तब से इस पे जुड़ी हुई हैं और सुबह पुष्पांजलि से करती हैं शुरुआत सुनने की। थैंक यू आपका। और ये किसका मेल है? ये दूसरा और मेल आया है, मनोज जी का आया हुआ है, और ये लखनऊ से लिख रहे हैं कि आकाशवाणी का सफ़र हमारा बहुत पुराना है, जब ये छोटे थे और जब ये आकाशवाणी की तरफ से गुजरते थे तो लिखा रहता था कि अंदर जाना मना है, तो ये सोचते थे कि अंदर से कैसे आवाज़ें आती हैं, कैसे लोग प्रोग्राम करते हैं, लेकिन जब ये सुनते हैं हमारा प्रोग्राम तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ज्ञानवर्धक है, स्वास्थ्यवर्धक है और मनोरंजन तो है ही। धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़ते हैं और रहते हैं। और गुलफ़ज़ा सिद्दीकी जी का एक बार फिर से मेल आ गया है, और उन्होंने सभी लिसनर्स को बहुत बहुत थैंक यू कहा है और कहा है कि इसके ज़रिए हमारे बहुत सारे दोस्त भी बने हैं। जी हाँ, दोस्त तो बनते ही हैं, और जो बातें हम आप तक पहुंचाते हैं एकदम सटीक पहुंचाते हैं, और इसके लिए पता है पूरी एक नेटवर्क टीम है, बिना टीम वर्क के ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। केवल हमारी बात आप तक पहुंच रही है, एक आरजे आपसे बात करना है, इतना काफ़ी नहीं है, इसके पीछे की पूरी टेक्निकल टीम होती है, पूरा सपोर्ट होता है, हमारे सीनियर्स का सपोर्ट होता है, कैसे क्या प्रोग्राम बनाना है, कौन से गाने सेलेक्ट करने हैं ना, तो मेहनत बहुत लगती है, लेकिन जब ये मेहनत हम आप तक पहुँचाते हैं और जब आप उसका उत्तर देते हैं प्यार से कि आपको अच्छा लगता है, अच्छी लगती हैं बातें, प्रोग्राम अच्छा लगता है, तो हमारी जो मेहनत है ना दोस्तों वो सफल हो जाती है। और ऐसे ही चाहते हैं कि आप हमारा साथ वर्षों तक देते रहेंगे, लोग बदलेंगे लेकिन हमारा आकाशवाणी अधिक रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो वर्षों तक अपनी गौरवशाली यात्रा पूर्ण करता रहेगा, है ना दोस्तों। तो बस इसी के साथ इस प्रोग्राम को करते हैं। अच्छा, और लोगों के मेल आ चुके हैं, कहाँ है ये मुनेश कुमार जी का, राजगांव भानपुर लखीमपुर से आया है, और इन्होंने लिखा है हमारा भी मेल पढ़ने की गुंजाइश है क्या, कृपया करें, और हर कार्यक्रम बेमिसाल है, सुनते सुनते कई साल हो गए हैं। और आलोक साहू ने अभी मेल किया था हमें, इन्होंने हमें रायबरेली से किया है, 2024 से FM आकाशवाणी से जुड़े हैं, और आकाशवाणी कोई नहीं सुनता, मैं छोटे वाले फ़ोन पे ऐसे ही देख रहा था तभी रेडियो चलाया और आकाशवाणी रेडियो चल पड़ा, तब से लेकर आज तक इनका हर दिन अच्छा होता है। और जावेद अख्तर जी ने मेल किया है, आकाशवाणी के 90 वर्ष होने पर हार्दिक बधाई, ये 1999 से आकाशवाणी

से हमारे साथ जुड़े हैं और रेडियो इनका सच्चा जीवन साथी है, जिससे बहुत सारी जानकारियां भी इन्हें मिलती हैं या आजमगढ़ से हमें मेल करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों प्यारे से ट्रैक के साथ लेते हैं विदा प्रोग्राम मुझो पे तेरी बात में। नेक्स्ट प्रोग्राम हॉटमेल, जिसमें आपकी पसंद के गाने आप तक ही पहुंचाएगी शालिनी रहेगी आपके साथ। तो बस सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, दोपहर के 2 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2030 तक उत्तर प्रदेश में 2 गीगावाट से अधिक अतिरिक्त डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि डेटा, एआई और डिजिटल अवसंरचना भविष्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश को इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए अभी से ठोस तैयारी करनी

होगी। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निवेशकों की अपेक्षाओं के अनुरूप अधिक आकर्षक, व्यावहारिक और समयानुकूल नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए। गणित सुरक्षा के बीच आज प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा हो रही है। बलरामपुर में परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए डीएम विपिन कुमार जैन और एसपी विकास कुमार ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। कौसाम्बी में परीक्षा जिले के 8 परीक्षा केंद्रों पर हो रही है, जहाँ 17,856 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। वहीं हापुड़, बस्ती, बुलंदशहर में भी अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रयागराज एयरपोर्ट को उत्तर प्रदेश का पहला सौर्य ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बनाने की पहल की जा रही है। इसके तहत टर्मिनल बिल्डिंग और पार्किंग क्षेत्र में सौर पैनल व 750 किलोवाट क्षमता का आधुनिक सोलर कारपोरेट स्थापित किया जा रहा है। यह प्लांट लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। प्रयागराज एयरपोर्ट के डायरेक्टर राजेश चावला ने बताया कि एयरपोर्ट पर हरित ऊर्जा का बढ़ावा देने के लिए पार्किंग क्षेत्र में सोलर पैनल लगाया गया है, जिसे प्रति दिन 4500 यूनिट का उत्पादन हो रहा है। इससे हर महीने 10 लाख रुपये तक विद्युत बिल की बचत हो रही है। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का दिव्य हुआ। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिसमें 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम का प्रसारण होता है। इनकी पहुँच देश की 98% आबादी तक है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: चार मिनट और पांच सेकंड हो चले हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है हॉट मेल, जिसमें शालिनी आपके साथ है लेकर ढेर सारी ईमेल्स और इधर इधर की बातें बिना किए हुए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और ईमेल्स पढ़ना शुरू करते हैं। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका और गाया और ये सुच्चा सिंह का मेल आया हुआ है जगराव पंजाब से, ये हमें मेल कर रहे हैं और गाने की फरमाइश तो की ही है। टीटी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, अमनदीप का मेल मोहाली चंडीगढ़ और कालका से, शुभचंद्र, साहिल बिच्चा का भी मेल आ चुका है। किसका मेल है? सिद्धार्थ गोढ़ाने, अर्चना ताई, हीरामणि और प्रणय, प्रतिभा का मेल अमरावती से आ चुका है। रणवीर गुप्ता का भी मेल आया है और इन्होंने ओखला संगम विहार दिल्ली से बबीता रानी, सत्यम और सुंदरम के साथ में मेल किया हुआ है। और ज़िला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी और गुरमंत और मनु का मेल आया है। ये किसका मेल आ चुका है? जितेंद्र नामदेव, बबलू, अंजू, कनक, सौम्या, इन्होंने ज़िला शहडोल मध्य प्रदेश से मेल लिखा है और लिखा है कि रेडियो हमारा हर वक्त का साथी है, चाहे गम हो, खुशी हो।

दोनों में साथ देता है। बिल्कुल गाना सुनवाते हैं हम आपको। और मेल आया है सहारनपुर से सैयद मसरूर शाइना हसन नाजिया इब्राहिम के साथ, किसी भी मेल में मेरा किसी भी गीत में मेरा मेल शामिल कर लें। और इसी ही लाइन को आगे और बढ़ाया है कमलकांत गुप्ता ने, पिपरिया से हमें मेल किया है दीपा रिमझिम के साथ, और समझी लवापारा से श्रद्धा अदिति मुकेश राधे दीपक अंकु राघव का मेल है। रामेश्वर जी का भी मेल आ चुका है, उमा कांति कमलेश निशा प्रज्ञा प्रतिमा वेद बाबू के साथ में, और इन्होंने कानपुर देहात से हमें मेल किया है। और ये गाना आप सब के लिए, सुनिए और इंजॉय कीजिए।

0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, सुनो तो,

किस लिए आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: इनका सबका तो नहीं पता, लेकिन हम आए हैं आप तक प्यारे प्यारे से गाने पहुंचाने के लिए। और मेल आ चुका है, कहां से है ये, इन्होंने वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक अहमद शाकिर अलकमा खत्री अल्तमश रमेश और शादाब जी ने एक साथ मेल किया हुआ है। और कई सारे और भी नाम हैं और गाने की फरमाइश की है। सरफ़रुद्दीन अंसारी फ़ातिमा खातून ने भी मेल हमें बक्सर बिहार से किया हुआ है और कई सारे नाम इन्होंने भी लिखकर भेजे हैं हमेशा की तरह। बोधराज कोरवाल, कमला भानु और गीतिका के साथ में उत्तम नगर दिल्ली से इन्होंने मेल किया है, प्यारे से गाने की फरमाइश की है। और मुंबई से भी मेल अहमद भाई दुखनी सदफ आरजू जूही इकबाल इमरान अहमद और बिटिया आमना नसरीन आसमा परी राबिया मंतशा आशु अहमद का मेल आ चुका है। और इन्होंने भी गाने की फरमाइश की है और कहा है किसी भी गीत में भी मेरा नाम शामिल कर सकते हैं। बोधराज जी, आपका मेल शामिल कर लिया गया, फिर भी आप ना जाने कितने सारे मेल करते हैं भाई। ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम जावेर आजाद नगर लक्षर हरिद्वार से हमें मेल कर रहे हैं। और सुशीला देवी सनानंद और कुमार गौरव का भी मेल अकोला से आ गया है। और भाई जिसके मेल आ जाते हैं वो भी न जाने क्यों फटाफट कई सारे मेल कर देता है। राजकोट गुजरात से कौशिकी अस्मिता मम्मी पापा महेश बड़वाना परिवार से हमें मेल कर रहे हैं। और केवचो बढ़िया है एकदम। और वैशाली शैलेश प्रिंस एकांत सुमित कुमारी ध्वनि का भी मेल बहादुरापुरा नागपुर से आया है। और उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत सरिता प्रणीता सिद्धांत लाडला टुक टुक का भी मेल आ चुका है। और ये मेल एक और किसका है, तुलसी मस्कीन जी का है। और इन्होंने वीना आशीष राजा चैतन्य चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचित केशु के साथ में गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हमें मेल किया हुआ है। सतीश अनेजा जी का भी बिमला के साथ में चंडीगढ़ से मेल आ चुका है। और आकाशवाणी के सफल 19 वर्ष पूरे होने पर भी इन्होंने हमें अनंत शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही साथ अपने गीत भी अपना फरमाइशी भेजा है। और निसार सलमानी

शाद सलमानी बेबी आलिया आयान बाबू तेलीवाला से हमें मेल कर रहे हैं। और मेल आया है ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष का पलेरा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से हमें मेल कर रहे हैं दोस्तों। और अब बारी है आपकी ही पसंद के गाने को आप तक पहुंचाने की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

9:25 का वक्त और मेल आ चुका है. किसका है? फैजान गौरी जी का है और इन्होंने लहरपुर से हमें मेल किया हुआ है और बहुत ढेर सारा इन्होंने बातें बताई हैं और ये लहरपुर ज़िला सीतापुर से ये लिख रहे हैं. और अच्छा, स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, जल ही जीवन है, इतनी अच्छी सी लाइनें लिखी हैं इन्होंने. और होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन अमन दीपांशु का मेल आया है. किसी भी गीत में इनका मेल शामिल कर लें. और झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु, ताशु, अर्णव, सत्यम इन्होंने, और पश्चिम बंगाल से मुन्ना और गुड्डी का मेल आ चुका है. और गाना तो आपने सुन ही लिया होगा. विनीत कुमार, ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल, ज़िला सीतापुर से हमें मेल कर रहे हैं. और मेल आपका मिल गया है, खोजने की जरूरत नहीं है. और मेल आया है फैजान का आया है और इनके साथ में रियाज और टिक्का, इनका मेरा दोस्त रेहान भी हैं. और ये कहां से लिख रहे हैं ऐसा इन्होंने कुछ लिखा नहीं है. राजकमल यादव का मेल आया है सूरतगंज बाराबंकी से और गाने की फरमाइश आपने भी की है. और वैसे दोस्तों, जो गाने प्ले हो रहे हैं वो आपको पसंद ज़रूर आ रहे होंगे. और मूंदी चक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी का भी मेल आ चुका है. और रामशरण विश्वकर्मा है, साहिल, मंजू, रंजन, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी का भी मेल हमीरपुर बुलंदखंड बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से इन्होंने मेल किया है. और दोस्तों, आप बारी है इस प्यारे से ट्रैक की, सुनिए, एंजॉय कीजिए, फिर हम आपकी पसंद का गाना भी प्ले करेंगे.

2:30 और 45 सेकंड का वक्त प्रोग्राम हॉटमेल में शालिनी आपके साथ है, लेकर रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, रंजू बाई और युवराज और शिवानगी का मेल। थैंक यू मेल करने के लिए। शाहरुख नूर अंसारी का भी मेल मचकली जिला बरेली से आ चुका है। फरियाद हुसैन, शकील, मोइन, तस्लीम, डीजे प्रधान है इनके साथ। अशोक राज का भी मेल रायपुर मितौली लखीमपुर खीरी से आ चुका है। गाने की फरमाइश की है, ऑप्शन भी दिया है आपने। और पिहानी बड़ा चौराहा हरदोई से और तोहीद कुरैशी का भी मेल आ चुका है। प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रांजल, सोहम, सदानंद, विराज, अंशुमन ओनी और सुभाष सदानंद, नीरज विराज का मेल सांभाजी नगर से आ चुका है। संदीप मक्कर का भी मेल मन्नत भरत कमल के साथ में जलंधर से आ गया है। सैफ अंसारी ने भी हमें मेल किया है, श्रीनगर लखीमपुर खीरी से ये लिख रहे हैं और कुछ नाम ये शामिल करना चाहते हैं। गोला गोकरनाथ से साजदा अंसारी, जिया अंसारी, अतीक और फसीहा और कई सारे नाम हैं। थैंक यू मेल के लिए। और मेल आया है नारायण गायकवाड़ दयानंद का और ओमकार साईं गायकवाड़ का, नांदेड़ महाराष्ट्र से हमें मेल कर रहे हैं। और टीटी मल्होत्रा जी, आप एक नहीं ढेर सारे मेल करते हैं अलग अलग मेल आईडी से, ऐसा मत किया करिए भाई। और मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, साबिस्ता नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी का भी मेल आया हुआ है। संजय साहू का सुजाता के साथ में पोठिया कला दुर्ग से मेल किया है इन्होंने और बहुत ही अच्छे गाने की फरमाइश आपने भी की है। और संदीप मक्कर जी, भाई आप लगातार मेल करते जा रहे हैं, काउंटिंग करें क्या आपकी? चलिए छोड़ देते हैं। बाबू अंसारी का भी मेल आ चुका है और इन्होंने अहमदपुर बाज़ार बाराबंकी से मेल किया है। कुलदीप महेंद्र को ये गाना सुनवाना चाहते हैं। चलिए, जितने भी गाने बज रहे हैं सब आप ही के पसंद के हैं, कोई भी गाना सुनवा दीजिए। और मेल आ चुका है दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, जय किशन कुमारी और इंद्राणी माया साहू का कबीर धाम छत्तीसगढ़ से हमें मेल कर रहे हैं। किसी भी गीत में इनका मेल शामिल कर ले, कितने अच्छे हैं ना आप। और मुनेश कुमार राज महानपुर हरौरा लखीमपुर खीरी से लेकर भेज रहे हैं। 90 के दशक की फिल्मों की इन्हें याद आ गई है भाई, और गाने तो हर तरह के आप तक हम पहुंचाते हैं, याद करें या ना करें सारे गाने आप तक पहुँच जाते हैं। चलिए ये गाना आप सबके लिए।

और वैसे ही आकाशवाणी के चर्चे हर जबान पर हैं, और मेल आ चुका है नवी हसन अब्बासी का एटा से शहनाज नावेद और राशिद सुहेल अमन यशफ और सिकंदरा राव से मुनीब और इशरत का मेल है। और ये मेल आ चुका है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष, लाडो कोयल, पापा जी नानक चंद और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष कोमल कोयल और डुग्गू भौमिक का मेल आया है। और दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश का भी मेल छत्तीसगढ़ से आ चुका है। सत्यनारायण कुरील जी ने भी उदयपुर राजस्थान से हमें मेल किया है और इन्हें प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। और साहिब आलम जी का भी मेल आ चुका है और इन्होंने अम्बेडकर नगर ऐश बाग लखनऊ से हमें मेल किया है। और पी एस नोहाकर, निर्मला विशाल का नरवेल महाराष्ट्र से आया हुआ है और इनके साथ मलकापुर से नारायण इंगले और सोपान जी का भी मेल आ चुका है। और दोस्तों, और सुरेश नारंग जी का मेल आया है और सुरेश नारंग जी के साथ कहाँ से ये लिख रहे हैं हमें, सहारनपुर से आशा है इनके साथ में। और ये एक मेल आ चुका है कमलेश मुकुल, सचिन, दीपांशु न्यू दिल्ली से ये हमें मेल कर रहे हैं। और संजय डिंगिया जी का नमन अपार के साथ में बागपत उत्तर प्रदेश से ये हमें मेल कर रहे हैं। और जोन रिकॉस्टो, रोजी पर्ल विलिस का जनकपुरी सहारनपुर से मेल आ चुका है। दिलीप कुमार का भागलपुर बिहार से मेल आया है और ये मेल पंजाब रामटेक के यशोधरा श्रवा का है और यवतमाल से इन्होंने हमें मेल किया है। और ये मेल एक और नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहां नाज, तलहत जहां, फरहत जहां का सभी का, राजिया शाहीन नूरी का मेल आया हुआ है। और सुधांशु का मेल है भगवतीपुर मुहाना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब ज़िला लखनऊ से ये हमें मेल कर रहे हैं। थैंक यू सुधांशु। और ये एक मेल और आया है मोहम्मद शादाब का आया है संडीला से, ये हमें मेल कर रहे हैं। थैंक

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों आप सभी लोग सुन रहे हैं 107 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की शालिनी के साथ, और मनोज बंसल जी का हांसी हरियाणा से मेल आ चुका है, और मेल आया है अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर दिल्ली, पक्षय रुद्रा रुचिका और रामेकर परिवार की तरफ से है, विजय मोहबिया कविता सपना शिवी सलूनी ईशु और पेंटर बाबू रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से मेल कर रहे हैं, और साथ ही साथ जलालाबाद वे से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी निमित का भी मेल आ चुका है, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास का मेल आ चुका है दोस्तों, और पिंकू सोनी का टिकैत नगर से मेल आया हुआ है, मेहर अरोरा का ममता कीर्ति भूमिका के साथ श्री गंगानगर राजस्थान से मेल आया है, और रवि कुमार, राहुल, रंजीत और जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत का सभी का मेल अम्बाला हरियाणा से आया है, हीरामणि वर्मा का छत्तीसगढ़ से, पारसमणि पुष्पेंद्र नोखेलाल के साथ में आया है, और तेज बहादुर यादव जी का मेल भी ममता और रोनित और वानिका के साथ रायबरेली उत्तर प्रदेश से मेल आ गया है, और बाकी और लोगों के मेल हैं जो बहुत पहले आ चुके हैं, ये तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू का भी मेल आ चुका है, और ये किसका मेल आया है भाई, रामचंद्र हरगांव सीतापुर से हमें मेल कर रहे हैं, और इतने सारे ढेर सारे मेल आप कर देते हैं ना, आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से मेल कर रहे हैं, आपके ही मेल ना इधर से उधर खो जाते हैं, रणधीर गुप्ता, बबीता रानी, सत्यम सुंदरम के साथ में बिहार से मेल आया हुआ है, अच्छा सब चारों कोने से मेला इधर से उधर हर जगह से आ जाते हैं, शंभू दयाल जी का मेल है, और ये आर कुमार, राजेश वर्मा, फागुराम यादव, चंदन तुहेरा ही, और अनिल कुमार, राजेश वर्मा, हरजिंदर सिंधे और हनुमान सिंधे, राधेश्याम शर्मा, बलवेश पवार, सुदर्शन शाह, विक्रम अब्दुल गफ्फार और यासीन अंजान, अनिल कचारिया का मेल है, इतने सारे मेल है, सुनिए ये प्यारा सा ट्रैक।

दोस्तों 2:54 हो चले हैं और ये वक्त कह रहा है कि शालिनी अब प्रोग्राम को यहीं पर करना होगा वाइंड अप। लेकिन चलते चलते हम आपको बता दें कि जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान मोहिनी कल्पित बेबी गर्वी बेबी का मेल आया हुआ है और बलवेश पवार का भी मेल डैनी मनीष के साथ में बाड़मेर से आ चुका है और नवी हसन जी आपका मेल लिया जा चुका है, फिर भी आप न जाने क्यों इतने सारे मेल कर रहे हैं। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा अजय तनुश्री और अनविका बेबी का मेल आया है और वो बेबी छोटी सी वो क्या जाने मेरा मेल है, लेकिन परिवार का जब नाम लिखना होता है तो बच्चे का भी नाम लिखते हैं वहाँ पर। और गंज टुडवारा से शमशुल कमर राही शाहीन फातिमा का भी मेल आ चुका है। अजमत अंसारी का भी मेल सुल्तानपुर से आया हुआ है और अजमत जी आपका गाना तो आप तक पहुँच ही गया होगा। और इसी के साथ प्रोग्राम को करते हैं यहीं पर वाइंड अप। नेक्स्ट प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में भी शालिनी रहेगी आपके साथ।

नमस्कार, दोपहर के 3 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में न्यू रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर की रिमोट का बटन दबाकर घोषणा की। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्रीय सेंटर से उत्तर प्रदेश को बड़ा लाभ मिलेगा। मौसम विभाग के द्वारा जो भी अन्य कार्यक्रम प्रदेश के अंदर लागू होंगे उसके लिए प्रदेश सरकार हर तरह की मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ब्लॉक स्तर पर 2000 रेंज गेज अब तक स्थापित हुए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। प्रदेश में आज से आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा शुरू हो गई है। 10 जून तक चलने वाली परीक्षा 2 पालियों में कराई जा रही है। इस क्रम में बस्ती में आज पहली पाली की परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई है। यहां पहली पाली में 1269 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। परीक्षा के दौरान जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना और पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह ने कई

केंद्रों का निरीक्षण किया। वहीं अमरोहा में भी अधिकारियों के ने केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि लखनऊ में जल्द ही सांस्कृतिक संग्रहालय बनाया जाएगा, जहां प्रदेश की जनजातियां विरासत, लोक परंपराएं, संस्कार और भारतीय जीवन दर्शन आधुनिक तकनीक के साथ जीवंत रूप में देखने को मिलेंगे। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश संस्कृति संग्रहालय म्यूजियम एंड रिचुअल सेंटर परियोजना के निर्माण और क्यूरेशन कार्य के लिए राज्य सरकार ने करीब 23,42,00,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में 8,00,00,000 रुपए की धनराशि जारी करने की अनुमति दे दी गई है। परियोजना की जानकारी देते हुए बताया श्री सिंह ने कि संग्रहालय का पूरा ढांचा पारंपरिक वास्तुकला और आधुनिक डिजाइन के समन्वय पर आधारित होगा। प्रयागराज एयरपोर्ट को उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बनाने की पहल की जा रही है, इसके तहत टर्मिनल बिल्डिंग और पार्किंग क्षेत्र में सौर पैनल व 750 किलोवाट क्षमता का आधुनिक सोलर कारपोरेट स्थापित किया जा रहा है। यह प्लांट लगभग 10,00,00,000 रुपए की लागत से बनेगा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: कभी हमसे ही तुम्हारी सुबह होती थी, कभी चाय की चुस्की के साथ, तो कभी घर की बालकनी में। अजी अखबार तो हाथों में यूं ही लिए रहते थे, लेकिन दिल तो हमसे ही लगा रहता था। किचन में खाना बना रहे हो या ऑफिस जाने की तैयारी हो, बस में सफर हो या ट्रेन, हर गाड़ी में मेरा ही साथ रहता था। वो चुप चुप के ऑफिस और कॉलेज में हमसे बातें किया करते थे। शाम को घर वापसी में भी मेरा साथ कहाँ छोड़ते थे। जब रातों में नींद नहीं आती थी तो मुझे साथ लेकर सो जाते थे। जिंदगी के हर मोड़ पर हम साथ रहते थे। कैसे प्यार की बातें और अपने जज्बात एक दूसरे से कहते थे। वो दिन और आज का दिन कुछ भी नहीं बदला, बल्कि समय के रफ्तार के साथ हमारा रिश्ता और गहरा हो रहा है। बस इसी तरह से हमारा साथ देते रहिए और सुनते रहिए हर रोज सुबह 6 से रात 12 बजे तक FM रेनबो।
1: सात रंग का इंद्रधनुष है,
2: सात सुरों की सरगम है,
3: सात जन्म है सात समंदर,
1: साथ हमारा हरदम है।
3: जिंदगी के सतरंगी रंग
2: FM रेनबो के संग।

कह सतरंगी दुनिया, जिसमें प्यारा सा ट्रैक अभी आप सुन चुके हैं अनदेखी अनजानी सी। और कैसा होगा कैसी होगी ये तो हमारा दिल बताता है ना। जिसे हम प्यार करते हैं उसकी सूरत हम एकदम दिल में उतार लेते हैं, और जब उसी दिल की आवाज़ वाली जो सूरत है जब हमें कभी दिखती है कहीं पर, तो बस दिल हमारा उसी पर आ जाता है ना। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो कि क्या है, धड़कन लखनऊ की।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: करियर पर है ध्यान,
2: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
1: पॉजिटिव है फैशन,
2: क्रिएटिव है पैशन,
1: टेक्नोलॉजी में रुचि,
2: बने पर्सनालिटी ऊंची,
1: फॉलो करें ट्रेंड्स,
2: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स
1: ओनली ऑन यूथ वेव।
2: यूथ की बात यूथ के साथ
1: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
2: धड़कन लखनऊ की।
3: मैं समय हूँ और मैं हरीश बिमानी हूँ और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
4: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
5: धड़कन लखनऊ की।

और दोस्तों 3:24 और 24 सेकंड हो चले हैं और इसी के साथ प्रोग्राम सतरंगी दुनिया को करना होगा यहीं पर वाइंड अप, क्योंकि 3:30 से प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का रिले होगा। तो बस शालिनी इसी के साथ करती है आपसे टाटा बाय बाय, होगी आपसे मुलाकात किसी और दिन, तब तक के लिए आप सभी लोग सुनते रहे 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कलाकवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, अपनों के बिना अधूरी लगती है।
3: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और

0: मिहू का लिखते हैं।
1: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
0: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
1: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
0: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट ना हो जाएं।
1: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
0: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
1: जी।
0: एक सुझाव है कि यदि सब्जी फूल फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
1: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
1: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
1: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
0: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
0: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
1: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
0: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
1: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है?
1: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
1: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
1: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
1: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जाँच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
0: जी,
2: प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा

0: छीन लेती है।
1: कैसे छीनती है?
0: बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया?
1: नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी।
0: तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: बेचारा कौवा अपनी रोटी गवा बैठा ना।
1: क्यों भला?
0: क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाव बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
2: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
3: मंगला,
4: हाँ?
3: आ देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
4: ठीक है।
3: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना?
4: हाँ हाँ।
3: उठाकर मुझे दे।
4: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
3: हाँ।
4: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
1: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
3: ये हाँ ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
4: अरे वाह।
3: और ये इसकी पूंछ।

0: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
1: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
0: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
1: ओ, बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
0: ठीक है
1: अब बना।
2: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह

0: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
1: भाई अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
2: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
1: ठीक है,
2: चल चल चल चल चल, हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
3: कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
4: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने, देखो तो सही, पूंछ उठा है, घोड़ा कैसा भाग रहा है।
0: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी, इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
4: कहाँ है कोच्चू और मंगला? है
5: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था, आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अंबा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई विद्वान नीलकांतन भट्टा तिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती? त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामस्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
1: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। ये हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
2: रामस्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामस्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
3: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
3: जी।
0: रवि वर्मा यही करने लगे, तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेंसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेंसन,
4: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हों, तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
4: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा। मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
2: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेंसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
4: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
2: इस तरह

0: हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली, लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
1: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए, और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग
5: नमस्कार। शाम के 4 बज चुके हैं, सुनिए एफएम समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौसम की सटीक व विश्वसनीय जानकारी मिलने से न केवल जनधन हानि को बचाया जा सकता है, बल्कि कृषि उत्पादन को भी बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में मौसम विज्ञान के लखनऊ केंद्र को क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र में परिवर्तित करने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जिले से लेकर ब्लॉक स्तर तक वर्षा का आकलन करने के लिए उपकरण लगाए हैं, ताकि फसलों को होने वाले नुकसान का आकलन किसानों की मदद की जा सके। वहीं समारोह के विशिष्ट अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले 12 सालों में मौसम विभाग ने इतने रडार और उपकरणों की स्थापना की है जितने पिछले 65 सालों में स्थापित नहीं हुए। प्रदेश सरकार ने 5 नए एकीकृत आयुष चिकित्सालय और महाविद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया है। ये आयुष चिकित्सालय और महाविद्यालय गोंडा, मिर्जापुर, मेरठ, आगरा और बस्ती मंडल में स्थापित किए जाएंगे, जहां विद्यार्थियों को आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ साथ आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान की शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रमुख सचिव आयुष रंजन कुमार ने बताया कि 5 नए एकीकृत आयुष चिकित्सालय और महाविद्यालय के लिए 5 मंडलों में जमीन को चिन्हित कर लिया गया है।

हमीरपुर की सभी ग्राम पंचायतों में आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार करने के लिए 22 जून से खुली बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में सभी विकास खंडों की ग्राम पंचायतों के लिए विस्तृत रोस्टर जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के वास्तविक एवं पात्र लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए ये प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संचालित की जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने प्रदेश के कई जिलों के लिए तत्कालिक पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने राज्य के दक्षिणी हिस्सों में मौसम बदलने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार प्रदेश के महोबा, बांदा, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, झांसी जिलों और उनके आसपास के क्षेत्रों में मौसम खराब रह सकता है। इन क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: करियर पर है ध्यान,
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
0: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
0: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
0: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स
0: ओनली ऑन यूथ वेव।
1: यूथ की बात यूथ के साथ
0: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर।
1: धड़कन लखनऊ की।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

साधना सरगम और उदित नारायण की खूबसूरत आवाज आप सभी के रेडियो सेट्स पर पहुंची। फिल्म मोहरा का ये गाना आप सभी के लिए, ना कजरे की धार। 4:09 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में। मैं शादाब आप सभी के साथ हाजिर हूं प्रोग्राम लेकर यूथ वेव। जी हाँ, यूथ वेव आप सभी के लिए बिल्कुल तैयार है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ शादाब आप सभी के साथ। आप सुन रहे हैं FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की, और अगर धड़कन की बात करें तो भाई अभी बहुत से गाने हैं जो आपको धड़कते धड़कते मिलेंगे। अभी अगले कुछ घंटे आप मेरे साथ रहने वाले हैं, और जितने लोग भी मेरे साथ रहेंगे तो भाई आज बहुत ढेर सारी बातें भी होंगी। कौन कौन सी बातें होंगी, क्या क्या बातें होंगी, ये तो भाई आपको हमारे साथ रह के पता चलने वाला है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सभी स्टेट्यून रहना है। यूथ वे में क्या बात करेंगे आज, कुछ स्टार्टअप्स की। वो स्टार्टअप्स कैसे होंगे भाई? देखो यार, वो स्टार्टअप्स आजकल के यूथ के हिसाब से होंगे। आजकल हमारा यूथ क्या कर रहा है? बहुत कुछ कर रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत ढेर सारा एक्टिव है। सो सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव हैं और सोशल मीडिया पे लगातार आप अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे आपके सामने अलग अलग एड्स आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं, सोशल मीडिया से ही आ रही हैं। तो ये आजकल एक बिजनेस बन गया है, पता है आपको? डिजिटल मार्केटिंग है ये। डिजिटल मार्केटिंग जो है ये एक बिजनेस है, और इसको आप भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ इंटरनेट आपको चाहिए और सिस्टम चाहिए। बाकी डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या होता है क्या आपको पता है? मैं आपको बताता हूँ। जैसे कंपनियाँ होती हैं, दुकानें होती हैं, पर्सनल जो भी लोग होते हैं, मतलब जैसे मैं आरजे हूँ तो मेरी एक पर्सनल लाइफ है, कोई पॉलिटिशियन होता है, कोई पब्लिक फिगर होता है, कुछ भी होता है, उसको भी अपने सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, ठीक है ना? डॉक्टर्स, यस, रेस्टोरेंट्स, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, आजकल हर चीज़ सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं वो लैक कर रहे हैं कुछ चीज़ों में। जैसे अगर सोशल मीडिया से आप बोलें कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, तो वहाँ बहुत ढेर सारे लोग पहुँच जाएंगे, चाहे वो एक छोटी सी कार्ट ही क्यों ना हो, कोई ठेला ही क्यों ना हो, लोग खाने पहुँच जाते हैं। तो एक सोशल मीडिया एक बिज़नेस बढ़ाने का तरीका है। तो इसको कई लोग एज एन बिज़नेस

इसी क्योंकि ज्यादातर लोग खुद नहीं कर सकते क्योंकि वो अपना दुकान चलाएंगे या सोशल मीडिया चलाएंगे, तो उसके लिए वो लोग हायर करते हैं। आपको वही लोग बनना है, जी हाँ, आपको वो पर्सन बनना है जो सबके सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उनको हैंडल करे और प्रमोट करे, लोगों को बताए कि हाँ भाई इस दुकान पे ये मिल रहा है, आप इन डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये चीज़ें फ़ायदेमंद हैं उनके क्लिनिक पे जाने से, आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी में ये काम हो रहा है, तो हर एक चीज़ चाहिए होती है। तो फिलहाल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपको अपना बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए सिर्फ कुछ चीज़ें लगेंगी, वो आपने अगर अरेंज कर ली तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे, सोशल मीडिया में आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं, मैंने स्टार्टअप बता दिया है कैसे, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ में आएंगी, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी बस कुछ ही देर में बताएंगे। फिलहाल एक गाना सुनते हैं, कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड विद 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। मैं हूँ शादाब।

जी हाँ बिल्कुल, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो यहीं रहना है क्योंकि मैं हूँ आपके साथ। 4:19 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में, मैं हूँ शादाब, आप सभी के साथ, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो। और बात चल रही है कि भाई देखिए, आजकल ना सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं लगता कि आप बिना सोशल मीडिया के अधूरे से हैं। आप किसी से कितने दिन भी ना मिले, लेकिन आप लगातार उसके साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम या अलग अलग से साइट्स पर जुड़े हुए हैं, तो आपको कहीं से ऐसा देख के नहीं लगता कि यार इससे हम कभी मिले नहीं, मतलब लाइक मिलते नहीं हैं। जैसे आपके रिलेटिव हो गए या आपके दोस्त हो गए, आपके कजन्स हो गए, लगेगा यार अभी इसने कल एक अपडेट डाला था तो मैं लगातार उनके साथ जुड़ा हूँ, उस पर कमेंट किया, बात की। तो सोशल मीडिया से हम कहीं ना कहीं जुड़ करके एक दूसरे से तक आसानी से पहुंच जाते हैं, तो उसका एक बेनिफिट हम एज एन बिजनेस भी ले सकते हैं। किसी को भी कोई चीज़ की ज़रूरत है, आप अगर उसके काम की चीज़ उस तक पहुंचा रहे हैं तो उससे बहुत हेल्प मिलती है और उससे आपका भी बेनिफिट है। अब क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं एज एन बिजनेस, ठीक है ना। ऐसे लोगों को, कोई भी पब्लिक फिगर लोग हों या डॉक्टर्स हों, दुकानें हैं, कंपनियाँ हैं, स्कूल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ब्रांड्स हैं, इन सबको ना ऑनलाइन प्रमोशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको इनके पास जाना है और आपको इनसे ये बोलना है कि आप अपने कंटेंट को हमको दें, जो भी उनकी कंटेंट हो, जो भी उन्होंने पोस्ट करवाना हो, जैसे उनके ऑफर्स हो गए, उनके दुकान के बारे में रील्स हो गई, पोस्ट हो गए, जो बेस्ट ऑफर चल रहे हैं या एक के साथ एक फ्री चल रहा है, कुछ भी, तो ये लोगों तक पहुँचाने का ज़रिया। आप उनसे बोलें कि भाई ये चीज़ हम आपका कर सकते हैं और इसके लिए हम इतने चार्ज लेंगे। तो आप सोचिए, अगर एक दुकान से आपको किसी ने, मान के चल रहे हैं, किसी ने आपको दिए 1,000 रुपीज़ और आपने आगे से 50 दुकानें पकड़ ली या 50 काम पकड़ लिए, तो एक महीने के लिए अगर आपने 1,000 रुपीज़ किसी एक से लिए उसके प्रमोशन के लिए, तो आप एक महीने में कितना कमा रहे हैं? 50,000। यस, तो इसमें मल्टीपल टाइम आप कई लोगों को जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक ही को जोड़ना है, मल्टीपल लोगों को जोड़ना है और उनके हिसाब से उनके पोस्ट डालते रहने हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव करने के लिए। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें लोग करवाते हैं, जैसे गूगल पे बिजनेस अपडेट करना हुआ, जैसे आप कहीं पर गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे, कोई भी बिजनेस, कोई भी काम आपको चाहिए होता है तो आप गूगल पे

0: करते हैं कि आई नीड आरजे इन लखनऊ, तो उसमें नाम लिख के आता है. तो वो कैसे आता है? क्योंकि हम लोगों ने अपना नाम वहाँ डाल रखा है, ठीक है ना. तो ऐसे ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वेबसाइट बना सकते हैं. वेबसाइट तो चलिए नेक्स्ट लेवल हो गया, मतलब उसके लिए स्पेशल क्रिएटर की ज़रूरत पड़ती है. व्हाट्सएप पे मार्केटिंग होती है. तो ये सारे तरीके हैं जो आप लोगों को बता सकते हैं और उनसे काम उठा सकते हैं. आपको सिर्फ एक कमरे की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है जहाँ पर आप बैठ के सारे काम कर सकते हैं, वो आपको बस थोड़ी सी देर में बताऊंगा. तब तक के लिए गाना. गाने से पहले एक छोटा सा एड ब्रेक. एड ब्रेक के बाद मिलेंगे हम लोग गाने पर.
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा. वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है. मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ. जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
3: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.
4: सपने बड़े हैं,
5: स्टाइल अलग है,
4: तो ये शो है आपके लिए.
5: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
4: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
5: सब कुछ एक ही जगह. तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
4: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर.
6: सुनिए,
7: कहिए, कहिए,
6: सुनिए,
7: सुनिए,
6: कहिए,
7: कहिए.

0: आपके अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित।
1: भारत सरकार के रेल मंत्रालय

0: मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन परियोजना का कार्यान्वयन कर रही नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में प्रबंध निदेशक के पद के लिए योग्य व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। विस्तृत विज्ञापन के लिए कृपया देखिए वेबसाइट www.indianrailways.gov.in। कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का नारियल विकास बोर्ड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। ऑडिट अधिकारी एक पद, सिस्टम एनालिस्ट एक पद, प्रशासनिक अधिकारी दो पद, लेखा अधिकारी एक पद, बाजार प्रचार अधिकारी एक पद, निर्यात प्रचार अधिकारी एक पद, वरिष्ठ लेखा परीक्षक एक पद, वरिष्ठ केमिस्ट एक पद और सहायक स्टोर एक पद। पात्रता की नियम और शर्तों, आयु सीमा, आरक्षण और वेतनमान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए रोजगार समाचार का 30 मई से 5 जून 2026 का अंक। पात्र और इच्छुक उम्मीदवार जिन्हें चयन प्रक्रिया में तुरंत अपने मौजूदा कार्यालय से कार्यमुक्त किया जा सकता है, वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ अपने दस्तावेज भेज सकते हैं। इस पते पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड, केरा भवन, SRV रोड, कोची 682011। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। निदेशक जल संभर विकास, निदेशक जल प्रबंधन, निदेशक वानिकी, STA जल प्रबंधन, STA वानिकी, STA जल संभर विकास या सामाजिक विज्ञान अथवा अर्थशास्त्र, STA कृषि एवं बागवानी तथा STA पशुपालन एवं मत्स्य पालन। आवेदन भेजे जा सकते हैं इस पते पर अनुभाग अधिकारी, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, 8वीं मंजिल, प्लांट अथॉरिटी भवन, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा, नई दिल्ली 110012। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.nraa.gov.in। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, भारत सरकार इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। अनुसंधान एसोसिएट, कुल पदों की संख्या 3, कनिष्ठ अनुसंधान फेलो, पदों की संख्या 3। आयु, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन पत्र और अन्य नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखिए NDTL की वेबसाइट। वेबसाइट का पता है ndtlindia.com। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
0: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे याद कुछ ऐसी हस्तियों को है जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि। दोस्तों, परिक्रमा के इस अंक के साथ आज हूं मैं मुनीष शर्मा और हमारे साथ हैं शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
3: नमस्कार मुनीष, एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी, वेल अ वेरी वार्म वेलकम। दिस इज परिक्रमा ऑन 100.1 FM विद मी शगुन चोपड़ा एंड मुनीष। टुडे वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वेरी थ्रिल्ड बिकॉज टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। वेल यू नो, if you know more about it in a few moments from now, we'll begin with it. And well, we have first a selection of news and

0: Munish, already told you reports, capsules, tributes. So without any further delay, well, let's just get started with the headlines.
1: सबसे पहले मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 साल से सरकार की नीतियों का आधार रहा है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया है.
0: इसराइल एंड ईरान ट्रेड फ्रेश मिसाइल अटैक्स ऑन ईच अदर एस्केलेटिंग वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट.
1: और लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं.
0: एंड इन टेस्ट क्रिकेट इंडिया रजिस्टर्स बिगेस्ट एवर विक्ट्री डिफीट्स अफगानिस्तान बाय एन इनिंग्स एंड 300 रन्स ऑन थर्ड डे ऑफ द वन ऑफ टेस्ट इन न्यू चंडीगढ़. Well, this is our discussion segment, Dateline India, and today it's all about us celebrating 90 years of legacy of Akashwani.

0: Today, it's a truly, truly special day in the history of Indian broadcasting.
1: जी हाँ, आज 8 जून को आकाशवाणी के 90 शानदार साल पूरे हो रहे हैं. आकाशवाणी एक ऐसा नाम जिसने भारतीयों की कई पीढ़ियों को जानकारी दी, शिक्षित किया,

0: रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: इन आँखों के मस्ती मस्ताने हजारों हैं।
2: मैं हूँ मुजफ्फर अली और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

बादशाह और बादशाह बादशाह, क्या जबरदस्त गाना आपने सुना अभी रेडियो सेट पर अपने 100.7 एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं। मेरे साथ मैं हूं शदाब। 4:38 टाइम मिला लीजिए और बात चल रही यूथ वेव में। कुछ हमारे यूथ जो आजकल सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उसे ही क्यों ना कमाई के जरिया बना लिया जाए और उसी से कमाई की जाए। तो मैंने आपको बताया कि भाई कैसे आप किन किन लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं और उनके सोशल मीडिया हैंडल्स या उनकी जो भी फेसबुक पेजेस हैं उनको अपडेट कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको कितना पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जब आप इन्वेस्ट कर लें उसके बाद आप कर सकते हैं ना। मतलब आप पहले अपने सेटअप को लगाएंगे, फिर उसके बाद ही ना उनका काम करेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना भाई। देखिए, किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छा लैपटॉप है, ठीक ठाक लैपटॉप है, बहुत पुराना है तो फिर नहीं, एक ठीक ठाक लैपटॉप आपको ख़रीदना है। एटलीस्ट 20,000 अबव ही आएगा वो। और उसके अलावा आपको इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए, एक आपका पर्सनल रूम चाहिए जहाँ पर आप इस सेटअप को लगाएं, ठीक है ना। उस सेटअप को लगाने के बाद, वहाँ पर इंटरनेट लगाने के बाद अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए, लाइक ऐसा ना हो लाइट चली जाए तो सब बैठ जाए। उसके अलावा आप सारे ऐप्स डाउनलोड कीजिए, सारे अच्छे अच्छे ऐप्स बहुत आते हैं तो वो अच्छे लैपटॉप में ही डाउनलोड हो पाते हैं, तो आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद सबकी आईडीज लेकर के, जैसे आपने अपने 10 क्लाइंट बनाए और 10 क्लाइंट के अलग अलग पेजेस हैं, उन पेजेस पे आपने उनके बारे में लिखना है, उनके पिक्चर्स उनके वीडियोस अपलोड करना है उनके नाम से, ताकि उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं या और जो मिलने वाले फॉलोअर्स हैं उन तक उनकी बात पहुँच सके। शुरुआत में लगेगा कि थोड़ा यार मुश्किल है, उनको भी लगेगा कि यार पता नहीं वर्क करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन इनिशियल जब हो जाएगी शुरुआत और उसके बाद धीरे धीरे करके लोगों तक जब बात पहुंचेगी और एक रील से या एक पोस्ट से कम एक दो लोग भी पहुंच गए उनकी शॉप पे, तो उनका वो 1,000 रुपये जो मैंने शुरुआत में बताया ना कि अगर आपने उनसे 1,000 रुपये लिए हैं महीने भर के, वो भी पोस्ट डालने के लिए, जो बहुत नॉमिनल फीस है, मतलब कोई भी दे देगा कि यार 1,000 रुपये अगर हम दे रहे हैं, हमारी जो सोशल मीडिया की पेज है या जगह है जो भी, उसे अपडेट करने के लिए, अप टू डेट करने के लिए, तो कोई भी दे देगा। तो उस काम को आप पहले छोटे लेवल पे शुरू करिए, लोगों को पकड़िए जो पब्लिक फिगर हैं उनको पकड़िए, उनसे लीजिए, उनके सोशल मीडिया हैंडल कीजिए। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो आप बड़े बड़े लोगों के पास जाइए, उनके सोशल मीडिया हैंडल कीजिए, उनकी फ़ीस और ज़्यादा आपको मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छा बिज़नेस है। काफ़ी मेरे जानने वाले लोग हैं जो अब इस बिज़नेस में आ चुके हैं बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है ना। आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, जो बड़े पब्लिक फिगर लोग हैं या बड़े लोग हैं जो लगातार अपने काम को कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने सोशल मीडिया को चलाएं या उस पर हर तरह की अपडेट बराबर डालते रहें, ऐसा उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो ज़रूरी नहीं। तो आप उनका काम कर दें, ठीक रहेगा, ठीक है ना। अब आगे कमाई की भी बात कर लेंगे। मैं आपको एक छोटे स्केल से मैंने बताई, लेकिन अभी इसको कितने बड़े बड़े फ़ायदे हैं और कितने बड़े लेवल पे आप इसको ले जा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बस

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जब प्रधानमंत्री जी ने कहा,
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

जी हाँ बिल्कुल, एक बार फिर से स्वागत है अभिनंदन आपका। 4:48 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में, यूथ वेव चल रहा है प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में मैं यूथ से रिलेटेड आपको बता रहा हूँ कि भैया कैसे सोशल मीडिया पर कैसे किन किन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं और कैसे पैसा कमा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि भैया आप अपने क्लाइंट्स बना लीजिए और उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को हैंडल कीजिए, और आपको पता है मैंने एक छोटा सा अमाउंट बताया था मान लेने के लिए कि 1,000 रुपये आप ले रहे हैं, लेकिन इसमें कम से कम अगर आप 5,000 रुपये लेते हैं और आप महीने के 10 लोग एटलीस्ट जोड़ लेते हैं या 15 लोग, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने हज़ारों की मंथली इनकम आपकी हो जाएगी, और ये इनकम मल्टीपल टाइम बढ़ जाती है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा क्लाइंट अपने बना लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है, यानी आप जितना अच्छा आप ट्रस्ट बिल्डअप कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रस्ट बिल्डअप करना, जी हाँ, आप उनके काम को कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, उनको बिलीव करवाना तो ये ज़रूरी है। और इसके अलावा यस और क्या चीज़ है, आपको अपने बारे में भी लोगों को बताना होगा कि आप कितने एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपने करनी करनी है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगला गाना सुनिए और फिर मिलते हैं हम वापस।

0: अब इतना रिक्वेस्ट कर रहे तो कहाँ जाएंगे भाई, अभी तो इस प्रोग्राम से अगले प्रोग्राम में ही जाएंगे, यही होगा बस, ज्यादा कुछ नहीं होगा। 4:55 हो चुके हैं स्टूडियो की क्लॉक में और मैं हूँ शादाब आप सभी के साथ। प्रोग्राम यूथ वेव को वाइंड अप करने का टाइम आ चुका है। मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, उसके लिए आपने बस एक लैपटॉप और अपने इंटरनेट के साथ लोगों के से जुड़ाव करने की शुरुआत करनी है। उसके लिए आपको थोड़ा सा छोटा सा काम करना ही पड़ेगा। पहले तो 2-3 छोटे मोटे आपको प्रोजेक्ट उठाने होंगे लोगों के, फ्री ऑफ कॉस्ट या कम बजट पे आपने प्रमोशन देना होगा, फिर अपने काम को लोगों तक पहुंचाना होगा। उसके लिए आप अपना पेज बना लीजिए, अपने एक डिजिटल आईडी बना लीजिए, जैसे मेरा नाम शादाब है तो मैंने शादाब डिजिटल मीडिया या लखनऊ का नवाब डिजिटल मीडिया, ऐसे करके कई आप कुछ भी यूनिक नाम रख लीजिए, आरजे शादाब, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बताया कि आप ऐसे रख लीजिए। उसके बाद अपने पेज को लोगों तक पहुंचाइए, उनसे बोलिए कि आप हमारे डिजिटल मीडिया काउंटर से जुड़िए, प्लेटफॉर्म से जुड़िए, हम आपके जो भी बिजनेस है या जो भी काम कर रहे हैं आप, उसको हम लगातार प्रमोट करेंगे। लगातार इज इम्पोर्टेंट, लगातार होना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। फिलहाल एक एड ब्रेक के बाद उसके बाद गाने मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, बस बिना देर किए, ठीक है, कहीं जाइएगा, स्टे ट्यून्ड।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़

0: क्लर्क्स बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। सुनिए FM समाचार। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को योजना के अंतर्गत मिलने वाली 9 मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी जाएगी। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आज पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों के समग्र विकास से जुड़ी सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा से पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, स्वच्छता व्यवस्था और सुदृढ़ बनाने तथा डिजिटल सुविधाओं का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा आज लखनऊ के विभिन्न केंद्रों पर शुरू हुई। जिलाधिकारी विशाख जी और संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी विशाख जी ने बताया कि लखनऊ में परीक्षा 2 पालियों में हो रही है। प्रत्येक पाली में 22,500 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। 3 दिनों में 1,35,000 से अधिक लोग परीक्षा देंगे। परीक्षार्थियों की सुविधा को देखते हुए चारबाग रेलवे स्टेशन, कैसरबाग बस अड्डा और आलमबाग बस

अड्डे से परीक्षा केंद्रों तक कनेक्टिंग परिवहन उपलब्ध कराया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खन्नुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि ईंधन का निर्बाध आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा, संस्कार, सुशासन और सम्मान पखवाड़े के तहत कानपुर देहात में प्रतिबद्ध वर्ग संवाद कार्यशाला में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला शामिल हुई। उन्होंने केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जी हाँ बिल्कुल, कहा ना प्यार है कहो ना प्यार है, यही एक मूवी थी जिसने ऋतिक रोशन को ऋतिक रोशन बना दिया। जी हाँ नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब, 5:09 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में, और एक बार फिर शादाब आप सभी के सामने हाजिर है प्रोग्राम लेकर टॉप 10। और ये जो टॉप 10 है, ये अगले 10 गाने जो आप सुनने वाले हैं अपने रेडियो पर, इन गानों के पीछे क्या स्टोरी रही है सीरियसली बताऊं यार। ऋतिक रोशन ने जब डेब्यू किया ना, तो यही एक मूवी थी जिसने ऋतिक रोशन को लोगों के दिलों में दिमाग में बसा दिया था, रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। और यकीन जानिए ये जो फिल्म है कहो ना प्यार, इस फिल्म ने और कई अवार्ड जीते थे, और साथ ही साथ इस फिल्म का जो म्यूजिक था वो सबसे ज्यादा चर्चित रहा था। और एक चीज और अगर आपको यह याद दिलाऊं, जो सबसे ज्यादा चर्चित रही थी या यूं कहें कि सबसे ज्यादा लोग अपना रहे थे, वो थे इस जो गाने हैं, इस गानों में जो डांस स्टेप यूज हुए थे, याद है ना कौन है प्यार का डांस स्टेप, यस वो गाना जैसे ही बजेगा वो आपको याद आ जाएगा। फिलहाल अगले गाने की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक एड ब्रेक, एड ब्रेक के बाद चलेंगे अगले गाने की ओर, और अगले गाने के में भी बताएंगे कि आखिर क्या खास बात थी और क्यों ये गाना हुआ था इतना फेमस। ओके,
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
4: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई।

फिल्म से ये गाना आपने सुना, ओनली 100.7 एफएम रेनबो पर। और ये फिल्म आपको पता है इन दोनों के लिए डेब्यू फिल्म थी, और कुछ लोगों के लिए डेब्यू फिल्म बहुत यूनिक और बहुत लकी रहती है, जैसे कि इससे पहले वाले ऋतिक रोशन थे, उनकी डेब्यू फिल्म उनके लिए लकी रही और वहीं से उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, और कुछ लोगों के लिए शायद उतनी लकी नहीं होती है। तो आपको जैसे पता है इस फिल्म में दो लोगों ने डेब्यू किया था, वो थे अभिषेक बच्चन और करीना कपूर, इन दोनों ने डेब्यू किया था इस फिल्म से, और काफ़ी अच्छी फिल्म थी और इसके गाने भी काफ़ी हिट हुए थे उस वक्त, लोगों ने बहुत पसंद किए। उसके बाद एक्टिंग में थोड़ा सा लोगों को मलाल था कि हाँ शायद कुछ और एक्टिंग अच्छी हो सकती थी। फिलहाल अभिषेक बच्चन की एक्टिंग आपने हर जगह देखी है, लगभग सिमिलर ठीक ही रहती है। खैर बात करेंगे हम अगले हमारे तीसरे गाने की ओर चलेंगे बिना देर के, अगला गाना आप सभी के लिए आपके रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं और इससे जुड़ी हुई और बातें आप तक जरूर पहुंचाएंगे।

कुछ मूवीज होती हैं जो मूवीज कह सकते हैं कि अपनी गानों की वजह से सबसे ज्यादा हिट होती हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप यकीन जानिए उनमें से ये एक मूवी थे। धड़कन मूवी का ये गाना सुना, ये गाना और इसके अलावा धड़कन मूवी के और भी गाने इतने पसंद किए गए थे कि भाई उसके अलावा मतलब उसके सामने स्टोरी और एक्टिंग और ये सारी चीज़ें फीकी पड़ गई थी। मतलब लोग पसंद तो कर रहे थे लेकिन सबसे ज़्यादा गानों को पसंद कर रहे थे, और ऐसे एक नहीं कई फिल्मों के साथ होता है। और मोस्टली आपने ये देखा होगा इमरान हाशमी की जो फिल्में होती हैं उनके साथ, क्योंकि इमरान हाशमी की जितनी मूवीज़ होती हैं ना उनमें गाने बहुत सॉलिड होते हैं, गाने बहुत पसंद आते हैं, एक्टिंग और स्टोरी बाद में दर्शक देखते हैं। फिलहाल अगले गाने की ओर चलते हैं, चौथा गाना आ सभी रेडियो सेट्स पर।

जी हाँ बिल्कुल, आपको याद है ये मूवी? ये मूवी जब आई थी तो कमाल कर गई थी यार। यकीन जानिए शाहरुख खान और उनके साथ जो तीन सपोर्टिंग एक्टर्स थे, इन्होंने एक अलग पहचान बना ली थी मोहब्बतें मूवी से। और मुझे तो वो याद है जब शाहरुख खान वो वायलिन बजाते हैं और एक ख़ास तरह की उन्होंने डिज़ाइन पैंट पहन रखी थी, और वो तब से इतनी क्रेज़ में आ गई थी कि मेरे कज़िन्स और मेरे कई लोग ऐसे थे जिन्होंने वो पैंट बिल्कुल उसी अंदाज से सिलवाने की बहुत कोशिशें की, और कोशिश क्या कोशिश उनकी कामयाब भी हुई थी, उन्होंने सिलवाई भी थी। तो एक ट्रेंड सा बन गया था, और उस वक्त मोहब्बत मूवी के गाने हों हर लगभग शादियों में बजते थे, हर जगह वो गाने आपको ज़रूर सुनाई देते थे। फिलहाल ऐसी कई मूवी 2000 और 2001 में आई हैं। फिलहाल अगले गाने की ओर चलते हैं और अगला गाना देखते हैं कौन सा है। यस, ये रहा अगला गाना आप सभी के लिए।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
5: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
4: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
5: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
6: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
7: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं धड़कन लखनऊ की। 5:31 हो चुका है और

गाने में कुछ ना कुछ स्टोरी जरूर छुपी हुई है. और जो भी आपने हाल ही में गाना सुना सूरज जो मध्यम, इसके बारे में मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसकी जो शूटिंग है ना उसका एक बड़ा हिस्सा इजिप्ट में मिस्र में शूट हुआ था, पिरामिडों के पास हुआ था. आपने इन गानों में देखा होगा बड़े बड़े पिरामिड्स हैं. सो बॉलीवुड में एक नया दौर लाया गया था कि कई ऐसे उस वक्त के दौर में कई ऐसे जगहों को तलाशा जा रहा था जो बिल्कुल ऐसी थी कि शायद वहाँ अभी तक कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं पहुँचे हैं, लोकेशंस के लिए नहीं पहुँचे हैं. तो उनमें से एक थी ये फिल्म जिसमें मिस्र को दिखाया गया और उसके इजिप्ट के जो पिरामिड हैं वो दिखाए गए. और इसके लिए उनको ना बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े थे. कह सकते हैं कि ना बॉलीवुड को के लिए वो एक भव्य प्रोडक्शन था, बहुत बड़ा टास्क था उस वक्त ये करने के लिए. फिलहाल शाहरुख के साथ उस वक्त लाइन से चल रहे थे सलमान और आमिर. तो एक और जो मूवी है उसके गाने को पहले सुनते हैं, फिर उसके बाद मैं बात करूँगा इनके बारे में भी.

जी हाँ बिल्कुल आ जा रहे आ गया 5:38 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में और ये मूवी थी लगान। और मुझे लगता है कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा जिसने लगान मूवी ना देखी हो। और उसमें जब लगान में अंग्रेज़ों से जो मैच होता है कमाल था यार, और वो कॉन्सेप्ट वो स्टोरी जो फिल्माई गई है वो कमाल थी। और बहुत अच्छे से इस मूवी को सभी ने एंजॉय किया। और ख़ास बात इस मूवी की ये थी कि ये मूवी ऑस्कर में गई थी ऑलरेडी, तो ये बड़ी आधिकारिक एंट्री हुई थी ऑस्कर में इस मूवी के लिए। खैर ये अलग बात है कि लगान मूवी अंग्रेज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी क्योंकि वो मैच हार गए थे। फिलहाल अगले गाने की ओर चलते हैं और ये भी एक आइकॉनिक मूवी थी। इस गाने को ज़रूर सुनिए, फिर बात करेंगे इस मूवी के बारे में।

ऑलराइट, सो आपने इस गाने को सुना और ये गाना आइकॉनिक मूवी का था. ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार ये मूवी ना कमाल थी. और ये जब मूवी आई तो मतलब एकदम देश से जुड़ी हुई जो खून खोलता है ना, वो हमारा खोल गया था क्योंकि बगल वाला जो देश है उसके खिलाफ हम लोग खड़ा हो गया था. सो ये मूवी कदर ऊर्जा का लिखा हुआ ये उस फिल्म का ये गाना. और इस मूवी की स्टोरी बड़ी ही कमाल थी. आइकॉनिक मूवी जितनी भी थी उस वक्त जो 2000-2001 में आई हैं, वो यकीन जानिए एकदम दिल को उतर गई हैं. और अभी भी मुझसे या आपसे कोई भी गाने के बारे में पूछे, अगर ये गाना बजे और आपसे पूछे कि किस फिल्म का गाना है, आप मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगाएंगे और ये बता देंगे ये फिल्म गदर का है. तो आप सोचिए कि क्या फिल्म और क्या गाने थे जो एकदम दिल को घर कर गए हैं, एकदम उतर गए हैं, दिमाग में बस गए हैं. और ऐसे एक नहीं कई गाने हैं आइकॉनिक मूवी के. आजकल के गाने आप सुनेंगे, वैसे सारे गाने अच्छे होते हैं, लेकिन मूवी बता पाना बड़ा मुश्किल है. लेकिन अगर आप उन गानों की बात करें जिन्होंने आपका दिल और दिमाग अपने बस में कर लिया था, उनके बारे में तो आप बिल्कुल बता पाएंगे. वैसे ही कुछ अगला भी गाना है, देखिएगा सुनिए. और आपको पक्का मैं बता रहा हूँ, ये म्यूजिक जैसे ही आप इनकी सुनेंगे वैसे आपको ध्यान में आ जाएगा कि कौन से फिल्म का गाना है.

0: मैंने आपसे बोला था यकीन हुआ ना, जैसे ही म्यूजिक बजी थी आपने पहचान लिया था गाना किस फिल्म का है, रहना है तेरे दिल में। और इकलौते एक्टर जो जहन में आपके तुरंत आए होंगे वो हैं आर माधवन। सो आर माधवन की वैसे तो डेब्यू फिल्म ये नहीं थी, क्योंकि ये साउथ के एक्टर थे और उधर से पहले ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुके थे, लेकिन फिलहाल इन्होंने इधर जब बॉलीवुड में अपना कदम रखा ना, तो ये फिल्म इनके लिए कमाल साबित हुई। और उसके बाद से मुझे लगता है ज़्यादातर बॉलीवुड की फिल्में जो काम आई, मतलब बॉलीवुड में या पूरे इंडिया में पहचान बनाने में, वो बॉलीवुड की मूवी काम आई हैं आर माधवन के। अगले जो एक्टर हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने भी इस मूवी से डेब्यू किया था। वैसे पहचान पाना मुश्किल है कि वो कौन से एक्टर हैं, क्योंकि आप शायद वो इंडस्ट्री में बहुत कम दिखते हैं, लेकिन ये उनकी डेब्यू मूवी थी जो अगला गाना आएगा। लेकिन उस गाने से पहले एक छोटा सा एडब्रेक, एडब्रेक के बाद वापस उस गाने पर चलेंगे।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

जी हाँ, इतना कुछ इनको कहना था और इन्होंने कह भी दिया, मुझे भी कुछ कहना है। 5:53 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में। केके की आवाज़ में आपने ये गाना सुना और इस गाने में थे तुषार कपूर और करीना कपूर। तो तुषार कपूर को जो भी कहना था उन्होंने इस फिल्म से कहना शुरू किया था। वैसे इनकी जो फिल्म हिट हुई थी उसमें इन्होंने कुछ नहीं कहा था, मतलब इन्होंने जो बिना लिपसिंग वाला काम किया था ना, वाली फिल्म इनकी हिट हुई थी। इन फिल्मों में इनका जादू नहीं चल पाया था और फिलहाल आजकल तो वैसे गायब हो चुके हैं तुषार कपूर, बिल्कुल फिल्मों से दूरी बना चुके हैं। ये इनकी डेब्यू फिल्म थी मुझे कुछ कहना है, और मुझे लगता मुझे अब बहुत कुछ नहीं कहना है। प्रोग्राम को मैं वाइंड अप करता हूँ यहीं पर। एक और गाना जो आप सभी का बहुत फेवरेट है और उस वक्त जो लोग बहुत मतलब कह सकते हैं ना प्यार में थे, बहुत ज़्यादा किसी को प्यार करते थे और उनका दिल टूट गया था, तो उसके बाद सिर्फ एक ही गाना उनको सुनाई देता था और वो था ये गाना, इस फिल्म का गाना। सो ये 10वां गाना आप सभी के रेडियो सेट्स पर, और ये गाना जिस फिल्म का था ना, वो फिल्म जितनी प्यारी थी उसके गाने उतने ही प्यारे थे, यकीन जानिए। आप इस फिल्म को ज़रूर आपने देखा होगा, ये गाना ज़रूर सुना होगा। चले मैं मिलता हूँ आपसे शाम आवाज में, कहीं जाइएगा, स्टे ट्यून्ड विद 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की, मैं हूँ शादाब।

जो एक बार वापस मैं आप सभी के साथ वापस जुड़ा हूँ, क्योंकि ये फिल्म का नाम बताना बहुत जरूरी था। वैसे नाम मुझे लगता है ध्यान आ गया होगा। ये फिल्म थी तुम बिन, और तुम बिन का ये गाना जो आप सभी ने सुना, और इसके जितने भी गाने आप सुनेंगे यकीन जानिए वो गाने आपको बेहद पसंद आएंगे। आए थे कि नहीं आए थे, और अगर आपके साथ कुछ ऊपर नीचे हो गया था प्यार में, तो ऑब्वियसली मतलब ये गाने तो आपके फेवरेट थे उस वक्त, है ना, थे ना। तो चलिए इन गानों के साथ आगे बढ़ते हैं एक बार फिर, ठीक है ना।

नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। आप सुनिए FM समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में जो कार्य किए गए हैं उसके परिणाम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना से उत्तर प्रदेश को विशेष लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने आज केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बटन दबाकर क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसे लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम की पूर्व जानकारी किसानों की आमदनी बढ़ाने और आकाशीय बिजली, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और ओलावृष्टि के कारण होने वाली जनधन की हानि को रोकने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिर्ज़ापुर के पहाड़ी ब्लॉक के दूबेपुर बसारी ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत बने मिनी स्टेडियम का केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी शहरों जैसी खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है ताकि गांवों की प्रतिभाएं निखर कर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि खेल शारीरिक और मानसिक विकास के साथ अनुशासन और नेतृत्व क्षमता को भी मजबूत बनाते हैं। गौतम बुद्ध नगर में आज यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 90वीं बैठक बोर्ड बैठक अध्यक्ष और एवं अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विकास परियोजनाओं, औद्योगिक निवेश, किसानों को 7% आबादी, भूखंड आवंटन और आधारभूत संरचनाओं के रखरखाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बोर्ड ने सड़कों, सीवर, बिजली, पेयजल और पार्कों जैसी आधारभूत सुविधाओं के दीर्घकालिक रखरखाव के लिए एक कॉपर्स फंड बनाने का भी निर्णय लिया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। आकाशवाणी रामपुर ने आज इस अवसर पर आकाशवाणी वॉकाथॉन 2026 का आयोजन किया। सीआरपीएफ रामपुर के डीआईजी पूर्ण सिंह धर्मशक्तु और आकाशवाणी रामपुर की पूर्व सहायक केंद्र निदेशक

मनदीप कौर ने हरी झंडी दिखाकर इस पैदल मार्च को रवाना किया। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में मौसम शुष्क रहने जबकि 10 जून से 14 जून तक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान भी जताया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा।

भाई देखो कई हद तक बात तो सही है, हम हैं नए तो अंदाज क्यों हो पुराना। लेकिन कई बार ये होता है कि यार अंदाज पुराना जो है वो बहुत पसंद आ जाता है और वापस वो जो फैशन है वो सारी चीज़ें वो रिबाउंड होती हैं, वो वापस आती आती हैं। 6:09 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में, मैं हूँ शादाब आप सभी के साथ, नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। प्रोग्राम शुरुआत हो चुकी है, वो है शाम अवध। अवध की शाम ढलने लगी है, गर्म है थोड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है अवध की शाम। आजकल तो खुशनुमा मौसम भी नहीं कह सकते। तो जो लोग अलग अलग शहरों से सुन रहे हैं, किसी अलग स्टेट से सुन रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो राजस्थान हो, या किसी भी स्टेट से सुन रहे हैं जहाँ पर अच्छा मौसम है, थोड़ा इधर भेजो ना क्योंकि इधर गर्मी बहुत ज़्यादा है और उम्मीद है कि ये गर्मी जल्दी से जल्दी जाएगी और मौसम नरम पड़ेगा तो कुछ हम लोगों को भी मज़ा आएगा बाहर निकलने में, घूमने में। तो आज क्या क्या होगा, मतलब गर्मी आएगी जाएगी बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें बात करेंगे क्योंकि हमारे नॉर्थ में या हमारे अवध में क्या होने वाला है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट कि भाई जो इम्तिहान चल रहा है, यस एग्ज़ाम, जो पुलिस का, यूपी पुलिस के सिपाहियों की जो भर्ती के लिए एग्ज़ाम चल रहा है, उसके लिए शहर में बहुत ढेर सारे परीक्षार्थी आए हुए हैं। ये दो पाली में चल रहा है, सुबह 10 से 12 और 3 से 5। सो 3 से 5 वाले फ्री हुए होंगे बिल्कुल, तो ट्रैफिक में आने जाने में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, हम हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब से बात करेंगे और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। सारी चीज़ें बतानी हैं हमको इस घंटे, ठीक है ना। तो कहीं जाइएगा बाद आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल एक गाना एंजॉय कीजिए, उसके बाद वापस मिलते हैं। स्टेडियम विद 100.7 FM रेनबो।

0: जी हाँ, 6:15 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में। मैं हूँ शादाब, आप सभी के साथ प्रोग्राम चल रहा है शाम अवध, और एक के बाद एक गाने आप सभी तक पहुँचेंगे, और इसके बाद तो आपका फेवरेट प्रोग्राम। यस, हमारा भी उतना ही फेवरेट है जितना आपका है, क्योंकि आपके मनपसंद गाने बजते हैं उसमें। यहाँ तो मेरे मनपसंद बज रहे हैं, ठीक है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो बात कर लेंगे भाई कौन से लोगों की। हाँ, हमारे जितने भी लोग इम्तिहान देने हमारे शहर आए हुए हैं उनके लिए ख़ास चीज़ है जो हमारे सारे जितने भी परीक्षार्थी हैं उनके लिए लागू हुई है और यूपी गवर्नमेंट की ओर से, कि भाई जितने भी अभ्यर्थी हमारे या किसी भी शहर जाएंगे उनको बस में किराया आधा देना है। जी हाँ, 50% छूट आपको दी गई है अगले 3 दिनों के लिए। तो अगले 3 दिन अगर आप सफ़र करते हैं और अगर आप परीक्षा देने आए हैं किसी भी शहर आप जा रहे हैं, चाहे वो लखनऊ हो या कहीं और भी अगर आप जा रहे हैं, तो आपको अपना एडमिट कार्ड सिर्फ बस में दिखाना है, और वो जो टिकट होगा आपका जहाँ से आप चढ़े हैं वहाँ से लेके आपके शहर तक का, वो आपको 50% ऑफ में मिलेगा। क्या बात है, क्या फ़ायदेमंद बात हुई है भाई। तो अगर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, लगभग 9.64 लाख अभ्यर्थी पहले दिन देंगे परीक्षा, ठीक है ना? तो ये पहले दिन की आज की परीक्षा थी, फिर कल भी है और परसों भी है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आम नागरिकों को भी बोलना चाहूँगा, क्योंकि अभी 6 बज रहा है, जब इतने सारे परीक्षार्थी जो शहर आए हुए हैं वो छूटेंगे तो कई जगहों पर बहुत भीड़ होगी, मतलब जैसे बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन। तो अगर आप आगे पीछे करके निकलेंगे, अगर आपको बहुत ज़रूरी ना हो तो इस वक्त ना निकलें, तो थोड़ी भीड़ कम भी हो सकती है, थोड़ा आसपास जा करके सफ़र कर लीजिए, ठीक है ना? चलेगा। तो चलिए एक और गाना, और इसके बाद बताएंगे कि भाई और क्या क्या चीज़ें हो रही शहर में, कहीं जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। उससे पहले एक छोटा सा एड ब्रेक के बाद गाना सुनते हैं।
1: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
2: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
1: पाए पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी

जी हाँ, शाम यह प्रोग्राम चल रहा है। मैं हूँ शहदाब आप सभी के साथ। और एक और जो खबर है वो है हमारे CBSE के बच्चों के लिए। हाँ, वैसे तो खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर आप चाह रहे थे कि जो वेरिफिकेशन और री इवेल्यूएशन की जो तारीख थी वो थी 6 जून लास्ट तक, ठीक है ना। तो कुछ बच्चों का कहना था कि भाई हमारे जो भी सबमिशन है वो तकनीकी समस्याओं के कारण, यानी कुछ प्रॉब्लम आ जाने की वजह से हम सबमिट नहीं कर पाए, तो 6 जून जो लास्ट डेट थी वो निकल गई थी। तो CBSE बोर्ड ने ये डिसाइड किया था कि हम एक दिन और बढ़ाएंगे, तो उन्होंने 6 की बजाय 7 जून तक उन्होंने ये मौका दिया था कि भाई जिनको भी वेरिफिकेशन और री एवेल्युएशन करवाना है वो करवा लें। तो अभी बच्चों ने एक और मौका सोचा कि अगर एक दिन और बढ़ जाएगा तो हम और लोग ये कर लेंगे कि हम सबमिट कर देंगे उस फॉर्म कि हमें रिवैल्यूएशन करवाना है और वेरिफिकेशन करवाना है। तो CBSE ने साफ इनकार कर दिया है कि अब कोई तारीख नहीं बढ़ेगी, यानी 7 से 8 जून नहीं होगी। सो फिलहाल कल लास्ट डेट थी, जिन्होंने भी री इवेल्युएशन और वेरिफिकेशन के लिए सबमिट कर दिया अपना फॉर्म और अप्लाई कर दिया है, उनकी कॉपियां हो जाएंगी। बाकी जिन्होंने नहीं किया है या किसी तकनीकी वजह से नहीं हो पाया है उनका सबमिशन उनके फॉर्म का, तो माफ़ी चाहेंगे, अब नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि अब वेरिफिकेशन और री इवेल्युएशन की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी, ऐसा बोला है CBSE बोर्ड ने। तो ये छात्रों के लिए थोड़ी निराशाजनक खबर है, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ पर आशा है वहीं थोड़ी सी निराशा आएगी। अगर आपने एग्ज़ाम अच्छे किए हैं तो ऑब्वियसली आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, नहीं तो री एवेल्युएशन और वेरिफिकेशन की वैसे ज़रूरत होती नहीं, लेकिन है तो फिर ज़रूर करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मौका भी दिया है बोर्ड ने। फिलहाल अगला गाना आप सभी के लिए रेडियो सेट्स पर।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ बिल्कुल, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो। 6:40 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में। घड़ी मिला लीजिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई आपको अगर कहीं जाना है, कहीं आना है, तो प्लीज़ कहीं लेट मत होइएगा। और जाने आने की मैंने बात की है तो भाई प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3 से 5 आज एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम सिपाही भर्ती के लिए था। तो बहुत ढेर सारे परीक्षार्थी निकले हुए हैं अपने एग्ज़ाम को ख़त्म करके, तो 1-2 घंटा तो लगेगा, मतलब भाई तुरंत तो नहीं निकल जाएंगे शहर से। तो अगर अपने वापस जगह पर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो कुछ स्थानों पर भीड़ काफ़ी हो सकती है, जैसे कि बस अड्डे, रेलवे स्टेशन। अगर आप उस रास्ते से निकल रहे हैं तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। अगर आप उस जगह से कोई बस या ट्रेन लेना चाहते हैं तो अगर थोड़ा सा टाइम लेकर के जाएंगे, अगर आपकी टाइम उसी टाइम पर ट्रेन या बस नहीं है तो आप बच जाएंगे काफ़ी चीज़ों से, यानी काफ़ी जाम से बच जाएंगे, ठीक है ना। जाम वैसे शहर में आपको पता है किन किन मुख्य चौराहों पर लगता है, मुझे नाम लेने की ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि आपको अवॉइड करना है। मोस्टली लोग अवॉइड कर भी देते हैं उन चौराहों को, जैसे वो कमता चौराहा है, बिल्कुल अवॉइड करते हैं, जिनको नहीं जाना वो उस चौराहे से शहीद पथ बिल्कुल नहीं जाते हैं। और नहरिया चौराहा जिस पर भी जाम लगता है काफ़ी, तो डाइवर्जन्स हैं काफ़ी जगहों पर, स्मूथ ट्रैफिक चलता है, वो पूरी जिम्मेदारी हमारी भी होती है। और कई बार जो सर्कल बना दिए जाते हैं राउंड करके घूम के आने में, कई लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आते, कई लोगों को बहुत पसंद आते हैं मेरे जैसे लोगों को तो बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी दूरी जा करके वापस आ जाना उतना बुरा नहीं लगता है जितना सिग्नल पे 15 मिनट या एटलीस्ट 10 मिनट तो खड़े रहना पड़ता है। क्योंकि अगर बड़े सिग्नल्स की बात करें तो आपको खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है। बड़े बड़े चौराहों पर जो डाइवर्जन्स किए गए हैं वो बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, कि मेरा टाइम बच जाता है अगर मैं उन जगहों से निकलता हूँ। मेरी गाड़ी मूविंग रहती है, आप ये ध्यान देते हो कि आपकी गाड़ी चलती रहती है, खड़ी नहीं होती है, तो उसका फ़ायदा है आपको, चलते हुए कम टाइम में आप दूसरी जगह पहुँच जाएंगे। चलिए एक गाने के बाद वापस आएंगे, बताएंगे आपको कि भाई कहाँ कहाँ पर जो परीक्षाएं हैं, आपने फॉर्म डाले थे तो उनकी परीक्षाएं कब कब होने वाली हैं और कहाँ पर आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो ये चीज़ें आपको बता देंगे। कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। ये लीजिए एक और गाना आप सभी के लिए आपके रेडियो सेट्स पर।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और

0: मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ.
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा.
2: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit samriddh Bharat. Join Indian Navy.
3: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की.
4: जी हाँ बिल्कुल, आप सुन रहे हैं धड़कन लखनऊ की 100.7 FM रेनबो. प्रोग्राम चल रहा है शाम अवध और मैंने बहुत ढेर सारी आपको जानकारियाँ दी. मुझे उम्मीद है कि आपके वो काम आई होंगी, लेकिन कुछ ऐसी जानकारियाँ जो आपके काम बेशक आ सकती हैं उन लोगों के जो इससे जुड़े हुए हैं. जैसे अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय से कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं तो कई कोर्सों की परीक्षाओं का जो समय है वो जारी कर दिया गया है. पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग के दूसरे समय

रहा है। मैंने बहुत ढेर सारी आपको जानकारियां दी, मुझे उम्मीद है कि आपके वो काम आई होंगी, लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां जो आपके काम बेशक आ सकती हैं उन लोगों के जो इससे जुड़े हुए हैं। जैसे अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय से कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं तो कई कोर्सों की परीक्षाओं का जो समय है वो जारी कर दिया गया है। पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग के दूसरे सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो 16 से 20 जून तक होंगी। वहीं एमए ए ड्राइंग और पेंटिंग के दूसरे सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो 16 से 20 जून और चौथे सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो 17 से 19 जून को होंगी। अगर आपने शिक्षक भर्ती का जो फॉर्म है वो फिल किया हुआ है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय का ललित कला विषय के लिए सहायक प्रोफेसर के पदों की, तो उसके लिए जो लिखित परीक्षा है वो 17 जून को तय की गई है और ये दोपहर 3 से शाम 4 बजे तक ही रहेगी। ठीक है, सो आप प्लीज़ जो भी लोग अभ्यर्थी हैं उसके वो जाएंगे, और इसका जो प्रवेश पत्र है वो 12 जून से आप वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक और गाना आप सभी के लिए रेडियो सेट्स पर लाते हैं और फिर और एक और न्यूज़ आपको बताते हैं। स्टे ट्यून्ड।

ये यकीन जानिए इनकी आवाज बेहद खूबसूरत है, ये है अरिजीत सिंह। इनकी सिंपलिसिटी तो और भी ज्यादा खूबसूरत है जी। 6:54 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में, आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की। मैं हूं शादाब आप सभी के साथ, प्रोग्राम शाम अवध को यहीं पर करते हैं वाइंड अप। जाते जाते एक और न्यूज़ लेकर जाएंगे जो भी हमारे BBAU के प्रस्नातक पाठ्यक्रमों के लिए, प्रस्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है, अब 17 जून कर दी गई है। तो अभ्यर्थी जो भी चाहते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म मिल जाए और ऑनलाइन आवेदन हो जाए तो वो 17 जून तक कर सकते हैं, से ये आपके पास मौका है। और इसके अलावा और ज़्यादा डिटेल के लिए उनकी साइट पे जाना पड़ेगा। शाम के प्रोग्राम में मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त और मिलते हैं हेलो एफएम में, जो आपका फेवरेट, हमारा फेवरेट, आपके पसंद के गाने, आपकी बातें सब होंगे रेडियो पर। हम करेंगे बातें, आप करेंगे कॉल, एक गाना मेरी पसंद का, अगले सारे गाने आपकी पसंद के, ठीक है ना। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो।

नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। अब सुनिए यूपी की टॉप 10 न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग से मिलने वाली सटीक और विश्वसनीय जानकारी से जनधन हानि के मामलों में कमी आई है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम में कहा कि पिछले 12 सालों में मौसम विभाग ने इतने रडार और इतने उपकरणों की स्थापना की है जितने पिछले 65 सालों में स्थापित नहीं हुए। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों के समग्र विकास से जुड़ी सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत बने मिनी खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी शहरों जैसी खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2026 कि पहले दिन की लिखित परीक्षा आज सकुशल संपन्न हो गई। ये परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में आज से 10 जून तक आयोजित की जा रही है। रायबरेली के कृषकों एवं आम निर्यातकों को बागवानी से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए अधिकारियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। एपीडा के क्षेत्रीय अधिकारी आलोक मिश्र द्वारा कृषकों को हॉर्टीनेट पर पंजीकरण प्रक्रिया, निर्यात के तरीके आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। अयोध्या में परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने आज आरटीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को 3 दिन के भीतर सभी कमियों को दूर कर मुख्यालय को लिखित रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने 5 नए एकीकृत आयुष चिकित्सालय और महाविद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया है। ये आयुष चिकित्सालय और महाविद्यालय गोंडा, मिर्जापुर, मेरठ, आगरा और बस्ती मंडल में स्थापित किए जाएंगे। मत्स्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सेक्टर की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व्यक्ति विभागीय पोर्टल पर 28 जून तक आवेदन कर सकते हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने, जबकि 10 जून से 14 जून तक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कहीं बारिश का अनुमान जताया है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित होगा। तब तक सुनते रहिए FM रेनबो

0: मैं हूं मुजफ्फर अली और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
1: जी हाँ, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ शादाब आप सभी के साथ। 7:04 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में और ये वक्त ये कहता है कि भाई हेलो हेलो कर लो, हेलो एफएम में। बिना कुछ कहे इतनी लाइनों पर फ़ोन आ जाते हैं कि मैं बिना कुछ बोले चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी लोगों से बात कर ली जाए और उनके गानों की ज़रा फरमाइश भी जान ली जाए। तो सबसे पहले जान लेते हैं, हेलो, कौन है? हेलो।
2: बार बार दिल ये आए,
1: अरे
2: बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरे है आरज़ू।
1: मेरा तो बर्थडे नहीं है।
2: टू यू
1: वैसे ही किसके लिए?
2: बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू आकाशवाणी।
1: अरे वाह, अरे अरे अरे,
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको और आपके टीम को, पूरे देशवासियों को।
1: जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी उतनी ही बधाई जितनी हमारे पूरे परिवार को है और आप सभी श्रोताओं को है। बहुत बहुत धन्यवाद। लबो लुबाब लास्ट में आपने बताया, मैं तो सोच रहा हूँ मेरे लिए गा रहे क्या, मैं तो खुश हो गया था। लेकिन मैं खुशी
2: अप्रैल 2020 को बात हुई थी।
1: कितने कितने कब हुई थी?
2: 29 अप्रैल।
1: 29 अप्रैल को? अरे वाह, क्या बात है। अपना नाम बताइए।
2: सर मैं सत्यम कुमार बात कर रहा हूँ, वो पर्सनली राज से।
1: सत्यम
2: जी,
1: क्या करते हैं सत्यम भाई आप?
2: सर मैं ब्लाइंड हूँ।
1: अच्छा अच्छा,
2: तो इसीलिए मतलब
1: रेडियो सुनते रहते हैं। अरे वाह वाह, नहीं बहुत अच्छी बात है। सत्यम जी आप हमारे रेगुलर श्रोता हैं और हमारे साथ जुड़े रहते हैं। कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे और किसी?
2: सर अगर गाना आप सुनवा देते बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको तो ज्यादा अच्छा रहता।
1: अच्छा,
2: नाम भी गाना चाहूंगा सर।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए
2: सर। आपकी पूरी टीम,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: पूरे भारत देश में जितने लोग सुन रहे हैं एफएम रेनबो, और सीतापुर से सिस्टर समाप्त परवीन अंसारी, लखीमपुर से हैं साहिबा अंसारी, और लखनऊ से हैं बबलू यादव, बाराबंकी से हैं बाबू अंसारी भाई और फैज अंसारी भाई, उन्नाव से हैं दादा जो कॉल करते हैं श्री प्रकाश दादा।
1: अरे वाह,
2: इनको मैं डेडिकेट करना।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया और साथ ही साथ इतनी प्यारी बधाई दी हमें, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सत्यम, और देखते हैं हमारे साथ एक कॉल लाइन पे कौन जुड़ रहा है। हेलो, अरे इन्होंने तो काट दिया फोन ही, मैंने बोला था लाइन पे रहिएगा। फिलहाल जिनको भी जिनका भी कॉल लगता है मैं उनको लाइन पर लेकर के बात करता हूँ। अगर सत्यम जी ने रिक्वेस्ट किए तो चलिए पहले गाना सुन लेते हैं, बधाई हो बधाई।

0: फिलहाल हेलो एफएम पर यहाँ पे शादाब के साथ, और शादाब आप सभी को कहता है कि भाई कॉल करो, इतने लोगों ने कॉल की हुई है, जिनकी कॉल लग गई है उनसे हम बातें भी करेंगे, उनके फेवरेट सॉन्ग भी हम प्ले करेंगे, कोशिश पूरी रहेगी। लाइन पर कौन है? हेलो,
1: हेलो, हाँ जी नमस्कार
0: नमस्कार, कौन बात कर रहा है? आप सेलेक्ट हो गए हैं, कौन बनेगा?
1: सर, मैं राम प्रसाद गांव मरगी जिला हरदोई से।
0: राम प्रसाद कहाँ से?
1: हरदोई से,
0: हरदोई से। बहुत बढ़िया राम प्रसाद जी, कैसे हैं आप?
1: हम अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया, गर्मी का आनंद ले रहे हैं?
1: जर से गर्मी, गर्मी का आनंद ले रहे हैं।
0: बहुत अच्छा, क्या करते हैं राम प्रसाद जी आप?
1: खेती करता हूँ।
0: खेती करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। सबसे ज्यादा कौन सी फसल आप उगाते हैं?
1: गन्ने की,
0: गन्ने की। हाँ, तराई उधर उधर गन्ने की ज्यादा होती है मुझे लगता, लखीमपुर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए राम प्रसाद जी, बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: फिल्म का आना सत्यम शिवम सुंदरम।
0: अच्छा, गाने का नाम एक बार फिर से बोलेंगे। यशोमती मैया से बोले नंदलाला। नहीं, मैं नहीं गाऊंगा, जिस हिसाब से मेरी आवाज है ना, उसमें तो गाने लायक नहीं बनता। ठीक है, तो ये फिल्म का नाम है
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: बिल्कुल, चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। डेडिकेट करना चाहेंगे किसी को?
1: नहीं, सबको, सुनने वालों को,
0: सभी सुनने वालों को।
1: आपको भी
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे किया डेडिकेट, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद
0: राम प्रसाद जी, धन्यवाद। ये थे हमारे पहले कॉलर, एक और कॉलर ले लेते हैं। हेलो, कौन है लाइन पर? हेलो,
2: दिल से अपने कभी खोने न देंगे, दिल की दुनिया में कभी शाम होने न देंगे।
0: वाह वाह,
2: दिल से अपने कभी खोने न देंगे, दिल की दुनिया में कभी शाम होने न देंगे। मोहब्बत का इल्जाम अपने सर पर ले लेंगे, मोहब्बत का इल्जाम अपने सर पर ले लेंगे। अरे यार तुझे बदनाम होने न देंगे।
0: वाह,
2: अरे यार तुझे बदनाम होने न देंगे।
0: क्या बात है, क्या शानदार लाइन है। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से बात कर रहा है, जरा बता दें। हेलो,
2: परवीन अंसारी बात कर रहे हैं। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार सर, और बताइए आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया हूँ शमा परवीन
2: जी।
0: क्या बात है शमा परवीन जी, इतनी खूबसूरत लाइनें आपने कहाँ से मतलब देखी या लिखी या क्या की, बताइए।
2: बस आप लोगों के प्यार में, आप लोगों की मोहब्बत में।
0: जी जी, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार इसी तरह एफएम के साथ जुड़ा रहे, हम सभी के साथ जुड़ा रहे, हम तो यही चाहते हैं।
2: हमने सर काफी लेट अपना रेडियो ऑन किया 6 बजे के टाइम, तब जी देखा क्या शादाब सर आए।
0: अरे बहुत शुक्रिया, मैं तो बस आज
2: लेकिन यहां... आपने काफी अच्छा प्रोग्राम किया है, काफी अच्छे सॉन्ग चलाए हैं।
0: बहुत शुक्रिया आपका, आपको पसंद आया ये हमें अच्छा लगा। कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी आप शमा परवीन जी?
2: गाना सुनेंगे
0: कोई भाई, एक गाना सुना रहे, कोई बात नहीं, एक गाना हम सुना रहे, वो गाना भी आप डेडिकेट कर दीजिए, इससे पहले राम प्रसाद जी थे।
2: हाँ, वो बात है, डेडिकेट कर दे, कोई सा सुना देना।
0: हाँ बिल्कुल, आप बताइए कौन सा गाना। हाँ मतलब डेडिकेट,
2: कितना अच्छा आप कर रहे हैं, एक साथ दो दो कॉल ले रहे हैं।
0: हम चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके,
2: लिसनर को शिकायत नहीं होगी।
0: हम कोशिश करेंगे कि लोगों से कोई शिकायत ना रहे। आप जल्दी से बताइए किसको किसको डेडिकेट करना चाहती हैं सॉन्ग, जो अगला सॉन्ग प्ले होने वाला है।
2: पहले आपको
0: बहुत शुक्रिया।
2: फिर सत्यम कुमार भाई हैं और रोशनी रावत हैं जो वहाँ चंडीगढ़ से सुन रही हैं।
0: अच्छा,
2: और वकील अहमद भाई, मोहम्मद आसिफ भाई, गुलाब साहबी, साहब अंसारी, महक अंसारी, रिंकी पिंकी, आरजे पूनम और मोहम्मद फैज भाई, और जितने सुन रहे हैं उन सभी सुनने वालों को।
0: बहुत बढ़िया, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू हमें कॉल करने के लिए, सभी को डेडिकेट करते हैं। अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए, थे ये थे शमा परवीन। वैसे मैं लगातार कॉल एक के बाद एक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बात तो ज़्यादा लोगों से हो सकती है लेकिन गाना किसी एक का ही प्ले हो सकता है, तो ये चॉइस मेरे ऊपर रहेगी। नहीं नहीं, ये चॉइस भी आपके ऊपर रहेगी, कोशिश करेंगे। वैसे राम प्रसाद जी ने एक गाने की फरमाइश की थी, वो गाना प्ले करते हैं, साथ ही साथ शमा परवीन ने जो बोला कि भाई उसी गाने में हम डेडिकेट कर दें सबको, तो भाई ये दोनों का मिक्स गाना आप सभी के लिए आपके रेडियो सेट्स पर, ये लीजिए।

0: जी हाँ बिल्कुल, 7:15 इवन 16 मिनट होने चाह रहे हैं स्टूडियो के क्लॉक में, और देखते हैं अगले कॉलर हमारे साथ कौन जुड़े हैं। यस हेलो,
1: हेलो
0: जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से?
1: मिंटू तिवारी, ग्राम भकरना, तहसील खागे, जिला फतेहपुर से।
0: क्या बात है मिंटू तिवारी जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं सर।
0: बढ़िया लग रहा है आज कल गर्मी?
1: आज 10-12 दिन में फोन लगा।
0: नहीं अच्छी चीज़ है, मतलब 10-12 दिन में आप अगर कोई चीज़ रेगुलर करेंगे तो बोर हो जाएंगे ना, इसलिए 10-12 दिन में करें तो एकदम फ्रेशनेस आती है, अच्छी चीज़ लगती है ना। जी
1: एक बात बोले, गाना हम बता दे, गाना हमारा समाचार के बाद सुनाना, क्योंकि हम
0: जी जी जी आप गाना बता दीजिए, चलिए बताइए
1: गाना हमको। दलाल मूवी चला दीजिए, मर गए फोकट में, ऐसा हमको तो लियो बचास, ऐसा तीर चलो मेरे दिल पर जिस भी मारता है।
0: अच्छा ठीक है, मर गए फोकट में।
1: हाँ जी, हम किसी नाम ले ले डेडिकेट
0: जल्दी से।
1: हाँ पहले तो हो गए मेरे प्रेम कुमार सिसोदिया जी, हो गए भाई, हो गए सीतापुर से, और उनके छोटे भाई हो गए, और मेरे बड़े भाई विनोद तिवारी, प्रमेय तिवारी, और आप हो गए, और जितने लोग सुन रहे हैं सभी के लिए गाना डेडिकेट रहेगा।
0: थैंक यू।
1: प्रभाकर तिवारी जी हो गए रसूलपुर गुलराहा से, ये गाना विस्तार समाचार के बाद ही सुना।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम खुद नहीं चाहेंगे कि गाना हम काटे, इसलिए
1: क्योंकि ये मतलब समाचार के बाद ही हमारे इधर सुनाई देता है।
0: जी जी जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका गाना समाचार के बाद। बहुत शुक्रिया हमें मिंटू तिवारी जी कॉल करने के लिए, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं अगले कॉलर भी कौन हमारे साथ जुड़े। हेलो,
2: हेलो
0: जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से?
2: संगीता दशरथ बंगला बाजार से।
0: एक बार नाम फिर से बताएं दोस्त।
2: संगीता दशरथ।
0: अच्छा ओके, संगीता देशराज, सही सुना हूँ मैंने?
2: संगीता दशरथ।
0: संगीता देशराज, मैं सही सुन रहा हूँ ना?
2: जी सर।
0: अच्छा बताइए संगीता, आप क्या करते हैं, क्या करती हैं?
2: हाउस वाइफ हैं सर।
0: अच्छा, बहुत कम बोलती हैं एकदम, मतलब कट टू कट जवाब देती हैं
2: जी, ज्यादा आदत नहीं ना।
0: अच्छा कोई बात नहीं, अच्छी चीज है। गाना कौन सा सुनना पसंद करेंगी? या
2: जी गाना है मेरा ताकदी फायर का है, परदेसिया, इतना बता सजना तेरी कौन हूँ मैं।
0: अच्छा परदेसिया,
2: इतना बता तेरी कौन हूँ
0: मैं। ठीक है, तो मैं न्यूज के बाद आपके गाने की जो फरमाइश है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप डेडिकेट अगर करना चाहती हैं तो जल्दी से कर दीजिए
2: जी सर। आपको
0: बहुत शुक्रिया संगीता जी,
2: जितने भी सौदा सुन रहे हैं सभी।

0: श्रोताओं को।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, अब लगा कि आप बोली हैं कुछ, मुझे भी सुनाई दिया और श्रोताओं को भी। बहुत धन्यवाद,
0: अच्छा लग रहा।
1: थैंक यू सो मच। आपका कॉल पहली बार लगा है या इससे पहले लग चुका है? अच्छा लग चुकी है, थैंक यू। मेरे साथ, मेरे से पहली बार शायद आपकी बात हो रही है, हाँ, तो इसी वजह से मुझे लगा कि ऐसा
0: आपने सोचा मेरी कॉल काट गई क्या, होल्ड पे रख दिया।
1: नहीं, होल्ड पे रखे क्योंकि हमें बात करनी ही रहती है, तो हम एक नहीं दो दो कॉलर से बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया संगीता जी हमें कॉल करने के लिए, आपका बंगला बाजार से, थैंक यू। सो संगीता जी की जो फरमाइश है और जो मिंटू तिवारी जी की फरमाइश है उसे मैंने लाइनअप कर लिया है, लेकिन अभी हमारे प्रादेशिक समाचारों का जो टाइम है वो हो चुका है, यानी 7:20 पे हमारे प्रादेशिक समाचार आप सभी के बीच आएंगे, उन्हें सुनिए और हमारे साथ हेलो एफएम में अपना साथ बनाए रखिएगा, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि गाने आपके पसंद के, बातें आपकी पसंद की और रेडियो भी आप ही के पसंद का है, ठीक है ना।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण रहा पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएगा ये केंद्र। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने चलाई 4 स्पेशल ट्रेनें। और लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो नाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
1: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों से प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 800,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़

0: माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसे लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित होने से प्रदेश को काफी लाभ मिलेगा।
2: मौसम विभाग की जानकारी समय पे हमें मिलने का परिणाम क्या है? हम अन्नदाता किसान को होने वाली क्षति को और उसके कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली क्षति और खाद्यान्न के संकट को काफी हद तक बचाने में सफल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए और आसान हो जाएगा। यहाँ पे अब रीजनल सेंटर मेट्रोलॉजी का प्रारंभ होगा तो उसका एक बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में होगा।
1: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12 सालों में मौसम विभाग ने इतने राडार और उपकरणों की स्थापना की है जितने पिछले 65 सालों में स्थापित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले सिर्फ 14 राडार थे, लेकिन अब इनकी संख्या 150 से अधिक हो गई है।
3: जितनी प्रगति गत 12 वर्षों में हुई है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इतनी उससे पहले के शायद 65 वर्षों में ना हो पाई। सन 2014 तक देश भर में केवल और केवल 17 वेदर रडार्स थे, और कई एक ऐसे प्रदेश थे जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, जहां एक भी रडार नहीं था। आज वो 17 रडार बढ़कर के 50 हो गए हैं, और मिशन मौसम के तहत 50 और जुड़ने वाले हैं, यानी अगले 2 साल में हम 100 रडार तक पहुंचेंगे।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा आज सकुशल संपन्न हो गई। ये परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में आज से 10 जून तक आयोजित की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: यूपी पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 परीक्षा दो पालियों में आज राज्य के 1183 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। केंद्रों पर परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए स्थायी मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते समय किराए में 50% की छूट प्रदान की जा रही है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 10 जून तक गोरखपुर से लखनऊ के बीच 4 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
5: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर के पहाड़ी ब्लॉक के दुबेपुर बसारी ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत बने मिनी खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी शहरों जैसी खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि गांवों की प्रतिभाएं निरख कर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया।

0: गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
1: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
3: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
4: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
1: अमन यादव के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में मौसम शुष्क रहने, जबकि 10 जून से 14 जून तक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण रहा पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएगा ये केंद्र। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने चलाई 4 स्पेशल ट्रेनें। और लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो नाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: अरे मर गए फोकट में, हमको ही तो हमको लियो बचाए।

0: एक जन्म की बात छोड़ तू देंगे सातों जन्म निभाए।
1: फिलहाल ये गाना आप सभी ने सुना अपने रेडियो सेट्स पर 100.7 एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की। मैं हूं शादाब आप सभी के साथ आपके फेवरेट गाने आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन पर सुनाते हैं हम। और बस आपको करना क्या है, आपको कॉल लगाना है, नंबर आपको पता है 0522 2238 852 2238 845। इस पर कौन कौन कॉल मिलाकर हमारे साथ जुड़ा है बात कर लेते हैं पहले। हेलो हेलो,
2: नमस्ते
1: नमस्ते, किसकी आवाज है ये?
2: रोहिणी, ग्राम प्रभाजीरा, जिला हरदोई से बोल रही
1: हूँ। रोहिणी, बहुत प्यारी आवाज है आपकी। रोहिणी रोहिणी आप इधर सुन रही हैं या रेडियो सुन रही हैं? पहले कॉल पे बात कर लेते हैं फिर आप रेडियो सुन लीजिएगा।
2: सर रेडियो भी नहीं सुन रहे हैं।
1: अच्छा, मेरी आवाज आपको मिल रही है लगातार?
2: हाँ आवाज मिल रही है सर।
1: रोहिणी क्या करती हैं आप?
2: सर मैं पढ़ाई करती हूँ।
1: किस क्लास में हैं आप? क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। टेंथ में थी आप, इलेवेंथ में आ गई हैं। रेडियो सुनने का टाइम मिल जाता है कभी कभी?
2: हाँ सर रेडियो सुनते हैं पढ़ाई करते समय।
1: अरे वाह, ये एक ऐसा मीडियम है जिसकी तरफ आप को स्पेशली ध्यान नहीं देना है, वो अपने आप आपका ध्यान खींच लेगा ना। चलिए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
2: कोई भी अपनी पसंद का गाना सुना दीजिए।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया।
2: थोड़े बात कर लीजिए।
1: अच्छा बात करा दीजिए जल्दी से।
2: छोटी सी है जिंदगी खुशी से जियो, छोटी सी है जिंदगी खुशी से जियो, गम में क्या रखा है मजे सर उठा के जियो, अपने लिए ना सही अपनों के लिए जियो, अपने लिए ना सही अपनों के लिए जियो।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। अपने लिए नहीं अपनों के लिए, नहीं अपने लिए भी जियो और दोनों सबके लिए जियो। क्या नाम है आपका? आपकी आवाज कट रही, क्या नाम है आपका? फिर से एक बार बोलिए नाम।
2: मोहिनी,
1: राइट? क्या बात है मोहिनी, रोहिणी, क्या दोनों सिस्टर
2: ठीक है?
1: बहुत बढ़िया हूँ मैं, बहुत अच्छा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे होंगे।
2: बहुत अच्छी।
1: बहुत शुक्रिया। आप लोग ऑन एयर रेडियो पे बात कर रहे हैं और सभी को सुनाई दे रहे हैं, इससे और अच्छे हो गए होंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। तो जो गाना आगे प्ले करने वाले हैं वो किसी को डेडिकेट करना है आपको? बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, रोहिणी एंड मोहिनी, शुक्रिया। सो ये थी हमारे साथ रोहिणी और मोहिनी। अब हमारे साथ अगले कॉलर कौन है? हेलो
3: हेलो, नमस्ते सर।
1: सर नमस्ते, कैसे हैं? कौन?
3: बढ़िया है सर, हम किशोर कुमार बोल रहे हैं, सीतापुर से, टड़वा चिलौला से बोल रहे हैं।
1: किशोर कुमार सीतापुर से, पिछला कॉल भी सीतापुर से था, इधर लग रहा है सीतापुर वालों की लाइन बहुत तेज चल रही है।
3: जी।
1: किशोर जी क्या करते हैं आप?
3: जी हमारी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान है सर।
1: अरे वाह, साइकिल रिपेयरिंग की दुकान है, कितना टाइम से आप कर रहे हैं, मतलब लाइक सालों हो गए?
3: हाँ सालों हो गए, 30 साल हो गए।
1: रेडियो बजता रहता होगा साथ में?
3: जी जी रेडियो,
1: आनंद लेते रहते होंगे।
3: एक रेडियो खराब हो जाता है दूसरा रेडियो पे लेते हैं सर।
1: अच्छा कोई बात नहीं। चलिए गाना कौन सा सुनेंगे बताइए किशोर जी?
3: कर्तव्य का गाना है।
1: कौन सा?
3: बाबू तो कर्तव्य।
1: हाँ हाँ,
3: गाने बाबू तो कैसा दिलदार निकला, चोर समझी की थानेदार निकला।
1: अरे वाह, गाने के बोले एक बार फिर से बताइए।
3: शैला बाबू तो

0: पैसा दिलदार निकला, चोर समझी थी तू थानेदार निकला।
1: अरे वाह क्या बात है, छैला बाबू तो कैसा दिलदार निकला है।
0: जी।
1: तो ये गाना किसको आप डेडिकेट करना चाहेंगे?
0: यहाँ पर हमारे प्रधान दादा बैठे हैं, यहाँ पर मोनू भैया बैठा है, बबलू भैया बैठे हैं यहाँ पर।
1: अच्छा सब बैठे हुए हैं तो सब लोगों को सुनाना चाहेंगे?
0: जी जी
1: क्या बात है। चलिए ये गाना आपकी पसंद का हम लाते हैं रेडियो सेट पर, आप भी सुनिए साथ ही सभी लोग सुने और जो इससे पहले कॉलर थे उनको भी ये गाना डेडिकेट। धन्यवाद। तो ये गाना आप सभी के साथ रेडियो सेट्स पर ये लीजिए।

0: यकीन जानिए कि आप लोग ने जो जो गाने अभी तक रिक्वेस्ट किए हैं, कई गाने तो मेरे लिए ऐसे थे कि मेरे लिए फर्स्ट टाइम थे, मैंने कभी सुने नहीं थे। ऐसा हो सकता है यार, ज़रूरी नहीं कि आपने इतने बड़े लार्ज स्केल पे कोई गाने सुन रखे हो। फिलहाल आप लोगों ने जो गाने अभी तक किए बहुत खूबसूरत है, मुझे भी नई नई चीज़ें जानने को मिलती हैं। चलिए एक नए कॉलर को लाइन पर जोड़ते हैं। कौन है? हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार सर, कौन है, कहाँ से?
1: जी मैं जिला रायबरेली ग्राम पहाड़ीपुर से रामराज बोल रहा हूँ।
0: रामराज जी?
1: जी
0: रायबरेली जिले से हैं
1: जी।
0: क्या बात है रामराज जी, क्या करते हैं आप?
1: जी हम तो घर पे रहते हैं, बकरी वकरी है, वही चराया करते
0: हैं। अरे वाह, और लगातार सुनते रहते हैं एफएम?
1: जी सुनते रहते हैं, मेल भी हर कार में भेजते हैं।
0: अच्छा, मेल वेल भेज लेते हैं?
1: जी
0: मेल भेजते हैं
1: जी, हर कार सब में संदेश आपके गीत हमारे
0: जी जी जी बहुत बढ़िया।
1: हर कार तुम सुनते हैं?
0: नहीं नहीं अच्छी बात है, आप इससे ज्यादा जुड़े रहे। कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: फिल्म क्रोधी का गाना सुनवा दीजिए, चल चमेली बाग में मैं या खिलाऊंगा।
0: अरे वाह, ये गाना सुन के मुझे हंसी आ गई, चल चमेली बाग में।
1: गाना है हमारे जमाने का है।
0: नहीं नहीं बिल्कुल मेरे लिए नया है, मैं जरूर सुनवाऊंगा।

0: हमारी उम्र 60 साल की है।
1: 60 साल की आपकी उम्र है
0: जी
1: आप बहुत बढ़िया। मैं बस जस्ट आपके आधे उम्र का हूँ, बस थोड़ा सा ऊपर हूँ। जी जी जी नहीं नहीं नहीं मैं बिल्कुल सुनवाऊंगा आपको। रामराज जी, रामराज जी किसी को डेडिकेट भी करना चाहेंगे?
0: चार छह लोग
1: हैं जी, बताइए
0: जी। पप्पू पासिमा लहरगंज, नीरज, मधु, भीरा, बजरंगी काका है, इमरान शेख मिर्जा पहाड़पुर के, रामचरण प्रजापति।
1: बहुत बढ़िया, इन सबको डेडिकेट
0: जी।
1: बहुत धन्यवाद राम जी, रामराज जी हमें कॉल करने के लिए।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार। सो ये थे रामराज जी, और अब देखते हैं अगले कॉलर कौन है। हेलो,
2: हेलो,
1: कौन बात कर रहा है, कहाँ से है? नमस्ते, थोड़ा तेज बोलेंगे आप। हेलो,
2: मेरा नाम प्रीति है।
1: प्रीति, प्रीति आप बहुत
2: जी। मोई जमुई में से उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ।
1: अरे वाह, मोई जमुई उत्तर प्रदेश, बहुत दूर से आवाज़ आ रही, थोड़ा पास आकर के बोलिए। और बहुत मुझे आपकी उम्र कम लग रही, क्या क्या उम्र है आपकी?
2: 12 साल।
1: क्या बात है, अभी हमने जस्ट सोचिए, अभी हमने एक रामराज जी हैं उनसे बात की, उनकी उम्र थी 60 साल और आपकी उम्र है 12 साल। तो हमारे जो श्रोताओं, जो श्रोता या लिसनरशिप है ना, वो हर एज ग्रुप में है, अच्छा लगा है मुझे जान के। तो क्या करती हैं प्रीति आप? किस क्लास में है?
2: 9th क्लास।
1: 9th क्लास, और रेडियो भी सुन लेती हैं कभी कभी?
2: रोज सुनते
1: नहीं, अच्छी बात है, चलिए टाइम पढ़ाई से निकाल करके रेडियो सुन लेती हैं। कोई गाने की फरमाइश करना चाहेंगी? बताइए। हाँ, बहुत लोग कॉल करते ना, इसलिए एक साथ कैसे लग जाएगा, फोन लाइन एक ही है, मतलब दो लाइनें हैं अलग अलग, लगातार कॉल कर रहे हैं लोग। बताइए जल्दी से कौन सा गाना?
2: जूलियट गाना सर।
1: कौन सा?
2: जूलियट।
1: जूलियट, जूलियट गाना। गाने का कुछ और बोल बताएंगे आप?
2: जूलियट जेट्टी सॉन्ग।
1: जूलियट जेट्टी, चलिए मैं ये गाना अगर मिल जाता है तो मैं डेफिनेटली आपको सुनाऊंगा। और अगर आप किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं तो जल्दी से नाम ले लीजिए।
2: पहले तो सर आपको
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
2: और सत्यम भाई को।
1: ओके।
2: रिंकी रिंकी को।
1: अरे वाह।
2: और साहिबान सारी, समान सारी।
1: अच्छा, ओके।
2: और सब जितने सुनने वाले हैं सभी से।
1: चलिए, थैंक यू सो मच प्रीति हमें कॉल करने के लिए, धन्यवाद। नमस्ते। तो चलिए बिना देर किए एक गाना जो आपकी पसंद का आपके रेडियो सेट्स पर।

0: खैर सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर जी की खूबसूरत आवाज़ में गाना सुना ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो। धड़कन लखनऊ की, मैं हूं शादाब आप सभी के साथ। 7:50 हो चुके हैं स्टूडियो की क्लॉक में। अगले कॉलर कौन है उन्हें लाइन पर ले लेते हैं। हेलो हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन जनाब, कहाँ से?
1: मोहम्मद राशिद।
0: मोहम्मद राशिद साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, किस शहर से?
1: जिला कौशाम्बी, तहसील सिरासू, पोस्टल गीता गांव, दौलतपुर कसार।
0: क्या बात है, मैं कौशाम्बी से आपको बुलाऊंगा। कौशाम्बी साहब बात कर रहे हैं
1: जी। शादाब भाई आपने फोन उठाया, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी हम कितनी बार कॉल किया, किसी ने फोन उठाया नहीं।
0: नहीं नहीं नहीं, देखिए कॉल उठाना हमें मतलब हम कॉल उठा के बात ही करेंगे और हमें पता नहीं चल पाता कि किसको कॉल है, तो ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं चलेगा तो वो जान बूझ
1: के। शादाब भाई लगाया हमने, तरन्नुम किया और क्यों, मतलब
0: देखिए मैं फिर एक बार बताऊंगा, बार बार बताऊंगा ये चीज कि हम लोग बिल्कुल आरजे को ये पता नहीं होता कि कॉल।
1: आप तो यही कहेंगे ना।
0: नहीं नहीं नहीं, हर किसी का कॉल उठाया जाता है। फिलहाल बताइए क्या करते हैं राशिद जी आप?
1: दादा भाई कुछ नहीं करते, घर पर रहते हैं।
0: अच्छा, घर पर रहते हैं। चलिए, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: लहू के दो रंग।
0: लहू के दो रंग मूवी से?
1: हाँ मूवी है। मुझे पैसा मिला यार, मिला खरीदूंगा बंगला गाड़ी।
0: ये आपको चाहिए?
1: असल में क्या ना सदा भाई, मीडियम गाना ज्यादा सुनते हैं ना, जो 19 के गाना बहुत अच्छे रहते हैं।
0: 90s के गाने बहुत अच्छे रहते हैं। किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: हाँ, ये हमारे छोटे से भतीजे हैं मोहम्मद अहद, असरा बेगम।
0: अच्छा।
1: और ये जोहा फातिमा,
0: अरे
1: और पिंकी रिंकी और साजिया और साहिबान सारी, समा परमीन,
0: अरे
1: वारिस अली और वारिस अली और
0: वकील अंसारी। चलिए बहुत अच्छा।
1: नाम नहीं ध्यान रहता।
0: नहीं नहीं नहीं, आपने सभी लोग को शामिल कर लिया, यही बहुत है। आप बोल दीजिए सभी लोगों के लिए तो सभी शामिल हो गए। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए राशिद जी। गाने को लाइनअप कर लिया है, थोड़ी देर में सुनाता हूँ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सो ये थे हमारे राशिद जी, अब देखते हैं अगले कॉलर कौन है। हेलो,
2: गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? तौहीद मलिहाबाद से। यार मलिहाबाद की याद मत दिलाओ, इस टाइम बाद दशहरी याद आ रही है। अरे अरे बिल्कुल, मैं अभी गया था हाल ही में हरदोई, तो मैं संडीला मलिहाबाद होते हुए गया था, तो काफ़ी दशहरी लेके आया। मलिहाबाद इज़ फेमस फॉर दशहरी, आपका जो शहर है कस्बा है बहुत फेमस है। क्या करते हैं तौहीद जी आप?
2: हमारे घर में जरी का काम होता
0: है। जरी का काम होता है
2: जी।
0: बहुत बढ़िया। तो ये मुझे एक चीज़ जाननी है, ये आप लोग दुनिया भर को आम खिलाते हैं मलिहाबाद वाले, ये मलिहाबाद वाले कितना आम खाते हैं ये बताइए?
2: बहुत
0: बहुत खाते हैं
2: जी।
0: मुझे तो वहाँ से सिर्फ एक्सपोर्ट होते हुए दिखता है, यानी बाहर जाते हुए दिखता है, मुझे लगता नहीं कि वहाँ पर कोई खाता भी है। खाते हैं?
2: खाते
0: हैं। खाते हैं,
2: खाते हैं, बाहर भी जाते हैं।
0: अच्छा, तो चलिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल टाइम ऐसा हो चुका है तौहीद जी कि गाने की फरमाइश लेना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक गाने की फरमाइश ऑलरेडी आ चुकी है और अगर आपके गाने की भी फरमाइश ली तो दोनों गाने प्ले नहीं हो सकते, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। एक गाना है जिनको मैंने लाइनअप कर रखा है, तौहीद जी थे उन्होंने किया था, नहीं तौहीद जी तो आप हैं, राशिद जी ने किया था। सो उस गाने को आप डेडिकेट करना चाहेंगे किसी को तो बिल्कुल कर दीजिए,
2: सभी के लिए।
0: सभी के लिए, बहुत शुक्रिया तौहीद जी हमें कॉल करने के लिए, अच्छा लगा आपने बात की हमसे, थैंक यू। ओ कट गया फोन। सो ये थे तौहीद जी, और जैसे मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैक्सिमम जितने लोगों को मैं ऑन एयर ले पाऊं और उनसे बातें कर पाऊं, लेकिन आज का ये वक्त जो है ये इजाज़त नहीं दे रहा है कि अब ज़्यादा कॉल लो। बस यह है, इतना टाइम

दे रहा है कि एक गाना प्ले कर सकता हूँ। हाँ, तो इस गाने के साथ आपको छोड़ कर जाता हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए इस गाने को। 7:54 हो चुके हैं, लगभग 55 मिनट होने वाले हैं। मेरा नाम शादाब है और मैं अब आप लोगों को बाय-बाय बोलता हूँ। आपसे कहता हूँ कि अपना ख्याल रखिए, इस गर्मी में दिन में मत ही निकलिए, अगर बहुत ज़रूरी काम है तो ज़रूर निकलिए, लेकिन अगर अपने आप को बचा सकते हैं कुछ दिन तो बचाइए, क्योंकि कई बार ये होता है ना, आपकी नादानी कई बार भारी पड़ जाती है और बहुत बीमार पड़ जाते हैं। तो ये मेरी राय है आपके लिए, बाकी मर्जी आपकी है। एंजॉय कीजिए हर दिन को, हर पल को। थैंक यू हमें कॉल करने के लिए, जिन्होंने कॉल किया बहुत शुक्रिया। ये गाना आप सभी के लिए आपके रेडियो सेट्स पर।

नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसे लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग से मिलने वाली सटीक और विश्वसनीय जानकारी से न केवल जन धन हानि के मामलों में कमी आई है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12 सालों में मौसम विभाग ने इतने राडार और उपकरणों की स्थापना की है जितने पिछले 65 सालों में स्थापित नहीं हुए। उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सेक्टर की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषादराज बोट सब्सिडी योजना और सघन मत्स्य पालन हेतु एयरनेशन सिस्टम की स्थापना शामिल है। इच्छुक व्यक्ति विभागीय पोर्टल पर 28 जून तक आवेदन कर सकते हैं। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा पहले दिन 2 पालियों में आयोजित की गई। प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन दोनों पालियों में कुल 38,928 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन इनमें से 28,237 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। जनपद में परीक्षा के लिए कुल 44 केंद्र बनाए गए हैं। 10 जून तक चलने वाली इस परीक्षा को लेकर प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं। चंदौली के जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि जनपद में खरीफ फसलों के लिए धान व ढेंचा के बीच और विभिन्न उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें और अपनी आवश्यकतानुसार ही उर्वरकों की खरीद करें। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन.
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का.
0: ओनली 100.7 FM रेनबो.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: इंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन रहेगा संग संग.
0: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग.

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर।

0: हवा।
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर, तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
3: धड़कन लखनऊ की।
4: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
5: शाम होने को है।
4: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM

आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना। कौन आएगा, कैसे आएगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल मैं कहूंगा कि चुपके से कोई कहता है शायर नहीं हूं मैं, क्यों असल में हूं वो बज़ाहिर नहीं हूं मैं। भटका हुआ फिरता है दिल किस ख्याल में, क्या ज्यादा ए वफा का मुसाफिर नहीं हूं मैं, क्या ज्यादा ए वफा का मुसाफिर नहीं हूं मैं। जमशेद हूँ आपके साथ, आप शार में 100.7 FM रेनबो के साथ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि इसमें दो जहां के राज हैं। सुनते रहिए आप शार 100.7 FM रेनबो पर।

तू कहीं भी रहे, तेरे सर पर इल्जाम तो है, तेरे हाथों की लकीरों में मेरा नाम तो है। और यकीन मानिए, जिंदगी में किसी को समझ पाना शायद इतना आसान नहीं जितना हम समझते हैं। कोई भी शख्स हो, कैसा भी शख्स हो, वो अंदर से कुछ और होता है और बाहर से कुछ और हमें पहचानना होता है उसे कि वो हमारे लिए बेहतर है या नहीं। और अक्सर मोहब्बत में भी ऐसा ही होता है, लेकिन जो दिल में बस गए उनका क्या कहें।

तू कहीं भी रहे, सर पर तेरे इल्जाम तो है। सारी दुनिया से अकेले जूझ लेता हूं कभी, और कभी अपने ही साए से भी डर जाता हूं मैं। जिंदगी जब मुझसे मजबूती की रखती है उम्मीद, फैसले की उस घड़ी में क्यों बिखर जाता हूं मैं। लेकिन हां, ये जो माजी की यादें हैं वो कहीं ना कहीं मजबूती देते हैं, जिंदगी को एक राह देते हैं, एक चाह देते हैं। वो यादें आज भी कुछ ना कुछ कह जाती हैं। जमशेद हूं आपके साथ, आबशार में 100.7 FM रेनबो के साथ।

हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है और वो महक ताउम्र बरकरार रहती है। जिंदगी कब किस मोड़ पर क्या फैसला लेगी, इसका एहसास हम कभी नहीं कर पाते। हम तो बस उसी ओर चलते चले जाते हैं जिस तरफ जिंदगी हमें ले जाती है, और हम जिंदगी के हर फैसले पर यकीन करते हैं आंख बंद कर। लेकिन हां, जिंदगी में कुछ ऐसे भी लोग शामिल होते हैं जो मौसमों की तरह बदल जाते हैं, लेकिन कुछ ताउम्र ता जिंदगी आपका साथ निभाते हैं। यही तो है मोहब्बत का फलसफा। लेकिन जो वक्त के साथ मौसम की तरह बदल जाए उनको आप क्या कहेंगे, और जो साथ निभाए उनको क्या कहेंगे।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि इसमें दो जहां के राज हैं। सुनते रहिए आबशार 100.7 FM रेनबो पर।

कहते हैं मुझसे इश्क का अफसाना चाहिए, और वो अफसाना पूरा होता है या नहीं ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल वक्त ये कह रहा है कि आबशार का वक्त यहीं तक, समाचार संध्या और उसके बाद फिर होगी मेरी मुलाकात पॉप टाइम में। बहुत खुश हो कि उसने कुछ कहा है, न कहे कि मुकर जाए तो कहना, बदल जाओगे तुम गम सुन के मेरे, कभी दिल गम से घबराए तो कहना, कभी दिल गम से घबराए तो कहना। होती है मुलाकात अब से कुछ देर के बाद, आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ, जमशेद के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के

0: हाँ रहते हो।
1: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया, 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतारना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के ऋतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतिव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री

हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,000,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2,00,000 रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एंटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: To develop the industrial ecosystem.
3: औद्योगिक परिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ तो

0: भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
3: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
2: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
4: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
2: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
5: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में

8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: only 100.7 FM Rainbow.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: Entertainment और information रहेगा संग संग.
3: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए.
0: जब छाएगा 100.7 FM Rainbow का सतरंगी रंग.

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत।

0: हवा।
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर, तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
3: धड़कन लखनऊ की।
2: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
3: चौदहवीं का चांद हो।
4: बिल्कुल रात 10 बजे मैं रहूंगा आपके साथ प्रोग्राम रजनीगंधा में, लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत सा और प्रोग्राम जुड़ेगा आपके साथ। 9:04 साथ में कुछ सेकंड्स, मैं हूं जमशेद आपके साथ वादे के मुताबिक। चलिए बानगी देता हूं ये जो म्यूजिक है उसकी, तो बस ये जो बानगी है ये आप तक पहुंच रही है और ये कह रही है कि प्रोग्राम पॉप टाइम का वक्त हो चुका है शुरू। तो हर चीज़ छोड़ दीजिए, जो डांस का मौका है, जो दस्तूर है लगातार, वो कायम कीजिए और जुड़िए हमारे साथ, यानी 100.7 FM रेनबो के साथ आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम।

चलिए सारी चीजों को करिए दरकिनार, जो भी है दिल में वो बोल दीजिए। और ये जो पॉप टाइम का मौका है, पॉप टाइम का जो दस्तूर है, लगातार पॉप गीत आप तक खूबसूरत से पहुंचने का, तो उस चीज को मैं रखूंगा बरकरार। और ये जो दस्तूर था उसको दरकिनार करके एक नए ट्रैक की तरफ चलते हैं अरमान मलिक की खूबसूरत सी आवाज के साथ।

और आज के गीत कुछ अलग हट के हैं पॉप टाइम में, और वाकई जो पॉप टाइम का मूड है, जो मौका है, वो रहेगा इन गीतों के साथ कायम।

और इधर झूम झूम कर गाने की बात हो रही है, ढेर सारे मेल आपके हमारे पास आ चुके हैं। और इस समय मेल जो पहला हमारे पास आया है आधा वर्ष है, और यजीज अहमद साहब हैं, इन्होंने हमें किया है मेल ग्राम अपोस्ट तिहार से। आगे आपने लिखा यूपी 34 लिखा हुआ है, और मुझे इंतज़ार रहता है इस प्रोग्राम का बेसब्री से। सुधांशु जी का मेल आ चुका है हमारे पास, इटौंजा बख्शी का तालाब लखनऊ से आपने मेल किया है। प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लग रहा है और स्थापना दिवस की ढेर सारी मुबारकबाद आपने दी है। कई लाइनें लिखी, वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन हम दो चार लाइनें ज़रूर पढ़ेंगे आपकी कि लखनऊ के नवाबों की ये शान, FM रेडियो है सबकी जान, सत्य शिव सुंदरम का नारा, आकाशवाणी है सबसे प्यारा, है ना। बहुत अच्छी खूबसूरत सी लाइनें लिखी हैं किसी और प्रोग्राम में, इन पूरी जो लंबी सी लाइन आपने लिखी है उसको शामिल करने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। और रणधीर गुप्ता जी का भी मेल आ चुका है, नमस्कार नमस्कार, प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपने ओखला संगम विहार दिल्ली से किया है मेल। रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता, ये सारे आपने नाम लिखे हैं। और साथ साथ लिखा है पॉप टाइम धड़कन लखनऊ की गाने पसंद आ रहे हैं, बेहतरीन प्रस्तुति आपने लिखी है, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ एस शुक्ला जी का भी मेल आ चुका है, और इन्होंने लिखा नमस्ते सर जी, आई एम अनुराधा शुक्ला, विलेज गंगापुर, और आपने बहराइच से हमें मेल किया है, पूरी तरह से प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। साथ साथ वकील अहमद साहब की भी मेल आ चुका है, और आपने हमें सीतापुर से मेल किया है, और प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, पॉप टाइम के गाने कुछ अलग तरह के लगे आज आपको। ज्ञान प्रकाश आर्य का भी मेल आ चुका है हमारे पास, वाराणसी से आपने किया है मेल, कहते हैं ये वाराणसी में गर्मी चरम पर है और स्वास्थ्य थोड़ा सा हमारा ख़राब है, लेकिन प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं।

और कमल पांडे जी का भी मेल आ चुका है हमारे पास नसीरपुर जिला सीतापुर से, और प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह से प्रोग्राम को एंजॉय करते रहिए तो हमें लगता है कि हमारी जो मेहनत होती है गीतों का चुनना, ये सफल हो जाती है। विनीत कुमार जी का भी मेल आ चुका है, अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से। पॉप टाइम आपको बहुत पसंद आ रहा है और पिछला प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया।

और चलिए कार्यक्रम संबंधी जानकारी अब तक पहुंचा दें, क्योंकि दिल भी लीजिए दिल दीजिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं उनको सुनना बिल्कुल मत भूलिए। और प्रोग्राम की जानकारी दे दूं, क्योंकि आप तक पहुंचाना ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको बताते चलें, अगर आपको खाने निगलने में कोई परेशानी होती है या खाने पीते समय बार बार खांसी आती है, तो ये डिस्फेजिया का संकेत हो सकता है। क्या है डिस्फेजिया, इसके कारण और लक्षण और इसके बचाव के बारे में जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम बुधवार को, यानी 10 जून 2026 को सुबह 11 बजे, जिसमें हमारे साथ रहेंगे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ईएनटी स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रतन जैन, और देंगे आपकी जिज्ञासाओं का सरल और उपयोगी जवाब। तो बस फोन नंबर हम आपको बता दें, हमारे नंबर रहेंगे 0522-2238-845, 0522-2238-852, यानी 0522-223-8845, 0522-223-8852। तो सुनना ना भूलिएगा नेशनल डिस्फेजिया अवेयरनेस पर विशेष कार्यक्रम 100.7 FM रेनबो पर, क्योंकि सही जानकारी बेहतर स्वास्थ्य। आकाशवाणी FM रेनबो आपके हमेशा साथ। Oh my God.

बिल्कुल, दिल लेना दिल देना सौदा खरा खरा, लेकिन बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जो दिल देते हैं, उनको बदले में दिल मिलता है और उनका जो ज़िंदगी का मकसद होता है वो होता है पूरा। और ज़िंदगी का जो मकसद पूरा होता है तो कुछ ऐसे ही कहते हैं। नमस्कार, 36 मिनट 7 में कुछ सेकंड्स में हूँ जमशेद आपके साथ, आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम पॉप टाइम के साथ।

हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, और ऐसे ही बल्ले बल्ले हो, किसी को कुछ जरूरत होती किसी को कुछ, लेकिन जिनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है। फिलहाल रह ले मेरे कोल, सिमरन चौधरी की आवाज में ये नया गीत आपके लिए पॉप टाइम में।

रेले मेले कोल ढेर सारी अभी चीजें हैं बाकी आपके लिए, ढेर सारे गीत आपके लिए बाकी, बहुत बढ़िया गीत प्ले हो रहे हैं। ये कहना है किनका, प्रमोद यादव का, जिन्होंने दादा नगर कानपुर से किया है मेल, पूरी तरह से प्रोग्राम को कर रहे हैं एंजॉय। और अगला मेल उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ, अगला मेल है किसका, अहमद नवाब ने कर दिया है मेल। प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, लस्सी पी रहा हूँ बिल्कुल। और आपने हमें संडीला से मेल किया है, एक प्यारा सा फोटो भी आपने भेज दिया, चलिए कोशिश रहेगी। और साथ साथ रविंद्र सिंह का भी मेल आ चुका है, आपने हमें कहाँ से, पंजाब से मेल किया, और चार पांच नाम आपने भी लिखे हुए हैं। तो चलिए, रविंद्र सिंह जी, मंजीत सिंह और गरजोत सिंह है, सुखविंदर सिंह है, ये कई नाम आपने लिखे हैं और सारे नाम मैंने पढ़ने की कोशिश की, आप तक पहुंचा दिए। और आपका अगला मेल किसका है, चलिए आपका अगला मेल है शिवम शुक्ला जी का, आपने ग्लोला श्रावस्ती से हमें मेल किया है और पूरी फैमिली के साथ प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं और कह रहे हैं 9 बजे वाला प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। सैफ अंसारी का भी मेल आ चुका है हमारे पास लखीमपुर से, प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं पॉप टाइम। जितेंद्र नामदेव का भी मेल आ चुका है, जितेंद्र नामदेव, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, खनक नामदेव, आरोही नामदेव और सौम्या नामदेव, जिला शहडोल मध्य प्रदेश से आप मेल कर रहे हैं और प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत शुक्रिया कहूँगा, आपने कहा आवाज़ आपको बहुत अच्छी लगती है हमारी, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ मेल अभी और भी हैं बाकी, वो भी आप तक पहुँचा दूँ वरना लोग कहेंगे कि मेरा मेल शामिल है। इंद्रपाल मिश्रा जी, आपका भी मेल मैंने शामिल कर लिया, मोहली सीतापुर से आपने किया है मेल। अवनीश विनीश, अक्षत और गरिमा आशा, ये सारे लोग मिल कर रहे हैं एंजॉय। भैया मोनो सेठ, आपने बस छोटी सी लाइन लिख दिया, पॉप टाइम मोस्ट फेवरेट शो। बहुत शुक्रिया, आपको गाना और शो पूरा अच्छा लग रहा है। शरणूर अंसारी का भी मेल आ चुका है हमारे पास, बरेली से प्रोग्राम को कर रहे हैं आप एंजॉय पूरी तरह से। और साथ साथ मेल हमारे पास किसका है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। विजय पाल यादव जी, आपका भी मेल आ चुका है सामने हमारे, और आपने ललहुआ जिला खीरी से किया है मेल। कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लग रहा है, पिछला प्रोग्राम भी आपशार आपको बहुत अच्छा लगा, छत पर बैठकर प्रसारित कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं, बहुत ही झक्कास लग रहे हैं सारे प्रोग्राम आप लोगों के द्वारा प्रस्तुत। बस यही चाहते हैं कि जितनी भी चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं, देखिए एक और मेल आ चुका है हमारे पास, उत्तम नगर दिल्ली।

और इस सवाल जवाब के बीच में आ गए हैं सुखबीर और ये भी कह रहे हैं क्या। इस गीत को एंजॉय कीजिए 9:51 साथ में कुछ सेकंड्स प्रोग्राम पॉप टाइम आपका अपना और इसमें खूबसूरत से गीत जो कहीं ना कहीं आपको थिरकने पर कर रहे हैं मजबूर और कोई ना कोई कह रहे हैं कहानी।

और ये जो आपने जोक भेजा है ये किसी दिन और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और रेडियो ऑन कर लेते हैं, सारे आरजेस बहुत बेहतर प्रोग्राम कर रहे हैं और बड़ी खुशियां मिलती हैं जब सारे आरजेस आते हैं खूबसूरत से गीत लेकर। साथ साथ मेल एक और हमारे पास आ चुका है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। मेल आया है मोहम्मद इरफान गौरी का, इन्होंने हमें कहां से मेल किया है। आपने कहा है कि साथ में बैठकर सुन रहे हैं सभी के साथ प्रोग्राम, और आपने पता इस पर नहीं लिखा है, मैंने ढूंढने की कोशिश की है और प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा, तो भाई मैं शुक्रिया कहूँगा इसके लिए। मोहम्मद आसिफ का भी मेल आ चुका है, हैदराबाद तेलंगाना से प्रोग्राम को सुन रहे हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। साथ साथ बाबू अंसारी जी का भी मेल आ चुका है बाराबंकी से, प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। होप कि कोई नहीं रह गया होगा। आई लव आकाशवाणी ऑल इंडियन रेडियो आपने लिखा है, चलिए बहुत शुक्रिया। और अब शायद किसी का मेल नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना, चलिए। और मैं यहाँ से फिलहाल लूँगा इजाज़त कुछ देर के लिए, यानी एक छोटा सा न्यूज़ ब्रेक, और उसके बाद फिर मेरी होगी आपसे मुलाकात आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम रजनीगंधा के साथ। और आपसे ये कहूँगा आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ।

और अब चलते चलते कुछ मेल आपके आ गए, मैं उनको पढ़ दूं, आप तक पहुंचा दूं। संतोष चौरसिया का मेल आ चुका है गुरुग्राम हरियाणा से। प्रोग्राम अति सुंदर, ऐप पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम को। साथ साथ जय जी का मेल आ चुका है होली नगर उत्तम नगर दिल्ली से, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से। और साथ साथ मेल आ चुका है एम के राज का लखीमपुर खीरी से। दो लाइनें लिखी हैं, हर कार्यक्रम बेमिसाल, सुनते सुनते हो गए कई साल। चलिए

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि उत्तर

देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, निवेश गतिविधियों और शहरीकरण की आवश्यकताओं के अनुरूप विभाग को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित, उत्तरदायी और जनसुविधा केंद्रित बनाया जाना चाहिए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के रजिस्ट्री कार्यालयों में हेल्प डेस्क, टोकन एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, आधुनिक प्रतीक्षालय, महिला एवं शिशु कक्ष, डिजिटल सुविधाएं तथा अन्य नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित कुमार घोष की अध्यक्षता में आज नवी पार्टनरशिप कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक लखनऊ में आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने प्रदेश में मातृ मृत्यु दर बढ़ने पर चिंता जाहिर की। श्री घोष ने कहा कि मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी लाने के लिए त्वरित एवं प्रभावी हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देना समय की आवश्यकता जरूरत है कि प्रभावी मॉनिटरिंग एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 12 साल विश्वास के जन कल्याण अभियान के अंतर्गत चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज प्रदेश भर में विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने झांसी से विशेष जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। लखनऊ के विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल नरही के भवन को खाली कराने संबंधी आदेश को स्थगित कर दिया गया है। आज ADM नगर पूर्वी ने जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ के आवेदन पर विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल के प्रबंधन को विद्यालय पर कब्जा दिलाने का आदेश दिया है। अब छात्राएं नए सत्र में अपने इसी विद्यालय भवन में पढ़ाई कर सकेंगी। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। हमारा अगला बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर।
5: पुरानी जींस और गिटार।
4: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद। शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर।
6: है रते आशिकी जगा।
4: फिर रात को फुर्सत के वो पल।
7: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा।
4: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
8: Stay tuned to 100.7 FM रेनबो,
9: धड़कन लखनऊ की।
10: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी नाराज होते हैं, कभी गुस्सा गर्मी भी होता है। यही तो जिंदगी का फलसफा है। और अगर जिंदगी में ये सारी चीजें नहीं है तो जिंदगी कैसी होगी? जस्ट इमेजिन, सोचिएगा जरूर कि अगर जिंदगी में ये सारी चीजें ना हो, रूठना मनाना, खुशी गम, अंधेरा उजाला, कई तरह की चीजें, और अगर नकारात्मक और सकारात्मक ना हो यानी जिंदगी में कई सारी चीजें हैं और हर चीज का रंग अपना अलग है, अलहदा है। और अगर मैं ये कह दूं कि अजब आरजू है, अनोखी अदा है, तुझी से तुझे मांगना चाहता हूं, अजब आरजू है, अनोखी अदा है, तुझी से तुझे मांगना चाहता हूं, तो क्या ये गलत नहीं होगा? इसीलिए मैंने कहा कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं, और जिंदगी लगातार इसी तरह से चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और कोई भी शख्स हो, मैं हूं या आप हो या कोई भी हो, सभी की जिंदगी के साथ जुड़ी होती हैं इसी तरह की कुछ बातें, वो बातें जो कभी एक बारगी चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं और कभी चेहरे को गमगीन बना देती हैं। बस यही तो है जिंदगी। और इन्हीं बातों को लेकर आज मैं यानी जमशेद जुड़ा हूं आपके साथ प्रोग्राम रजनीगंधा में, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं कि जब भी किसी से कोई वादा करो तो उस वादे को पूरा जरूर करो। यकीन जाने जब वादे टूटते हैं ना, तो उसकी तकलीफ का अंदाजा या उसकी तकलीफ का एहसास उस शख्स से पूछिए जिससे वादा किया गया हो। इसीलिए अक्सर मैं कहता हूं कि भाई चलो वादा किया है तो उस वादे को निभाओ, और मैंने वादा किया और निभाया, यानी आप तक लेकर आया आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम रजनीगंधा। तो चलिए शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन ये गीत भी कहीं ना कहीं उसी लाइन को आगे बढ़ाता है। और जब जिंदगी में कोई शामिल हो जाता है, तब जिंदगी कैसे हंसती है, कैसे मुस्कुराती है, एक नई कहानी बनाती है।

तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं तो ये लगता है तेरी महफिल है। गीत सुना आपने, और गीत पूरी कहानी कह गया, पूरी की पूरी कहानी। लेकिन हाँ, मोहब्बत कौन समझ पाया है? छोटा सा सवाल है आपसे, मोहब्बत कौन समझ पाया है? कोई ऐसे शख्स लाइए, कोई ये कह दे कि मोहब्बत मुकम्मल हुई है। पुरानी कहानियां उठाकर देख लीजिए, फिर चाहे लैला मजनू की कहानी हो या श्री फरहत की कहानी हो, कोई भी कहानी हो, मोहब्बत को कौन समझ पाया है? मैंने कहा ना, और किसकी समझ में मोहब्बत का ये फलसफा आया है? क्योंकि किसी की नज़र में तो मोहब्बत की बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत कीमती है मोहब्बत, और किसी की नज़र में शायद उसकी कोई कदर नहीं है। लेकिन जो मोहब्बत को समझ गया, उसने भले ही जिंदगी में जो चाहा हो वो ना मिला हो, शख्स की बात कर रहा हूँ, और लेकिन मोहब्बत उसकी ज़िंदगी में सुकून ज़रूर लेकर आई होगी। लेकिन जिसने नहीं समझा होगा, उसकी कहानी को नहीं समझा होगा, तो क्या होगा? अगला गीत भी मोहब्बत की इसी फलसफे पर आधारित है। किसी के लिए तो काम की है और किसी के लिए बेकाम की।

मोहब्बत बड़े काम की चीज है, ये बेकार बेदाम की चीज है। अलग अलग नजरिया, अलग अलग सोच हो गई, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि बेइंतहा मोहब्बत का असर कहिए कि हर सू एहसास से गजल होता है। तन्हा भी होते हैं तो बार तरन्नुम में, तन्हा भी होते हैं तो बार तरन्नुम में जाने गजल महसूस होता है। और जब मोहब्बत का असर होता है या मोहब्बत समझ में आ जाती है लोगों के, तो ये भी होता है।

चलिए आगे की कहानी इसी तरह से चलती रहेगी, लेकिन एक ज़रूरी जानकारी आप तक पहुंचा दें। और ये ज़रूरी जानकारी इसलिए भी है क्योंकि ये दिक्कतें लगभग लोगों को हुआ करती हैं, और अगर आपको भी खाना निगलने में परेशानी होती है या खाते हैं पीते हैं बार बार खांसी आ जाती है तो ये हो सकता है कि डिस्फेजिया का संकेत हो। और नेशनल डिस्फेजिया अवेयरनेस पर विशेष कार्यक्रम होगा FM रेनबो पर। डिस्फेजिया क्या है, इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं, तो सुनिए हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम बुधवार दिनांक 10 जून प्रातः 11:02 पर। और हमारे साथ मौजूद रहेंगे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रतन जैन, जो देंगे आपकी जिज्ञासाओं के सरल और उपयोगी उत्तर। तो नंबर हम आपको बता दें, हमारे नंबर रहेंगे 0522 2238 845, 0522 2238 852, यानी 0

0522 223 8852 0522 223 8852। सही जानकारी, बेहतर स्वास्थ्य। आकाशवाणी लखनऊ और एफएम रेनबो के साथ। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं फिर रजनीगंधा में।

बिना ही बात मुस्कुराए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। क्यों? क्योंकि तू है शामिल इस जिंदगी में इस तरह, तू है शामिल इस जिंदगी में इस तरह जैसे मेरी मुस्कान में शामिल मेरा गम है। तूफान चाहे कितने भी आए, फिक्र नहीं, जब तू समंदर मेरा और तेरा साहिल हम हैं।

नजारे हम क्या देखें, तेरा साथ होना मेरे होने का एहसास है। जिंदा नहीं उस पल में जिसमें तू नहीं, तू है तो हर लम्हा मेरा खास है, हर लम्हा खास है।

बांट लेंगे हम आधा आधा। मैंने कहा ना कि क्या हर किसी को मोहब्बत मिलती है, ये भी एक सवाल है, क्योंकि अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है। कौन कहता है कि वो सादिक न थे जज्बे उनके, सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि ये लोग भी अपनी तरह मफलिस थे। और साहिर लुधियानवी साहब ने ये लाइनें यूं ही नहीं लिख डाली होंगी, और यकीनन अनगिनत लोग थे, कुछ मोहब्बत में कामयाब हुए और कुछ नाकामयाब भी हुए।

और यकीनन कोई भी काम करे शिद्दत तो उसमें होनी चाहिए, फिर वो मोहब्बत ही क्यों ना हो। उसकी मिसाल कहीं न मिले, किताबों में भी ढूंढने से भी उस मोहब्बत की मिसाल ना मिले। मोहब्बत तो बस ऐसी ही होनी चाहिए, लेकिन शुरुआत कैसे होती है, कैसे अनजाने लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, क्या होता है आखिर मोहब्बत में कि एक दूसरे के बिना जिंदगी मुश्किल हो जाती है, ये भी एक अलग तरह की चीज होती है। कैसे अनजान शख्स करीब आया और जिंदगी की एक कहानी बन गई, वो कहानी जो शायद कभी ना खत्म हो। जमशेद हूं आपके साथ रजनीगंधा में 100.7 FM रेनबो के साथ।

अभी फिलहाल मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी रजनीगंधा का आगे का सफर है बाकी। लेकिन हाँ, कुछ देर के लिए इजाज़त ज़रूर लूँगा आपसे, यानी छोटा सा न्यूज़ ब्रेक, और उसके बाद फिर मेरी यानी जमशेद की होगी मुलाकात रजनीगंधा की आगे के सफ़र के लिए। तो आपसे बस मैं ये कहूँगा कि आप बने रहिए 107.7 FM रेनबो के साथ, अपने दोस्त जमशेद के साथ।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने वस्त्र क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य की संभावनाओं के अनुरूप व्यापक कौशल विकास कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार समर्थ योजना के अंतर्गत अब तक 2 लाख

2,500 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है जबकि 1,60,000 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र कुमार सिंह ने आज लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसे लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। मनोज सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। हमारा अगला बुलेटिन रात्रि 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ओनली 100.7 FM रेनबो.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग.
3: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए
0: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग.

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर।
5: पुरानी जींस और गिटार।
4: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद। शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर।
6: है रते आशिकी जगा।
4: फिर रात को फुर्सत के वो पल।
7: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
4: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: Stay tuned 100.7 FM रेनबो,
8: धड़कन लखनऊ की।
3: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।
9: ये

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

ऐसी है मोहब्बत की कहानी। मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है, अल्फाजों में जिंदा रहती है, इंसान के नजरिए से जिंदा रहती है। मोहब्बत कभी नहीं खत्म होती। तभी तो लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें उसी मोहब्बत से जिंदा रहती हैं। 11:10 साथ में कुछ सेकंड्स, प्रोग्राम रजनीगंधा में एक बार फिर मैं यानी जमशेद जुड़ा हूं आपके साथ। मैंने कहा ना कि जब भी किसी से कोई वादा करो तो उस वादे को पूरा जरूर करो, तो बस उसी वादे को पूरा करते हुए एक बार फिर जुड़ा हूं मैं आपके साथ। और मैंने कहा ना, मोहब्बत मोहब्बत हमेशा हमेशा जिंदा रहती है। ये दिल कब किस पे कहां कैसे आ जाता है वाकई पता नहीं चलता। ये मोहब्बत की

दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। मैंने कहा ना कि कब दिल किस पर कैसे आ जाता है किसी को नहीं पता चलता। तभी तो कई बार हम नाना करते रह जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पता होता है कि अंजाम क्या होना है इस मोहब्बत का, और फिर भी ये दिल हार बैठते हैं इस दिल की जिद के आगे। हो ही जाता है इश्क, क्यों? बहुत कमाल की होती है ये मोहब्बत, जो नहीं चाहते हुए भी किसी न किसी से कहीं ना कहीं कभी ना कभी हो ही जाती है।

तेरे बिना जिया लागे ना। जिंदगी कैसे एक दूसरे के बिना सोची जा सकती है? कभी नहीं। कुछ दुआ रही, कुछ मोहब्बत रही, कुछ इबादत सी हो गई। उनसे मिलने के बाद अब ये जिंदगी उनकी अमानत सी हो गई।

11:24 साथ में कुछ सेकंड्स, मैं हूं जमशेद आपके साथ प्रोग्राम रजनीगंधा में। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक काम की बात आपको बता दूं कि अगर आपको भी खाना निकलने में परेशानी होती है या खाते या पीते में कई बार खांसी आ जाती है तो ये डिस्फेजिया का संकेत हो सकता है। सुना ना बोलिए, FM रेनबो पर नेशनल डिस्फेजिया अवेयरनेस पर विशेष कार्यक्रम। डिस्फेजिया क्या है, इसके कारण, निवारण, उसके लक्षण और बचाव, इसके बारे में जानने और के लिए आप सुनिए हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम दिनांक 10 जून प्रातः 11:02 पर, जिसमें हमारे साथ विशेषज्ञ रहेंगे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन जी, जो देंगे आपकी जिज्ञासाओं का समाधान। तो सुनना ना भूलिएगा और फोन

नंबर आपको बता दें 0522 2238 845, 0522 2238 852, यानी 0522 2238 45, 0522 2238 52। सही जानकारी, बेहतर स्वास्थ्य, आकाशवाणी के साथ। और चलिए फिर प्रोग्राम पर आ जाते हैं और प्यारा सा गीत आप तक पहुंचाते हैं। कभी कहीं पर भी होगा अगर मोहब्बत का जिक्र, कभी कहीं पर भी होगा अगर मोहब्बत का जिक्र, मैं तेरे बारे में सोचूंगा, मैं तेरे बारे में सोचूंगा और मुस्कुरा दूंगा।

तेरी चाहत मेरे दिल में बनकर इबादत हमेशा रहेगी, तो दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता है, मोहब्बत हमेशा रहेगी। तुझे बेइंतहा बेपनाह चाहने की शिद्दत हमेशा रहेगी।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
0: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मध खरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

मैं तेरी शायरी हूं, तू मेरा अल्फाज, तेरे इश्क की स्याही से लिख दूं मैं अपने सारे जज्बात। ग्यारह बजकर 41 मिनट 7 में 1 सेकंड्स प्रोग्राम रजनीगंधा में आज मैं यानी जमशेद हूं आपके साथ 100.7 FM रेनबो के साथ।

सिर्फ मेरे चाहने से मोहब्बत कहाँ पूरी होगी, मेरी खातिर थोड़ा ही सही बेचैन तो तुझे भी होना पड़ेगा।

नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी वो कोशिश में लगातार लगा रहता है। और मैं ये भी नहीं कहता कि मोहब्बत का अंजाम हमेशा नकारात्मक होता है। शिद्दत बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं इस अल्फाज का इस्तेमाल करता हूं। लेकिन हर कोई बिना अंजाम की परवाह किए मोहब्बत करता है।

वफा के मायने, तो पूछने आया है वफा के मायने, ये तेरी सादा दिली मार ना डाले मुझको। 11:56 साथ में कुछ सेकंड्स, प्रोग्राम रजनीगंधा का सफर आज यहीं तक। इस मोहब्बत की कहानी को फिर किसी रोज आगे बढ़ाएंगे, मगर फिलहाल मुझे यानी जमशेद को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि फिर किसी रोज किसी प्रोग्राम में मुलाकात जरूर होगी आपसे। तब तक खुदा हाफिज, शब खैर। और हाँ, चलते चलते एक बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। खुदा हाफिज़।

जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। और चलते चलते तो मैं यही कहूंगा कि हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको, मैं हूं तेरा नसीब, अपना बना ले मुझको। तो पूछने

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। सरकार ने कहा है कि पश्चिमी शत संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खन्नूजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि ईंधन की निर्बाध आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। यह परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में आज से 10 जून तक आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में स्टैम्प एवं पंजीयन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, निवेश गतिविधियों और शहरीकरण की आवश्यकताओं के अनुरूप विभाग को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और उत्तरदायी और जन सुविधा केंद्रित बनाया जाना चाहिए। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज के ही दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए

कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। और अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और इसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों का अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 1 डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस रहा, या सामान्य से लगभग 3 डिग्री अधिक था। सूर्योदय 5:12 पर तथा सूर्यास्त 6:59 पर होगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। हमारा अगला बुलेटिन प्रातः 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। 100.7 MHz पर आकाशवाणी की FM रेनबो प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 हो चुके हैं। हमारी आज की सभा समाप्त होती है। प्रातः 5:00

आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज के ही दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। और अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और इसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों का अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 1 डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस रहा, या सामान्य से लगभग 3 डिग्री अधिक था। सूर्योदय 5:12 पर तथा सूर्यास्त 6:59 पर होगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। हमारा अगला बुलेटिन प्रातः 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। 100.7 MHz पर आकाशवाणी की FM रेनबो प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 हो चुके हैं। हमारी आज की सभा समाप्त होती है। प्रातः 5 बजकर